आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्स, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओ, आज शनिवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 मई सन 2026। इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:59 हुए हैं। हम आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने को है दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार अब आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कलगम तिवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने TVK को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि वे आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल TVK प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक

0: दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक तेल टैंकर को कब्जे में ले लिया है। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनके सुरक्षा बलों ने नाकेबंदी का उल्लंघन करने पर ईरानी झंडे वाले दो टैंकरों को रोक दिया है। इन घटनाओं के बाद ईरान और अमरीका के बीच संघर्ष विराम टूटने के कगार पर पहुंच गया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इनमें दोनों पक्षों को 1,000 कैदियों का आदान प्रदान करना शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो प्रतिवर्ष 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मौसम विभाग ने 13 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में बिजली चमकने और बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया है। केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में तेज बारिश हो सकती है। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस सामने सामने होंगे। जयपुर में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओ, ट्यून इन है आप FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। प्रातःकालीन बेला में आइए सुने भक्ति संगीत अर्चना।

सवेरा हुआ है, सूर्योदय ने हर ओर से अंधेरा समाप्त कर दिया है। आइए हम सब भी अपने मन के भीतर का अंधेरा समाप्त करें।

तब ब्रह्म मुहूर्त में देवगण और ऋषि मुनि ईश्वर की स्तुति करते हैं। अतः जो भी मनुष्य इस समय जागकर वंदना करता है उसे ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

हरि नाम जपने से मन के वातावरण में शुद्धि आती है। मंत्र जाप के निरंतर उच्चारण से मन को एक जगह केंद्रित करने में सहायता मिलती है। आइए भजन को निरंतर रखें।

चार दिन इस दुनिया में रहकर, इस जीवन में रहकर जब चले जाते हैं, तब याद आता है कि भजन कर लिया होता तो कितना सुंदर परिणाम होता।

जैसे भजन सुनने की ये घड़ी निकल गई, वैसे ही जीवन भी निकल जाता है। किंतु यह एक कार्यक्रम था जो हमें रोशनी की ओर ले जाता है। श्रोताओ, भक्ति संगीत के इस अर्चना कार्यक्रम के लिए स्वर शर्मा बंधु, राजेश मिश्रा और सुरेश वाडकर ने दिए। ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

भक्ति संगीत अर्चना अभी आपने सुना। चंबल चैनल से हम बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाएं श्री रामचरितमानस गान। आज मुख्य स्वर शोभा जोशी का, संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने

स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देखाने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: शोभना जोशी का मुख्य स्वर था आज श्री रामचरितमानस गान में। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, चिंतन में आज हम आपको सुनवाएं गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। स्वर ऋतु राजपूत का।
1: सभी धर्मों का आधार प्रेम है, ये शब्द हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के। हमारा देश सचमुच अपनी परंपराओं में महानतम रहा है। अनेकता में एकता की भावना सदैव से हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है, पर आज अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थों में फंसकर हम अनेकता में एकता की इस भावना को सांप्रदायिक, जातिगत एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से आहत कर रहे हैं। धर्म के नाम पर हम संप्रदायों में बटते जा रहे हैं।

0: ऐसी विषम परिस्थितियों में टैगोर के विचारों में निहित सर्वधर्म समन्वय की भावना एवं प्रेम के मूल मंत्र को हमें अपनाना होगा। हर धर्म में मानव मात्र से प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। फिर धर्म के नाम पर आपस में द्वेष और शत्रुता का भाव क्यों, जबकि धर्म के मूल तत्व प्रेम को अपनाकर ही हम आपस की खाई को पाट सकते हैं। यही वो दिशा है जो मानव भविष्य को सुखमय बना सकती है। आज हम सत्य की सार्वभौमिकता की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि सत्य की व्यापकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और जीवन का शाश्वत सत्य यही है कि हम मानव मात्र से प्रेम करें। मनुष्य मनुष्य के बीच विद्यमान सारे भेदों को मिटाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाएं। गरीबी आज की सबसे बड़ी समस्या है, ये सभी मानते हैं, पर इतनी बड़ी नहीं कि जिसका समाधान असंभव हो। हम आप यदि अपनी जरूरतों को कम कर पाएं तो यकीनन कुछ हिस्सा दूसरों के लिए जरूर बचा पाएंगे। रविन्द्रनाथ जी इस बारे में कहा करते थे, क्या हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के नाम पर एक पैसा या एक मुट्ठी चावल का दान नहीं कर सकता? ये प्रश्न हर किसी को अपने भीतर झांकने के लिए विवश कर देता है। हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं? क्या हमारा प्रेम विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति तक ही सीमित है? क्या हम कुछ रचनात्मक ढंग से भी कुछ कार्य कर रहे हैं? और यदि कुछ प्रतिशत भी कर पाते हैं तो देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। हमारा थोड़ा सा योगदान अमूल्य है। जब एक एक बूंद से समुद्र बन सकता है, तब एक एक व्यक्ति के योगदान से भला कोई राष्ट्र खड़ा क्यों नहीं हो सकता? रविन्द्रनाथ जी ने अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक बार कहा था, मैं ऐसे देश को प्रणाम करता हूं जहां के मानव दिमागी रूप से स्वतंत्र हों, जिनके हृदय खुले हों, जहां भय के लिए कोई स्थान न हो। उनका यह संदेश आज भी हमें बताता है कि आजादी की चंद सांसें गुलामी के पूर्ण जीवन से कहीं बेहतर हैं, कहीं अमूल्य हैं। हमें हर हाल में अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना है और इस स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चाहे हमें अपना सर्वस्व ही क्यों ना न्यौछावर करना पड़े। जिनके इरादे नेक हों और मंजिल पवित्र हो, उनके जीवन में भय और अविश्वास का कोई स्थान नहीं होता। उनके मार्ग में कोई बाधा ठहर नहीं सकती, बशर्ते हम में संघर्ष से लड़ने की ताकत हो। टैगोर जी के शब्द चिर स्मरणीय हैं कि जब तुम्हारी आवाज कोई न सुने, जब सब संघर्ष से डरकर अपना मुंह मोड़ लें, तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब भी तुम अकेले चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे।
1: ऋतु राजपूत के स्वर में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार चिंतन में आपने सुने। श्रोताओं, हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको जानकारी दें आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत।

श्रोताओ, आज शनिवार है और आज सुबह की सभा में आप सुनते हैं स्वास्थ्य पर आधारित सजीव फोन इन कार्यक्रम आपकी सेहत। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे गर्मियों में आयुर्वेद के अनुसार हो हमारी जीवन शैली, इस विषय पर। और आज हमारी विशेषज्ञ होंगी आयुर्वेदिक चिकित्सक ज्योति शर्मा। श्रोताओ, कार्यक्रम में अधिक जानकारी के लिए हमारे आज के विशेषज्ञ से आप भी सीधे जुड़ सकेंगे इस टेलीफोन नंबर के जरिए। टेलीफोन नंबर 29 4 11 42 और एसटीडी कोड 0744। वहीं अपना कार्यक्रम सुन सकेंगी महिला जगत 9:30 से। इसमें आज चर्चा होगी बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या आपने उनके न्यूट्रिशन वैल्यू चेक की। इसके अलावा भेंट वार्ता होगी इलाज में जांचों का महत्व, डॉक्टर संतोष शर्मा

0: आज ये जानकारी दे रही हैं। इसके अलावा जानकारी होगी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 पर। तो बहनें अपने परिवार सहित सुनिए ये कार्यक्रम, और युवा श्रोता अपना कार्यक्रम सुन सकेंगे शाम 5 बजे से 6 बजे तक, जिसमें आज का संवाद महाराणा प्रताप जयंती पर, देश हमारा, इसके तहत उत्तर प्रदेश का अनूठा पर्यटक स्थल ओरछा, नॉलेज कॉर्नर के तहत विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के बारे में हमारे युवा साथियों को जानकारी मिलेगी गोपाल कृष्ण गोखले की जन्म जयंती पर, और जानकारी मिलेगी विश्व थैलेसीमिया दिवस पर। इसके अलावा इसी कार्यक्रम में करंट अफेयर्स होंगे युवा साथियों के लिए, और होगा मनोरंजन गीत संगीत के साथ। चौपाल कार्यक्रम में किसान भाइयों के लिए हम लेकर आएंगे चर्चा महाराणा प्रताप जयंती पर। आकाशवाणी गांव में इस कार्यक्रम के तहत गांव पंचायत सुवासा तहसील तालेड़ा जिला बूंदी के किसानों और ग्रामवासियों से बातचीत पर आधारित क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा। जानकारी होगी इसी कार्यक्रम में पीएम ग्रामीण विकास योजना पर, और हमारे ग्रामीण श्रोता जान सकेंगे मौसम की जानकारी भी उनके इसी कार्यक्रम में, जिसका नाम है चौपाल और चंबल चैनल पर आज शाम 7 बजे से 7:30 तक प्रसारित होगा। माटी के स्वर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम शाम की सभा में 7:30 से होगा। श्रोताओ, जो कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी आप सुनते हैं उसे आप रिकॉर्ड करवाते हैं गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक, उसी कार्यक्रम का प्रसारण आज रात 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनेंगे। और अब से थोड़ी देर में संस्कृत समाचारों के बाद 7 बजे आप सुनेंगे सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा। तो ये थी जानकारी प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। चंबल चैनल है ये, सुबह के 6:55 होते हैं। अब दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार होंगे।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारी वर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्री रंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षा अनुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्। तारेति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति, या मार्ग निर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थ निर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः

नमस्कार, सुबह सवेरे के कार्यक्रम नमस्कार कोटा में आप सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। श्रोताओं, मैं राजेश महावर आप सभी के लिए सुबह सवेरे का ये कार्यक्रम लेकर आया हूँ अपनी आकाशवाणी की पूरी टीम के सहयोग से। तो स्वीकार कीजिए नमस्कार राजेश महावर का भी।

श्रोताओ, जब हम कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखने से आधी मंजिल तय हो जाती है, तो श्रोताओ इसका अर्थ ये नहीं कि काम खत्म हो गया, बल्कि इसका अर्थ ये है कि हमने उस मानसिक बाधा को पार कर लिया है जो अधिकांश लोगों को काम शुरू होने से पहले ही रोक देती है। श्रोताओ, सफलता की पहली लड़ाई हमारे दिमाग में लड़ी जाती है। जब हमें खुद पर भरोसा होता है तो मन में क्या ये मुझसे हो जाएगा, इस तरह के जो संशय होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। श्रोताओ, संशय समाप्त हो जाने के बाद हमें एक स्पष्ट रूप से, वो कहते हैं ना, रोड मैप बनाने में मदद मिलती है, और उसी रोड मैप पर हम बिना डगमगाए आसानी से चल सकते हैं। श्रोताओ, अधिकतर लोग असफलता के डर से हार मान लेते हैं। आपने अपने जीवन काल में ये महसूस किया होगा और उनसे कई बार सीखा भी होगा। तो आत्मविश्वास हमें इस डर से लड़ने की क्षमता देता है। जब हम डरना बंद कर देते हैं तो जोखिम लेने और फिर नई नई चीजें सीखने के लिए हम तैयार हो पाते हैं, जो किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत बहुत जरूरी है भाई। तो श्रोताओ, ये आत्मविश्वास एक चुंबकीय ऊर्जा की तरह है। जब हम

खुद पर यकीन करने लगते हैं तो अपनी कार्य क्षमता, जिसे एफिशिएंसी कहते हैं ना, वो बढ़ जाती है और फिर मुश्किल समय में भी हम सकारात्मक बने रह पाते हैं। और श्रोताओं, बाधाओं को रुकावट के बजाय सीखने के अवसर के रूप में अगर हम देखें तो फिर नैया पार है, बेड़ा पार है, है ना। श्रोताओं, हमें एक बात और जाननी होगी, वो ये कि मंजिल की राह कभी सीधी नहीं होती। जब तक रास्तों में मुश्किलें आती हैं तो केवल वही व्यक्ति टिका रहता है जिसे अपने कौशल पर और अपनी मेहनत पर अटूट अटूट विश्वास हो। तो श्रोताओं, ये विश्वास हमें बनाकर रखना पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वासी व्यक्ति गिरकर फिर से उठने का साहस रखता है और यही लगे रहने की जो प्रवृत्ति है वो हमें मंजिल के करीब तक ले जाती है। और इसी कारण ये कहा जाता है कि शुरुआत करना ही आधा काम पूरा हो गया, ये समझ लो, मतलब आधा काम पूरा करना है। श्रोताओं, आत्मविश्वास वो धक्का है, यानी वो फोर्स है जो हमें आराम के दायरे, यानी जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं, उससे बाहर निकालता है। और जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो फिर तूफानों में तैरना सीख जाते हैं। एक बार जब हम पहला कदम बढ़ा देते हैं तो फिर गति यानी मोमेंटम जो होता है वो अपने आप बनने लगता है। जिस तरह से घड़ी का पेंडुलम एक जमाने में हुआ करता था, उसे एक तरफ अगर हम ले जाकर छोड़ देते हैं तो दूसरी तरफ वो अपने ही फोर्स के साथ बढ़ जाता है और उसकी ये गति बराबर चलने लगती है। तो कहने का अर्थ ये है कि आत्मविश्वासी व्यक्तित्व की वो नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है, है ना। और बिना आत्मविश्वास के सबसे आसान काम भी पहाड़ जैसा लगने लगता है, ये तो हम मानते हैं, क्योंकि यदि नींव मजबूत है तो हमारी इमारत का बुलंद होना निश्चित है। और आत्मविश्वास के साथ पहाड़ को चीरकर रास्ता बनाना भी संभव हो जाता है। तो बातें तो हमने बहुत की, लेकिन सारी बातें काम की थी। अब एक पहेली हम बूझें। श्रोताओ, पहेली ये कि क्या हम बिना पहाड़ों को चीरकर भी रास्ता बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई पहाड़ न चीर सके तो आसमान चीरना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे पंछी अपना रास्ता बनाते हैं और ऊंचाइयों पर उड़ान भरते हैं। तो लीजिए श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम भी अरमानों को, ऊंचाइयों को उड़ान दे दें।

श्रोता, एक बात कहें आपसे, ये गीत कोई मिल गया फिल्म से है जिसमें बच्चों को मुख्य रूप से प्रदर्शित किया गया है और बच्चे वो शक्ति होते हैं, अगर उसे संचित रख सकें तो फिर पूरा जीवन बड़ी सशक्त रूप से पार हो सकता है।

0: हाँ, श्रोताओं, गीत संगीत का भी अपना एक अलग आनंद है। नमस्कार खूंटा, चंबल चैनल पर सुबह सवेरे की इस बेला में आप सुन रहे हैं।
1: मंगल भवन मंगल हारी
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT

0: श्रोताओं, मौसम की आदत है कि अक्सर बदलता रहता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। हम आपको बता दें, ज्येष्ठ मास में जयपुर सहित प्रदेश के मौसम में बदलाव का दौर लगातार जारी है। इसी बीच कल शुक्रवार को कुछ जगह पर बूंदाबांदी भी हो गई। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक बीते एक दिन में प्रदेश के अधिकांश शहरों के पारों में गिरावट दर्ज की गई और अधिकतम 6 डिग्री तक ये गिरावट दर्ज हुई है। श्रोताओं, कल प्रदेश के 17 शहरों का दिन का पारा 40 तो वहीं 11 शहरों का रात का पारा 25 डिग्री पार दर्ज हुआ और आगामी समय में भी पारे के उतार चढ़ाव के दौर को देखने की आशंका है। ये मौसम विभाग की ओर से जानकारी है। और ये भी बता दें आपको कि अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री। इसी दरमियान ह्यूमिडिटी जो है वो 15% अधिकतम रही और हवाएं भी चली लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और श्रोताओं, ये जो AQI होता है ना, पॉल्यूशन का स्तर, ये हमारे इलाके के धान मंडी में 121 था, नयापुरा में 114 और श्रीनाथपुरम जैसे इलाके में 87। तो श्रोताओं, हम इस पॉल्यूशन के स्तर को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इस बारे में हमको भी तनिक तनिक सा विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सीधे सीधे हम पर भी अपना प्रभाव छोड़ता है ना। नमस्कार, कोटा चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं। श्रोता, एक और बात कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसके बारे में अपनी राय शुमारी आप हमें दे सकते हैं व्हाट्सएप पर, जो है 95301 2020, और ईमेल आईडी भी है enjoyairkota@gmail.com पर।
1: '27 से पहले भारत के पास ऐसा कोई सशक्त माध्यम नहीं था जो भारत को एक सूत्र में पिरो सके। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे से पहली बार रेडियो की आवाज गूंजी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से। 8 जून 1936 को इसे नया नाम मिला, ऑल इंडिया रेडियो। एक ऐसी आवाज जो हर दिल तक पहुंची। धीरे धीरे ये सिर्फ एक आवाज नहीं रही, ये बनी भरोसे की अटूट पहचान, सूचना का सटीक स्रोत और भावनाओं की मजबूत डोर। यहीं से शुरू हुई आकाशवाणी की गौरवशाली यात्रा जो आज भी हर सुबह हर घर में गूंजती है।
0: श्रोताओं, हम घर से निकलते समय अगर अपनी मंजिल तय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है और सड़कों के इस्तेमाल के लिए भी कुछ नियम होते हैं। श्रोताओं, चंबल चैनल के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बता दें, सड़क पर चलते समय हमेशा अपनी बाई ओर यानी लेफ्ट साइड पर चलें, उसका इस्तेमाल करें लेफ्ट साइड का, और

0: जहाँ तक संभव हो सके और जहाँ तक उपलब्ध हो अपने फुटपाथ का इस्तेमाल करें। अगर आप अपने घर के आजू बाजू पैदल कहीं जा रहे हैं, सड़क पार करते समय जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग है उसी का इस्तेमाल करें। हर कहीं से तेज रफ्तार वाहन जहाँ से निकलते हैं वहाँ से रोड पार ना करें, उससे दुर्घटना होने की संभावनाएं होती हैं। और जब रोड पार करना होता है तो पहले दाएं फिर बाएं और देखकर ही उसे पार करें, क्योंकि अगर कोई कहीं से आया तो दुर्घटना से देर भली, ये जो स्लोगन है इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। और चलते समय वो इस्तेमाल कभी ना करें जिसका इस्तेमाल हम अक्सर किया करते हैं भाई, वो है मोबाइल। मोबाइल का इस्तेमाल हम शांत रहते हुए करें तो बेहतर। चलते चलते अगर किसी की रिंग आ गई और हमने यकायक फोन उठा लिया तो हमारा ध्यान निश्चित रूप से बट जाता है और ऐसे में फिर हम सड़क पर जो यातायात के नियम है उनका ख्याल नहीं रख पाते और संभव है कि दुर्घटना के हम शिकार हो जाएं। सड़क पर चलते समय दौड़े नहीं यथावथा, और ट्रैफिक के जो संकेत हैं यानी जो हमारे जहन में है हमें सिखाया गया है उनका हम पालन अवश्य करें। वैसे तो आप जानते हैं कि हमारा जो कोटा शहर है वो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट से मुक्त हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें अपनी सुरक्षा के जो नियम है ना सड़क पर चलते हुए उनका ख्याल रखना ही चाहिए। श्रोताओ, जब ट्रैफिक की बात की है तो एक जानकारी हम आपको और देते चलें। जानकारी ये है कि राज्य सरकार ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर जो बनाए जाने वाले ऑनलाइन चालानों को लेकर कुछ नई व्यवस्थाएं लागू कर दी हैं। अब वाहन मालिक बिना चालान राशि जमा किए सीधे कोर्ट का रुख नहीं कर सकेंगे। नए इस नियम के तहत यदि कोई व्यक्ति चालान को चुनौती देना चाहता है तो भी उसे पहले चालान राशि का 50% 50% हिस्सा जमा कराना ही होगा और इसके बाद ही मामला न्यायालय में सुना जा सकेगा। इस बदलाव का उद्देश्य बेवजह जो लंबित मामले हैं उन्हें कम करना है और ट्रैफिक नियम के जो पालन है उनको सख्ती से लागू करना है। श्रोताओ, नई व्यवस्था के अनुसार बड़ी संख्या में लोग चालान कटवाने के बाद सीधे कोर्ट में अपील कर देते थे। चालान काटने के उसको अदा करने के बगैर ही सीधे अपील कर देते थे, जिससे न्यायालयों में इन मामलों के बोझ बढ़ते ही जा रहे थे। कई मामलों में तो लोग बिना कोई राशि जमा किए ही सुनवाई की प्रक्रिया शुरू करते थे और लंबे समय तक ये जो मामले हैं वो लंबित रह जाते थे। अब 50% राशि जमा करने की शर्त लागू होने से केवल गंभीर और वास्तविक मामले ही कोर्ट में जा सकेंगे। पहले जो नियम था वो ये था कि व्यवस्था में मालिक जो ऑनलाइन चालान कटने के बाद सीधे संबंधित कोर्ट में अपील कर देते थे, जिसके लिए उन्हें पहले चालान की कोई भी राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं होती थी। कई बार लोग चालान से बचने के लिए या समय निकालने के लिए कोर्ट का सहारा ले लेते थे, जिससे मामले का निपटारा लंबा खिंच जाता था। तो न्यायालयों पर ये दबाव कम हो सके इसलिए ये नई प्रक्रिया शुरू की गई है। तो श्रोताओ, ये जानकारी हमने ट्रैफिक नियम से संबंधित आपको दी और आशा यही करते हैं कि जो भी यातायात व्यवस्था है उसकी अनुपालना हम भी बखूबी करेंगे।
1: परियों को कभी किसी ने देखा तो नहीं, उनकी खूबसूरती शायद ऐसी होगी।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: और इसी चैनल पर सुबह सवेरे का कार्यक्रम नमस्कार कोटा आप सुन रहे हैं। श्रोताओं, एक जानकारी है, जिले में वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज संबंधित न्यायालयों और एडीआर सेंटर में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। इसके साथ ही तालुका स्तर पर रामगंजी मंडी, दिगोद और सांगोद में भी लोक अदालतें होंगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस लोक अदालत का संयोजक है, जिसके तत्वावधान में ये

आयोजन होगा और इस दौरान विभिन्न प्रकार के राजीनामा योग्य करीब 25,000 लंबित मामले और लगभग 15,000 प्री लिटिगेशन प्रकरण सहित कुल 40,000 मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। इनमें राजस्व विवाद, उपभोक्ता विवाद और अन्य अधिकरणों से संबंधित मामले शामिल हैं। लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कोटा मुख्यालय पर 10 बेंचों का गठन किया गया है, वहीं तालुका स्तर पर कुल 4 बेंचें गठित हैं। तो श्रोताओं, ये जानकारी आपके लिए कि अदालत में मामलों का निस्तारण दोनों पक्षकारों की आपसी राजीनामे के आधार पर होता है, ये जानकारी आपको है ही। नमस्कार, कोटा चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं। लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 0744-232-442, ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी जनवाणी लाभवाणी। श्रोताओं, पंछियों का गीत आपने कार्यक्रम के आरंभ में सुना था और इन पंछियों का ये जो सफर है कुदरत के सबसे हसीन और रहस्यमय अजूबों में से एक है। मीलों लंबी उड़ान, रस्तों की सटीक पहचान और बिना किसी नक्शे के अपने ठिकानों तक पहुंच जाना इंसान को वाकई हैरत में डाल देता है। हैरानी की बात यह भी है कि इन नन्हे पंछियों की दिशा जानने के लिए इन्हें सूरज, सितारों और यहाँ तक कि धरती के चुंबकीय क्षेत्र, जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं ना, उनका इस्तेमाल ये पंछी करते हैं। उन्हें ये पता होता है कि कब उत्तर की ओर जाना है और कब दक्षिण की ओर। हजारों मीलों का लंबा सफर तय करने के लिए ये पंछी महीनों तक उड़ान भरते हैं। कुछ प्रजातियां तो बिना रुके समुद्र को पार करने लगती हैं और उनकी जो जिजीविषा है ये उसी का प्रतीक है, जिसे हम विल पार भी कहते हैं। जब उनके मूल निवास में कड़ाके की ठंड पड़ती है ना, तो भोजन की कमी हो जाती है और तब वे नए ठिकानों की ओर अपना रुख करते हैं। भारत जैसे देशों में सर्दियों के दौरान आपने साइबेरियन क्रेन की बातें तो सुनी ही होंगी। श्रोताओं, प्रवास के दौरान पंछी अक्सर वी आकार में उड़ते हैं और ये देखने में बड़ा सुंदर लगता है। जब ये झुंड आसमान के एक लंबे लय में उड़ते जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कोई कविता सी लिख रखी हो। श्रोताओं, क्या आपने हाल ही में अपने आसपास किन्हीं खास प्रवासी पक्षी को देखा? अगर प्रवासी नहीं तो हमारे देशी पक्षियों को तो देखा होगा, उनका ख्याल रखने का भी हमें जतन करना चाहिए। श्रोताओ, इन पंछियों की दिशा ज्ञान के अलावा एक और प्राणी है जो हम इंसानों के लिए दिशा का ज्ञान देता है और वो है, बताएं, पुराने समय में जब कंपास या जीपीएस नहीं थे तो ये घोड़े थे जिन पर सवार लंबी दूरी तय करने के लिए प्राकृतिक संकेत, याददाश्त और अपनी शारीरिक क्षमताओं का हम उपयोग करते थे। घोड़ों में दिशा निर्देशन यानी नेविगेशन की अद्भुत क्षमता होती थी। अक्सर जो सवार हैं घोड़े के, वो दिशा तय करने के लिए बात को घोड़े पर ही छोड़ देते थे, क्योंकि घोड़े थकान या फिर अंधेरे में भी घर का रास्ता खोजने के लिए बड़े माहिर होते थे। आज श्रोताओं, जब घोड़े की बात चली तो एक विशेष घोड़ा जो आपको भी याद होगा उसका जिक्र करते हैं, मगर ये जिक्र जरा संगीतमय हो जाए तो आप भी अच्छे से समझ पाए। समझे इस धुन से कि किस घोड़े की बात हो रही है।

तो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जिसका जिक्र इस गीत में श्रोताओं, अद्भुत साथी था चेतक महाराणा प्रताप का। अरबी नस्ल का ये घोड़ा था जिसे गुजरात के व्यापारी से महाराणा प्रताप ने खरीदा था। वो केवल तेज रफ्तार वाला ही नहीं बल्कि बहुत समझदार था, बहुत निडर था और युद्ध में प्रताप की हर हरकत को वो समझता था कि वो क्या चाहते हैं। श्रोताओं, 18 जून 1576 को हुए हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी बहादुरी की मिसाल कायम की। सिंह के हाथी के मस्तक पर अपने अगले पैर रखकर महाराणा प्रताप को मान सिंह पर भाले से वार करने का चेतक ने अवसर दिया था। श्रोताओं, महाराणा प्रताप, जिनका हम जिक्र चेतक के माध्यम से कर रहे हैं, आज उनकी जन्म जयंती है। और आप जानते हैं श्रोताओं, महाराणा प्रताप जो जब युद्ध करते थे तो कई किलो का

भी माना जाता है। 1905 में उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी यानी भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से राष्ट्र सेवा करना था। और ऐसे ही सेवकों को हम हमेशा याद रखते हैं हमारे जहन में, इसीलिए आज नमस्कार कोटा कार्यक्रम में भी इन सभी को शुमार किया गया। तो इन सब की हम वंदना करें चंबल चैनल से। अब श्रोताओं, कार्यक्रम अपनी समाप्ति पर है और चलते चलते आपसे यही कहें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग एन के मीणा का और सुरेंद्र तवर का था। कार्यक्रम में संयोजन तेजरा मीणा का, और अब राजेश महावर भी आपसे चाहता है अनुमति, स्वीकार कीजिए नमस्कार।

नमस्कार कोटा श्रोताओं, सुबह सवेर का ये कार्यक्रम चंबल चैनल पर आपने सुना। आप ट्यून इन है FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। फिल्म संगीत सुनवाते हैं आपको थोड़ी ही देर में।

तो श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाएं, उसके पहले जानकारी आपकी सेहत सजीव फोन इन कार्यक्रम के बारे में। श्रोताओं, विषय होगा इस कार्यक्रम का गर्मियों में आयुर्वेद के अनुसार हो हमारी जीवन शैली, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक ज्योति शर्मा जी हमारे साथ उपस्थित होंगी, और आप सभी श्रोता इस टेलीफोन नंबर के जरिए कार्यक्रम में अपनी भागीदारी कर सकेंगे। टेलीफोन नंबर 29 4 11 42, एसटीडी कोड 0744। तो श्रोताओ, इस जानकारी के साथ अब कार्यक्रम का करते हैं आगाज। यह कार्यक्रम का पहला गीत, फिल्म का नाम कश्मीर की कली, और गाना है ये।

श्रोताओ, इस गीत में सुरों की घटा भी छाई थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों की। एस एच बिहारी के ये शब्द और ओपी नैयर का ये संगीत था कश्मीर की कली, ये नाम फिल्म का।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: फिल्म संगीत चंबल चैनल पर श्रोता इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम के अगले गीत के पहले जानकारी एक बार फिर आपकी सेहत की। सजीव फोन इन कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम में आज भागीदारी करेंगी विशेषज्ञ आयुर्वेदिक चिकित्सक ज्योति शर्मा जी। आप सभी श्रोता, गर्मियों में आयुर्वेद के अनुसार हमारी जीवन शैली कैसी हो इस विषय पर अधिक जानकारी लेने के लिए फोन कर सकेंगे।

इस टेलीफोन नंबर पर। टेलीफोन नंबर है 29411 42, एसटीडी कोड 0744। तो इस जानकारी का लाभ अवश्य आप लीजिएगा और कार्यक्रम का लाभ तो सबसे ज्यादा लीजिएगा। नमस्कार कोटा के बाद फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं चंबल चैनल पर। कार्यक्रम का यह है अगला गीत। ये आवाज है मोहम्मद रफी की, साथ लता मंगेशकर ने दिया।

0: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत कारवां फिल्म से आपने सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का ये स्वर था और संगीत आर डी बर्मन का।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोता, वो प्रोग्राम जिसे आप गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक रिकॉर्ड करवाते हैं, उस प्रोग्राम का नाम है हेलो आकाशवाणी। और वही कार्यक्रम शनिवार रात 9 बजे यानी आज रात 9 बजे से 10 बजे तक आप सुनेंगे, तो सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी। फिलहाल आप चंबल चैनल पर सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

दिल तेरा दीवाना फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें थी। शैलेंद्र का ये गीत था। फिल्म संगीत चंबल चैनल से श्रोता आप सुन रहे हैं।

श्रोताओं, चंबल चैनल पर इस समय आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से गीत। ये गीत था लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, शंकर जयकिशन का संगीत और शब्द हसरत जयपुरी के। कार्यक्रम के अंत में ये गीत।

0: मिस्टर एंड मिसेस 55। इस फिल्म में गीता दत्त और मोहम्मद रफी को श्रोताब आपने सुना। मजरू सुल्तानपुरी के शब्द और ओपी नैयर का ये संगीत था। फिल्म संगीत पुरानी फिल्मों से आप सुन रहे थे चंबल चैनल पर। सुबह के 8 बजते हैं, थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात आप सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल RN रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष द्रष्टाओं ने जो सुनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सुनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाए।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। IUML ने TVK को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले TVK ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। AMMK पार्टी के नेता TTV दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्ना रुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक S. कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें AIADMK के महासचिव एडप्पडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व

0: निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्यम को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में LVMH मोइट हेनेसी लुई विटो ACE के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
3: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, UAE, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन सुगम बनाना है। अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमरीकी रक्षा बलों ने UAE के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन

0: आर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इसे ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manavka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्ता ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी। राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पन्ने पर AI समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक AI चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून, ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार, लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी

0: तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने AFC अंडर 17 महिला एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से हम बोल रहे हैं। श्रोता ट्यूनिंग है आप FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर। साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। तो श्रोताओ लेकर उपस्थित हैं वही बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम जिसका आपको इंतजार था, आपकी सेहत। श्रोताओ इस सजीव फोन इन कार्यक्रम में आज का विषय गर्मियों में आयुर्वेद के अनुसार हो हमारी जीवन शैली, और विशेषज्ञ हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक ज्योति शर्मा जी हमारे साथ हैं। लेकिन आइए पहले कार्यक्रम कुछ यूं शुरू करें।
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा। फोन नंबर 9351412449।
3: अब लेसिक लेजर से पाएं चश्मे से आजादी। विश्व की सबसे आधुनिकतम अमेरिकन सिग्नेचर फेको मशीन द्वारा बिना इंजेक्शन, बिना टांके और बिना पट्टी बांधे मोतियाबिंद ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण।
2: आपके पर्दे की सभी बीमारियों की जांच एवं ऑपरेशन सुविधा उपलब्ध। लेसिक लेजर सर्जरी, फेकिंग लेंस इम्प्लांटेशन, डिजिटल फंडस कैमरा से आंखों के पर्दों की जांच एवं एंजियोग्राफी, पानी ग्रिल लेजर मशीन से मधुमेह रोगियों के पर्दे की सिकाई,
3: जटिल भेंगापन एवं काला पानी जांच और ऑपरेशन सुविधा।
2: सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेजिक लेजर सेंटर तलवंडी कोटा।
1: तो श्रोताओ एक बार फिर से कार्यक्रम के आरंभ में ही आपका स्वागत करते हैं। सजीव फोन इन प्रोग्राम है ये आपकी सेहत, जिसके बारे में आपको बताया ही था। तो फिर स्वीकार कीजिए नमस्कार राजेश महावर का और आज की हमारी अतिथि डॉक्टर ज्योति शर्मा। नमस्कार डॉक्टर साहिबा।
4: नमस्कार सभी को।
1: जी मैम, आज आयुर्वेद के बारे में हम बात करेंगे। मौसम बदल कर गर्मी का हो चला है, लेकिन इसमें भी कुछ परिवर्तन है। तो ऐसे में जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर का तापमान भी बदलता रहता है, और उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए हमें कई तरह की तकलीफें वो देता है। लेकिन जब हम आयुर्वेद की जीवन शैली अपनाते हैं, यानी प्राकृतिक जीवन शैली हम अपनाते हैं, तो हम प्रकृति के साथ रहते हैं और प्रकृति हमसे फिर दोस्ती का व्यवहार करती है। इस बारे में कार्यक्रम के आरंभ में ही आपका क्या कहना है?
4: मेरा ये कहना है कि अभी जैसे कि ग्रीष्म ऋतु आ गई, तो ग्रीष्म ऋतु है बहुत ज्यादा बाहर जैसे टेम्परेचर ही 42-45 तक रहता है, और इतना अपना जो नॉर्मल टेम्परेचर है बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, बहुत डिफरेंस है
1: जी।
4: तो इस डिफरेंस के तहत कई जैसे मनुष्य हैं जिनका बॉडी कोऑपरेट नहीं कर पाती है इस टेम्परेचर से, तो फिर उनको विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। जैसे कि सुबह उठ के किसी को टेम्परेचर वेरिएशन नहीं सहन हुआ तो जुखाम, छींके
1: जी,
4: किसी किसी को फीवर भी आ जाता है, बुखार आ जाता है। मौसमी समस्याएं हैं, रेगुलर होती हैं। किसी किसी को त्वचा से रिलेटेड समस्या हो जाती है, जैसे लाल लाल से चकत्ते हो जाएंगे, दाफड़ जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में, जिसको हम लोग आयुर्वेद में शीत पित्त बोलते हैं
1: जी।
4: तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो मौसम के परिवर्तन से बॉडी में आ जाती हैं, शरीर में आ जाती हैं
1: जी। तो डॉक्टर साहब भैया आपने परिचय दिया कि आज हमारा जो विषय है उसका, अब हम आपका परिचय अपने श्रोताओं को दे देते हैं। श्रोताओ डॉक्टर ज्योति शर्मा आज हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कोटा में। तो डॉक्टर साहिबा कितने समय से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस संस्थान में?
4: जी मैं आयुर्वेद विभाग में 2021 में आई थी और इस कॉलेज में मैं 2022 में से हूँ। निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विभिन्न यहाँ पर हम लोग विभिन्न प्रकार के मरीज जो विभिन्न संस्थागत बीमारियां लेकर आते हैं उनको हम अपना ट्रीटमेंट देते हैं। आयुर्वेद से प्राकृतिक चिकित्सा भी हमारे यहाँ चलती है आयुर्वेद चिकित्सालय में, आयुर्वेद कॉलेज में। तो उस सबका मतलब एक ये कह लीजिए कि भारतीय चिकित्सा पद्धति है चूंकि आयुर्वेद
1: जी।
4: तो और हम लोग भी पंच महाभूत से बने हुए हैं
1: जी,
4: तो इसलिए सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो मतलब जिन भी भावों से हम लोग बने हुए हैं उन्हीं भावों की बनी हुई मेडिसिन अगर हम लेंगे तो वो ज्यादा हमारी बॉडी में इफेक्ट करती हैं, बजाय किसी स्टीरॉइड या कोई मतलब ऐसी चीजें लेना जिससे कि हमारी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट्स हो
1: जी।
4: तो बिना साइड इफेक्ट्स के बॉडी जल्दी कोऑपरेट करती है, जल्दी उसका असर भी दिखता है, बीमारियां सही भी होती हैं और रेगुलर एक्टिविटीज शुरू हो जाती है।
1: बिल्कुल, तो जो वाक्य आपने बोला कि ऐसा हम बोलते हैं वही सबको बोलना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, बोलने के लिए इसमें हमारे श्रोता जुड़ते हैं हमसे, श्रोताओं से मुखातिब

0: हुए हम बता दें, श्रोता टेलीफोन नंबर 29411 42 एसटीडी कोड 0744। तो डॉक्टर साहिबा, एक श्रोता हमसे जुड़े हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: जी साहब,
1: आपको नमस्कार। मैं कोटा से बोल रहा हूँ सर, मेरी एज 66 है। डॉक्टर साहब, आप आयुर्वेद में MD हैं। मेरे साथ एक थोड़ी सी मेरी क्वेरी, आपके थोड़े सब्जेक्ट में तो अलग है, लेकिन अभी एक प्रोग्राम में बताया गया है कि गैस्ट्रिक ट्रबल रहती है तो खाने के बाद में आप आंवले के चूर्ण, आंवला पाउडर मतलब, उसको आप ले सकते हैं पानी के साथ। तो साहब, वो गर्म पानी के साथ ले, ठंडा पानी के साथ ले, और मात्रा कितनी होनी चाहिए?
2: अगर आपने जैसा कि मुझे बताया कि गैस बनी रहती है,
1: हाँ जी
2: है ना, तो हाँ। गैस बनी रहती है, इसके लिए मेरे हिसाब से आपको लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है, आपका पाचन सही नहीं रहता।
1: डॉक्टर, लिवर संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी जांचें करा रखी हैं।
2: ठीक है, ठीक है।
1: हाँ,
2: तो फिर आप ऐसा,
1: पेट भारीपन रहता है,
2: पेट में भारीपन रहता है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। एक तो आप अपनी भोजन का जो टाइमिंग है उसको सुधारिए। हाँ,
1: जी
2: है ना, आपका रेगुलर क्या टाइमिंग रहता है बताइए, लंच का, डिनर का?
1: सुबह मैं सुबह 10 बजे खाना खा लेता हूँ, शाम को 5:30 से 5-6 बजे तक खाना खा लेता हूँ।
2: उसके बाद फिर आपको नॉर्मल वॉक भी करनी चाहिए भोजन के बाद में।
1: सुबह
2: और कितने भोजन के कितने समय बाद आप पानी का सेवन करते हैं?
1: आधा घंटे बाद।
2: आधे घंटे, आधे से पौन घंटे के बाद में आप सेवन करिए। सलाद की मात्रा ज्यादा यूज करिए
1: जी।
2: मेरे हिसाब से कि भोजन से पहले, मतलब आप जैसे ही डिनर या लंच शुरू करें उससे पहले आप एक कटोरी सलाद यूज करें, जिससे आपका जो फाइबरस मटेरियल है बॉडी में वो ज्यादा जाए, तो पाचन इजीली होगा। पाचन इजीली होगा तो आम नहीं बनेगा, आम मतलब अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द फूड, वो नहीं बनेगा और आपको गैस की भी वो नहीं होगी प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आंवले का यूज आप जैसा बता रहे हैं तो आप उसको नॉर्मल, जो नॉर्मल पानी एकदम बिल्कुल नॉर्मल ल्यूक वॉर्म ले लें या बिल्कुल नॉर्मल सादा पानी लीजिए, अभी तो गर्मी का सीजन है वैसे, उसको आप आंवला के चूर्ण ले सकते हैं।
1: मात्रा कितनी लेते हैं?
2: एक चम्मच मतलब 5 ग्राम। हाँ,
1: थैंक यू।
2: ओके,
0: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम। आप नियमित श्रोता हैं महेश जी हमारे, और आशा करते हैं कि आपको चंबल चैनल के प्रसारण अच्छे लगते होंगे। डॉक्टर साहिबा, पहले श्रोता के तौर पर महेश जी हमसे जुड़े, ये जो भोजन की बात है, भोजन की भी एक व्यवस्था होती है, भोजन करने का भी एक तरीका होता है। आयुर्वेद क्या कहता है कि भोजन किस तरह से लेना चाहिए, क्योंकि भोजन वो हो जो हमें दवा की तरह इस्तेमाल हम कर सकें, ऐसा ना हो कि भोजन को हम ऐसा बना लें जो हमें बीमार कर दे।
2: बिल्कुल सही बात है, आयुर्वेद में भोजन के प्रति इतना सजगता है आचार्यों ने, इतना अच्छा, मतलब हम लोगों के चरक संहिता में एक 5वां चैप्टर है चरक सूत्र में, मात्रा शीति अध्याय, उसमें भोजन के मात्रा के बारे में ही स्पेशली बताया गया है कि जैसे बताया गया है आचार्यों ने कि ना धीमे धीमे भोजन की जो मात्रा है, एक तो अल्प होनी चाहिए
0: जी।
2: भोजन यथावत विधि विधान से न मतलब ना तेज गति से नहीं होना चाहिए
0: जी,
2: और हंसते भोजन के समय में हंसना नहीं चाहिए, शांत वातावरण में भोजन करना चाहिए पहली बात तो। और उसी बात है कि भोजन को जैसे धीमे बता दिया मैंने आपको, धीमी गति से
0: जी।
2: भोजन में सलाद की मात्रा लीजिए, भोजन को हंसते हुए या फिर भोजन जल्दी के जैसे
0: प्रसन्नता से,
2: प्रसन्नता के साथ
0: से, जी।
2: मतलब तन मना भुंजीत वर्ड बोला गया हमारे यहाँ ये वर्ड था कि उसके तहत हमारा भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें जो भोजन है हमने उसको औषध के रूप में माना है। तो औषध है, इट मींस अब वो बिल्कुल विधि विधान से यूज होनी चाहिए
0: जी, जी।
2: तो इसके लिए बोला है कि ना जलपन, ना ज्यादा तेज गति से, नहीं धीमी गति से लीजिए, हल्के मतलब भोजन को चबा चबा के, चरवण्य बोला गया वर्ड हमारे यहाँ पे, कि चबा चबा कर भोजन का उपयोग करिए। हम बच्चों को भी सिखाते हैं, तो बच्चों को क्या, सभी को इसका आइडिया होना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाएं कि बस जैसे आजकल का एक ट्रेंड चल गया कि जंक फूड खाओ धमाधम वो तो पच जाएगा, ये है वो है, ऐसा नहीं होता। आप मैदा का यूज कर रहे हैं, फिर आप ना मतलब जो बिल्कुल फाइन पाउडर जिसको अपन बोलते हैं वो होता है मैदा
0: जी,
2: वो अपने इंटेस्टाइन में पच ही नहीं रहा। हाँ। और ट्रेंड आजकल वही हो गया है, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, इसका ट्रेंड आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा है बच्चों को। तो मतलब यूथ जो है हमारी वो तो बिल्कुल इसकी तरफ डिफ्लेक्टेड है।
0: और डॉक्टर साहिबा, एक यहाँ पर हम जरा उलझा हुआ प्रश्न आपसे करें
2: जी,
0: एक बच्चे से जो पिज्जा बर्गर वाली स्थितियां हैं उससे हमने एक प्रश्न किया कि भाई ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें मैदा का इस्तेमाल होता है। उनका जवाब था कि वैसे भी कहा जाता है कि भोजन चबा चबा के बारीक करके निकला जाए तो फिर हम क्यों ना सीधे ही मैदा खा लें।
2: यही तो बात है, भोजन चबा चबा कर खाना
0: जी
2: ये एक अलग चीज है, और मैदा सुपर फाइन फ्लोर है, उसका पाचन अपनी इंटेस्टाइन में नहीं होता
0: जी,
2: वो यथावत एज इट इज पड़ा रहता है। जो अभी इससे पहले जो श्रोता ने जैसे कंप्लेन करी गैस बनती है, ये जो भोजन की जो व्यवस्था है ये अपने यहाँ की नहीं है, वेस्टर्न इंडियाज, वेस्टर्न कंट्रीज की,
0: वेस्टर्न कंट्रीज की।

0: सो वी शुड नॉट फॉलो दिस, हमें इसको नहीं फॉलो करना चाहिए. हमारा जो एक वो है जलवायु, वो जलवायु में मैदा सूट नहीं करती हमको, वो उसमें पाचन ही हमारे इंटेस्टाइन में इस प्रकार के एंजाइम से सिक्रीट नहीं हो रहे हैं फ्रॉम द स्टमक फ्रॉम द इंटेस्टाइन कि वो उनको पाचन कर सके. तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए.
1: बिल्कुल. और फिर देशकाल परिस्थिति का भी अपना एक महत्व होता
0: है. देशकाल परिस्थिति मात्रा
1: जी बिल्कुल. एक श्रोता हमसे जुड़े हैं. नमस्कार.
2: नमस्कार राजेश जी.
1: नमस्कार साहब, आपके धैर्य को प्रणाम करते हैं हम. लेकिन आपका नाम भी आप ही से लेकिन आपका नाम भी हम आप ही से जानना चाहेंगे.
2: जी राजेश जी, मैं सीताराम मीणा बोल रहा हूँ.
1: जी बहुत स्वागत है सीताराम जी, कीजिए अपना प्रश्न.
2: डॉक्टर साहिबा को मेरा प्रणाम.
0: नमस्कार जी.
2: मैं डॉक्टर साहिबा से पूछना चाहता हूँ कि आप रसोई से पेट साफ का कोई ऐसा नुस्खा बताएं जो वास्तव में वो कारगर हो, क्योंकि मेरे को पेट साफ के लिए दवाई लेनी पड़ती है वो क्या नाम से अपने मेडिकल से.
1: जी जी जी
2: डॉक्टर से
1: जी.
2: तो आप रसोई से कोई ऐसा संबंधित पेट साफ का नुस्खा बताएं जिससे मुझे दवाई बंद हो जाए.
1: बिल्कुल सीताराम जी, डॉक्टर साहिब समझ गई हैं कि आपको डॉक्टर से नहीं अपनी जो गृहिणी है उनसे लेना है.
2: हाँ
1: ली जी
0: जी. मैं ये कहना चाहूंगी इसके लिए कि अगर आपको रसोई अपनी नॉर्मल एक रसोई से ही किसी औषधि का सेवन करना है तो इसके लिए आप शुंठी का प्रयोग करिए. सौंठ पाउडर, सौंठ पाउडर नॉर्मल सबकी किचन्स में मिलता है, सबकी उसमें मिलता है किचन्स में. तो आप शुंठी का पाउडर जो है भोजन के उपरांत एक आधा चम्मच शुंठी का पाउडर, सौंठ का पाउडर एक कप पानी में मिक्स करके उसको पी लीजिए सुबह शाम. ये बहुत अच्छा आम पाचक है. नहीं तो अगर आप एफर्ट्स कर सकें तो पिपली और मरिच, हर जो पंसारी की दुकान है सब जगह मिलता है. देखिए तो पिपली मरिच लेके, पिपली मरिच और शुंठी समान मात्रा में इसको आप कूट के इनको एक तरह का पाउडर बना लीजिए जिसको हम त्रिकटू बोलते हैं, त्रिकटू पाउडर. ये आम पाचन बहुत अच्छा करता है, आपका भोजन अच्छे से पच जाया करेगा. और जैसा कि मैंने इससे पहले भी बताया कि एक कटोरी सलाद भोजन से पूर्व आप खाइए, ठीक है. और फिर इसके बाद में ये त्रिकटू चूर्ण आप यूज करिए, 1 ग्राम 5 ग्राम सुबह शाम भोजन के उपरांत. तो आपका ये पाचन भी अच्छे से होगा और वॉक भी करिए रेगुलर. ये जैसे भोजन उपरांत आप टहलिए, आधा घंटा टहलिए, 1-2 किलोमीटर टहलिए. अभी तो वैसे भी ग्रीष्म आपका ग्रीष्म सीजन है तो इसमें बहुत अच्छा लगता है. आप सुबह सूर्योदय के उपरांत कब कितने बजे आप उठते हैं, आपका रूटीन क्या है बताइए.
2: 5 बजे उठ जाता
0: हूँ. हाँ तो बहुत अच्छी बात,
1: बहुत
0: है
1: सुंदर.
0: आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं 4 से 6 बजे के बीच उठिए. ना नॉर्मल आप उषा पान करिए, जो सुबह का जो पानी नवाया होता है वो लीजिए, उसका पान करिए और वॉक करिए. आपका वैसे ही आपका डाइजेशन अच्छा हो जाएगा और आपको जो नित्य कर्म आपके करके उसके बाद में आप ठीक रहेगा. और बाकी त्रिकट यूज करिए,
2: सौंठ का पाउडर सबसे बढ़िया रहेगा,
0: बहुत अच्छा रहेगा. पिपली मरीच अगर साथ में इसमें आप प्रयोग कर लें, ले आए पंसारी से, तो और भी अच्छा रहेगा.
2: पिपली पीपल और मरीच, ये
0: काली मिर्च.
2: अच्छा
0: मरीच. जी. ये आयुर्वेद की टर्म्स हैं थोड़ी.
1: जी.
2: एक तो काली मिर्च
0: हाँ, और पिपली
2: और पीपल
0: हाँ
1: जी.
2: छोटा या बड़ा?
0: ये छोटी वाली
1: जी.
2: अच्छा छोटी वाली
0: हाँ.
2: ठीक है मैडम, धन्यवाद आपको बहुत.
1: आपका भी बहुत धन्यवाद सीताराम जी. आपको इतनी जानकारी है कि कुछ चीजें छोटी और बड़ी भी होती हैं. बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए. आशा करते हैं आपका स्वास्थ्य बहुत ही सुंदर बना रहे. जी डॉक्टर साहिबा, हमारे श्रोताओं की जिज्ञासा बूझने के लिए हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं. नमस्कार.
3: हेलो.
1: हाँ जी नमस्कार.
3: सजीव गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव बोल रहा. सर जी.
1: मनोज जी स्वागत है आपका, कैसे हैं?
3: बस सर जी बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ.
1: बहुत ही सुंदर बात है. आज के इस कार्यक्रम में अपना प्रश्न कीजिए.
3: जी सर जी, मेरा एक प्रश्न है कि मैं अक्सर बहुत दिन से देख रहा हूँ, जब सुबह उठता हूँ मैं तो मेरे को अक्सर जुकाम हो जाता है और इसके बाद फिर लगभग 1-2 घंटे बाद जैसा नॉर्मल था वैसे हो जाता हूँ. तो इसका अब जब तक जैसे मैं गोली खा लेता हूँ, जब तक सह लेता हूँ फिर हो जाता है. तो
1: ये क्या है ना,
3: नहीं झेल पा रहे, क्या है थोड़ा सा मेरे को बता दे.
1: हाँ जी हाँ जी सुनिए.
0: यही इसी के लिए मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ऋतु परिवर्तन, यही ऋतु परिवर्तन है जिसका हम लोग की बॉडीज होती है वो कॉपरेट नहीं कर पाती है ना. तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये श्रोतागण क्या नाम बताया
1: इनका नाम है मनोज जी.
0: मनोज जी मैं अभी

0: मुझे क्या है ना,
1: प्रेशर नहीं झेल पा रहे, क्या है थोड़ा सा मेरे को बता दें।
0: हाँ जी हाँ जी सुनिए,
2: यही इसी के लिए मैंने अभी पहले आपको बताया था कि ऋतु परिवर्तन, यही ऋतु परिवर्तन है जिसका हम लोग की बॉडीज होती है वो कॉपरेट नहीं कर पाती है, है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना है, ये श्रोतागण क्या नाम बताया,
0: इनका नाम है मनोज जी।
2: मनोज जी, मैं अभी यही बात कर रही थी कि जैसे ऋतु परिवर्तन कई जो मनुष्य होते हैं उनकी बॉडी को नहीं सूट करता है, आपको हो सकता है कि आप कफ की प्रकृति है, आपकी ज्यादा कफ है आपके अंदर, तो इसके लिए क्या करना है, तो भोजन का जो काल है वो सही रखिए, जो रात का भोजन है जैसे वो 6-7 बजे तक करके, जिससे कफ प्रकोप ना हो, एक तो ये करिए, नॉर्मल डाइट लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, और सुबह उठने के बाद में है ना, नित्य रूप से आप नित्य कर्म करने के बाद में सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये करिए, इससे आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, है ना आपके, और ना एक नस्य कर्म जो होता है, ये जो ये जल नेति का प्रयोग करिए, कफ बिल्कुल आपका जो ये नाक में जो भी जैसे कफ कई बार आ जाता है, हम लोग छींके भी आ रही है, तो ये जो नेजल ट्रैक्ट है वो भी सही हो जाता है, इससे कुछ नहीं करना है। अपन जो सूर्य को अर्घ देते हैं वो वाला पात्र लीजिए, नवाया पानी, गुनगुना पानी लीजिए, उसमें सेंधा नमक डाल के सर को थोड़ा सा टिल्ट करके, थोड़ा सा टेढ़ा करके, एक नासिका रंध्र से डालेंगे, दूसरी नासिका रंध्र से जला जाएगा, पूरा जो नेजल ट्रैक्ट है साफ हो जाएगा, कफ की भी बिल्कुल जो मतलब बहुत कम हो जाएगा वो कफ, चाहे वो नाक से ले लीजिए, नाक गला ये सब कनेक्टेड है
0: जी जी,
2: तो आप काफी इसको आपको सुधरा रहेगा। बाकी आप दूध हल्दी का प्रयोग करिए, बहुत अच्छा है
0: जी। और ये जो पात्र का नाम आपने लिया उसे शायद राम झारा भी कहते
2: exactly,
0: हैं जी जी। अब तो मनोज जी
1: बिल्कुल दीदी, आपने बहुत अच्छे कहे की समस्या का समाधान किया, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।
0: कहा बात है मनोज जी, हमारी बात कहे जा रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया मनोज जी, आपने फोन किया चंबल चैनल पर। डॉक्टर साहिबा, छोटा सा अंतराल, उसके बाद फिर और बहुत से प्रश्न।
3: नजर धुंधली हो या नंबर हाई, चश्मा हटाना हो या मोतियाबिंद, सुवी आई हॉस्पिटल पर आपको मिलेगा आंखों की समस्या का हर इलाज।
4: अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से आए ट्रेन डॉक्टर्स आप कोटा में, एडवांस मशीन्स के साथ आंखों की हर समस्या की जांच और उपचार, लेसिक लेजर से पाए चश्मे से आजादी, और फेकिक लेंस प्रत्यारोपण से मोटे चश्मे से छुटकारा।
3: विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा कैटरिक सर्जरी, रेटिना केयर और कॉर्निया उपचार।
4: सुवी आई हॉस्पिटल एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
3: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे सुवी नेत्र चिकित्सालय एवं लेसिक लेजर सेंटर, तलवंडी कोटा।
4: फोन नंबर 9351412449।
0: श्रोताओं, फिर से बहुत सारा स्वागत करते हैं आपका। सजीव फोन इन कार्यक्रम है ये आपकी सेहत, इसमें आज विशेषज्ञ है हमारे साथ आयुर्वेदिक चिकित्सक ज्योति शर्मा जी, और आज का जो विषय है, गर्मियों के इस मौसम में आयुर्वेद के अनुसार हम अपनी जीवन शैली कैसे रखें, इस पर। नमस्कार
5: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन साहब?
5: मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: राकेश जी, कैसा है मौसम शिमला में?
5: शिमला में इन दिनों लगातार बारिश हो रही थी, और आज जो है अभी मौसम साफ है।
0: अच्छा अच्छा, तो इस साफ मौसम में आप अच्छे से दिख रहे होंगे, बिल्कुल साफ साफ है ना, तभी आप कोटा तक पहुंच पाए जी। कीजिए अपना प्रश्न।
5: तो मेरा डॉक्टर साहब को नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
5: जी, मेरा एक प्रश्न है कि अगर गर्मी के मौसम में जैसे कि सर्दी खाम जैसे गला बैठता है, तो ऐसे में जो गला साफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
0: गला साफ करने के लिए, वो भी शिमला में जी डॉक्टर
2: जी, अगर जैसे अगर आपको बहुत ज्यादा गले में प्रॉब्लम रहती है, खराश रहती है, इसका मतलब ये है कि कफ का प्रकोप है ना। इसके लिए मैंने भी इससे पहले भी श्रोतागण को यही समझाया था कि एक तो आप है ना, सुबह उठ के गर्म थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें सेंधा नमक, एक चुटकी सेंधा नमक, एक चुटकी हल्दी और एक चुटकी मुलेठी का पाउडर, ये डालिए।
5: जैसे कि बलगम, कई बार हम कोशिश करते हैं बलगम बाहर निकालने, कई बार जो है बलगम जो है बाहर निकला वो अंदर जमा हो जाता है।
2: इसी के लिए बता रही हूँ। तो सेंधा नमक एक चुटकी हल्दी पाउडर, एक चुटकी मुलेठी पाउडर, इसका सेवन करिए, इसमें डालिए है ना, गुनगुने पानी में, एक कप गुनगुने पानी में या एक ग्लास गुनगुने पानी में। उसके बाद में इसके गार्गल्स करिए, गरारे करिए। ये जो प्रोसेस है इसको कम से कम दिन में 3-4 बार करिए। बाकी आयुर्वेदिक औषधियां आती हैं, गिलोय घनवटी आती है, गिलोय का प्रयोग करिए आप, सबसे अच्छी बात है। गिलोय की जो नॉर्मल बेल होती है, मुझे लगता है वो शिमला में भी मिलती होगी है ना। तो उस गिलोय की जो बेल होती है, उसकी जो कांड होती है, मतलब उसकी स्टेम जो होती है,
0: टहनी,
2: उस टहनी को काट दीजिए, छोटी छोटी छोटी छोटी मतलब

0: छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए, कुछ कुछ टुकड़े का सेवन आप उसको जैसे रोज सुबह ना एक तरह का काढ़ा बनाइए, उसमें तीन चार ये जो इसके टहनी के टुकड़े डाल दीजिए गिलोय के, उसमें थोड़ा मुलेठी पाउडर, थोड़ा हल्दी डाल दीजिए, तुलसी के पत्ते ले आइए, थोड़ी सी मिर्च डाल दीजिए, सुबह शाम इसका ना आप काढ़ा पीजिए, आपका बिल्कुल गला साफ और बिल्कुल ये जो अगर कोई इन्फेक्शन भी हो रहा होगा ना वो एंटीसेप्टिक भी है, प्योर एंटीसेप्टिक है एक्चुअली हल्दी और गिलोय, तो बहुत अच्छा, मतलब आपको जो कभी जैसे फीवरिश भी लगता हो, बुखार जैसा लगता हो, बदन में टूटन लगती हो, सुबह उठते ही लगती हो, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
1: जी
2: और आपका फोन करने के लिए धन्यवाद राकेश जी, बड़ी दूर से आपने फोन किया। डॉक्टर साहिबा, कुछ आम बातें होती हैं जो हम अपने जीवन शैली में अपना सकते हैं, जैसा कि आपने ये जो बातें बताई कि ऐसा लगता है अब दूर की सी बात हो रही है, लेकिन इसके अगर हम करीब रहेंगे तो स्वास्थ्य के हम करीब रहेंगे। डॉक्टर साहिबा, कुछ आहार विहार की बातें ही आज के इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं श्रोताओं को, क्योंकि प्रकृति के अनुसार जब हम चलते हैं वही आयुर्वेद अपनाना चाहता है। डॉक्टर साहिबा, कुछ सामान्य बातें जैसे लोगों को कब्ज अक्सर रहती है, आपने बताया खान पीन से वो वास्ता रखती है, और जब आयुर्वेद में नब्ज देखा जाता है, इसी तरह से सामान्य तौर पर जीभ भी देखते हैं, और जब जीभ श्वेत नजर आती है तो इसका मतलब ये कि
0: मलावृत
2: मलावृत है, तो उसके लिए क्या सामान्य बातें आप बता सकेंगे?
0: उसके लिए सामान्य बात में ये जैसे मैं कहूंगी, अगर जिह्वा हम जैसे टंग एग्जामिनेशन करते हैं, कोई भी पेशेंट आते हैं तो देखा हमने कि भाई मलावृत है, व्हाइटिश हो रखी है, कोटेड है,
2: जी
0: जनरली बच्चों की होती है,
2: जी जी
0: बड़ों की कमी होती है, जिनको भी पाचन संबंधी प्रॉब्लम है
2: उनकी जीभ साफ करने के बाद भी वो
0: फिर भी फ्रीक्वेंटली होगी, वो एक साइन है एक्चुअली कि आपके पेट में जो है डाइजेशन प्रॉपर, जो डाइजेस्टिव जूस है वो नहीं सिक्रीट हो रहा है, बाइल जो है बाइल सिक्रीट नहीं हो रहा है ढंग से, जिसका जिसकी वजह से लीवर प्रॉपर एक्ट नहीं कर रहा है, एंजाइम सिक्रीट नहीं हो रहा है ढंग से, और आपका जो जैसे ही भोजन ये स्टमक में आता है पाचन बिल्कुल गड़बड़ा जाता
2: है। बड़ा कारण है,
0: बहुत बड़ा कारण है एक्चुअली, वही मैं समझाना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि पाचन संबंधी जो समस्या, अगर आपका पेट सही नहीं रहा तो मैं लिटरली बता रही हूँ कि सारी प्रॉब्लम आम से ही होती है, आम मतलब अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी फूड,
2: किसी भी तरह की बीमारी,
0: किसी भी तरह की
2: जी,
0: यथा अन्न तथा मनः जो बोला जाता है, अन्न अच्छा रखिए, मन अपने आप अच्छा होगा।
2: इस बात को निरंतर रखेंगे, लेकिन एक श्रोता हमारे साथ, नमस्कार।
3: नमस्कार जी।
2: जी साहब नमस्कार, नाम बताएंगे अपना?
3: बड़वा से बोल रहा हूँ, मंजूर अली।
2: मंजूर अली जी कैसे हैं?
3: और बढ़िया है, सब ठीक है।
2: हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। कीजिए अपना प्रश्न आज के इस कार्यक्रम में।
3: मेरा प्रश्न ये है, मेरे मिसेज के लिए बोल रहा हूँ मैं, कि उसके थोड़े एक तो मोटापा बढ़ गया ज्यादा थोड़ा, और पेट बाहर आ रहा है, तो ये आजकल हमेशा वो ही रही है, तो इसकी बताओ आयुर्वेदिक कोई उपचार हो तो बढ़िया।
2: सुनिए मंजूर जी।
0: हाँ, आयुर्वेदिक उपचार में ये है कि एक सबसे पहले तो आप उनका थोड़ा सा जांचे कराएं, हो सकता है उनका थायराइड बढ़ा हुआ हो, कई समस्याएं होती हैं, मोटापा एक अकेली समस्या नहीं है, कई समस्याओं को मिलके भी मोटापा एक सिम्टम भी होता है ना, तो थायराइड की जांच कराइए, उनका अगर पाचन संबंधी समस्याएं हैं तो उनके पाचन को सुधारिए, है ना, उनको गैस निरंतर बनी रहती है, या फिर वो उनकी जो एक नॉर्मल सी लाइफस्टाइल है वो नहीं है उनकी, मतलब एक तरह से वो सिडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठी रहते हैं, या फिर मतलब काम तो कर रही है, नो डाउट सब लोग काम करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन इसके अलावा भी हमको एक नॉर्मल एक्सरसाइज भी करनी होती है, फिजिकल एक्टिविटी आप कितना कर रही है उस पर थोड़ा ध्यान दें अपने शरीर पर, जैसे मान लीजिए नॉर्मल जो थोड़े छोटे मोटे सूक्ष्म व्यायाम जो होते हैं उनका आप करिए, उपयोग करिए, हाथ पैर चलाना है, सुबह जल्दी टाइम पे उठना है, टाइम पर उठना बहुत बड़ी बात है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं इट मींस आप एक तो आप है ना 4 से 6 बजे के बीच में उठ रहे हैं ना, तो यूथ अगर इसको फॉलो कर ले या हम लोग भी फॉलो कर लें तो ये जो कफ प्रकोपक समस्याएं हैं वो सबसे निदान प्राप्त होता है, मतलब बहुत अच्छा बहुत शानदार है ये, इनको रूटीन को मैं कहना चाहूंगी सुधारिए, भोजन में आप मिक्स आटे की रोटी खाइए, आटे की जगह
2: जी
0: चना जो जई मिक्स करके खाइए, डायबिटीज भी नहीं होगी इससे, आगे मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज भी हो सकता है, तो इन सब का आप यूज करिए
2: जी। मंजूर जी। हाँ जी, ठीक है जी।
3: धन्यवाद,
2: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहिबा, हम जो बात कर रहे थे पाचन के संबंध में, कि हमें किस तरह से भोजन लेना चाहिए जो पाचन भी हमारा सुव्यवस्थित रह सके, तो इसमें आपने गुनगुने पानी का भी जिक्र किया,
0: बिल्कुल।
2: अब ये कि गर्मी का मौसम है, कहते हैं गुनगुना पानी पीने से और कमजोरी आती है,
0: गुनगुना पानी पीने से ऐसे ऐसा कमजोरी नहीं आती है, लेकिन हाँ अगर ग्रीष्म काल है जैसे, तो पहली बात तो ग्रीष्म काल में कोई भी गुनगुना पानी यूज नहीं करेगा, सुबह के टाइम पे नॉर्मल टेम्परेचर यूज करिए, गुनगुना नहीं तो नॉर्मल करिए, मतलब मेरा कहने का मतलब कि फ्रिज से निकले हुए पदार्थ

0: ना यूज करें।
1: हाँ, इसमें फ्रिज की भी अपनी एक महत्वपूर्ण
0: हाँ,
1: भूमिका है
0: हाँ,
1: कि हमें बीमार कर देती है।
0: बिल्कुल, लिटरली करती है। हम लोग पूरे वेस्टर्न कंट्रीज से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हमें वही पसंद आता है बस। आइसक्रीम निकाल लो, कोल्ड ड्रिंक कर लो, ये कर लो। इसका शुगर लेवल इतना ज्यादा है सर कि ये अब फ्यूचर में जाके, फ्यूचर भी मैं नहीं कहना चाहूंगी, 5-10 साल बाद ही ये जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, लिपिड्स बढ़ना, कई आपने देखा होगा नॉर्मल में आजकल गांठें बढ़ जाती हैं बॉडी में, लाइपोमा जिसे कहते हैं,
1: जी जी जी,
0: ये समस्या वही है।
1: ओ,
0: तो इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूंगी, सारे डिजीज तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकती हूँ इस शॉर्ट पीरियड में, लेकिन खान पान यथा, ये मैं अभी जो मैंने आपको एक टर्म बोली थी, यथा अन्न तथा मना, जैसा अन्न होगा मन भी आपका वैसे ही होगा।
1: बिल्कुल, तो श्रोता इस बात पर तो आप भी गौर कीजिएगा। और एक और आग्रह हम श्रोता आपसे करना चाहेंगे कि आज डॉक्टर साहब की बातें सुनने के साथ साथ आप उसे लिखना भी आरंभ कर दीजिए, तो एक कागज पेन जरूर लेके बैठिए, हो सकता है आपका निवारण इस कार्यक्रम में मिल जाए। एक श्रोता डॉक्टर साहब हमसे जुड़े हैं, नमस्कार।
2: नमस्कार जी।
1: जी साहब, बहुत स्वागत है आपका। ना आपका नाम जानना चाहेंगे?
2: मैं बोरखेड़ा से विजय सोरल बोल रहा हूँ।
1: विजय सोरल जी
0: मेरे गुरुजी हैं।
1: ओहो,
2: डॉक्टर ज्योति और
0: प्रणाम सर,
2: खुश रहो, आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी।
1: बहुत शुक्रिया साहब।
2: मैं सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा था, आजकल गर्मियों में करेले बहुत आ रहे हैं, और करेले खाने से पेट की भी बढ़ सकती है, जैसे मेरे फादर इन लॉ और वाइफ दोनों की बवासीर है
1: जी,
2: तो क्या उनको करेला देना चाहिए या नहीं?
0: बवासीर है सर, लेकिन करेला जो है एक हर चीज एक उपयुक्त मात्रा में सही रहती है। जैसे करेला अगर आप बना रहे हैं तो एक तो उसमें तेल का प्रयोग कम से कम करिए,
1: अक्सर लोग ज्यादा करते,
0: बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ऑयली बनते हैं करेले, तो उसमें तेल का प्रयोग कम से कम करिए, और दूसरा उसकी मात्रा कम रखिए। मान लीजिए जैसे आप लंच में ले रहे हैं, डिनर में मत लीजिए पहली बात तो, लंच में लीजिए, ताकि आप, अब अपन लोग लंच करने के बाद तो फिर भी एक्टिव रहते हैं पूरे दिन, तो उसका सेवन करिए, और बाकी उसकी मात्रा सर कम कर दीजिए। मान लीजिए 1-2 करेला अपन भोजन में ले लिया, वो ठीक है, उसके साथ में मूंग की दाल का प्रयोग करिए, तो वो और अच्छे से इजीली पचेगा
1: जी।
0: ये बस,
2: बहुत धन्यवाद
0: जी। जी प्रणाम सर।
1: जी तो ये तो इस तरह का सुंदर कार्यक्रम बन पड़ा कि गुरु शिष्य का मेल यहाँ हो गया है, और वाकई में चंबल चैनल के इस तरह से कार्यक्रम हमारे श्रोता ही सुन पाते हैं और उसे बना पाते हैं। नमस्कार। हाँ जी नमस्कार।
3: जी नमस्कार
1: जी, आपकी आवाज बहुत स्पष्ट हमें नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी अपना नाम बताइए और प्रश्न कीजिए। हाँ जी
3: हाँ जी, मुझे डॉक्टर ज्योति मैम से पूछना था कि महिलाओं के लिए खास क्या ध्यान रखना चाहिए ग्रीष्म काल में?
0: महिलाओं के लिए
1: आप नाम बताना पसंद करेंगी?
3: जी मेरा नाम है प्रेरणा उपाध्याय।
1: प्रेरणा उपाध्याय जी, जी
0: महिलाओं से रिलेटेड, मतलब मैं समझ नहीं पाई, कोई समस्या है या
3: मतलब स्पेसिफिक, जैसे गर्मियों में महिलाओं को खास उनके क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे उनके ज्यादा मतलब जलन, जैसे पैरों में जलन होती है, तलवों में?
0: हाँ, पैरों में जलन तो देखिए ये कोई जेंडर वाइज नहीं है, वो तो किसी को भी हो सकता है इन जनरल। हाँ ये है कि जैसे महिलाएं एक तो बहुत ज्यादा मल्टीटास्किंग होती है ना, आप किचन में भी काम कर रही हैं, आप सब जगह, तो उसके गर्मी के लिए एक तो मैं ये सबके लिए भी कहना चाहूंगी और महिलाओं के लिए भी कहना चाहूंगी, कॉटन के वस्त्र पहने, बिल्कुल वेल एयरेटेड होते हैं
1: जी,
0: टेरिकॉट हुआ, ये जो सिल्क मसलिन ये सब नहीं यूज,
1: प्रकृति के अनुरूप,
0: प्रकृति के अनुसार, सिर्फ भोजन ही नहीं मैं कहना चाहूंगी कि वस्त्रों का भी उपयोग सही से करिए, है ना, कॉटन के कपड़े पहनिए, कॉटन की साड़ी हो गया, सूट हो गया, जो भी आपको यूज करना हो उस तरीके का, वेल एयरेटेड हो। और दूसरा मैं कहना चाहूंगी हल्के भोजन का प्रयोग करिए, है ना, और पानी की मात्रा में मैं कहना चाहूंगी कि एक तो वेल हाइड्रेटेड रहिए पूरे ग्रीष्म काल में, आम ये जो पना बनता है केरी का पना उसका प्रयोग करिए। अगर हम लोग है ना जैसे जॉब के लिए निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, कोई भी, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आजकल सभी जॉब में है, ठीक है, घर से निकलते टाइम एक तो आपको नाश्ता प्रॉपर होना चाहिए आपका, और एक दूसरा आपका पानी, पानी की बॉटल साथ में होनी चाहिए, और पानी पी के ही निकले, बिल्कुल आपको वेल हाइड्रेटेड रहना है, क्योंकि 70% ऑफ द बॉडी इज वाटर
1: जी जी,
0: ठीक है, और प्रॉपर हाइजीन, हाइजीन का प्रयोग पूरा प्रॉपर होना चाहिए, भाई मेंस्ट्रुअल काल भी रहता है लेडीज को, तो उसमें भी प्रॉपर हाइजीन की वो रखें, क्योंकि गर्मियों में ज्यादा समस्या हो जाती है, कई बार रैशेज हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें हैं देखिए, तो मोटापे को भी कम रखें, और दूसरा जो क्लोथ्स हैं वो कॉटन के प्रयोग करें
1: जी। प्रेरणा जी।
3: यस मैम, मेरे को एक ये भी पूछना था कि जैसे अभी हम सुनने में आता है कि गोंद कतीरा और
0: सब्जियां ले सकती
3: है वगैरह ठंडक के लिए काम में लेने चाहिए, तो क्या वो कारगर होते हैं?
0: गोंद कतीरा आप ले सकती हैं, लेकिन उपयुक्त मात्रा में, ज्यादा प्रयोग नहीं लेना है उसका भी, ठंडी होती है नो डाउट, है ना, लेकिन सुबह भूखे पेट लीजिए,

0: एक चम्मच, एक डेढ़ चम्मच, इससे ज्यादा नहीं। खसखस भी है, खसखस भी प्रयोग कर सकते हैं। बादाम है, खसखस है, रात में गला के सुबह उसका दोनों का खसखस दूध में डाल पीस के अच्छे से, और उसको दूध में डाल के आप यूज कर सकती हैं। बादाम घिसके बहुत अच्छा है।
1: जी जी,
0: थोड़ा सफेद मिर्च डाल लीजिए।
2: अच्छा,
0: हाँ ठंडी होती है, बहुत अच्छी होती है।
2: ओके, धन्यवाद मैम।
0: जी नमस्कार
1: जी। डॉक्टर साहिबा, आप उस तरह की बातें बता रहे हैं कि घर से हम हमें हाँ, किस तरह से औषधि मिल पाए।
0: सब लोग नहीं आ पाते ना।
1: जी जी, वाकई वाकई। डॉक्टर साहिबा, एक व्यक्ति जो नियमित योग और प्राणायाम करते हैं, उनका एक बड़ा आश्चर्य वाला प्रश्न था कि लोग बीमार क्यों हो जाते हैं।
0: हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बीमार क्यों हो जाते हैं। नियमित प्राणायाम योगा करने से, ठीक है आपने करा, अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा जो आपकी और जो आप बाकी की जो लाइफस्टाइल है उस पर भी तो अपने को ध्यान देना होता है ना। जैसे हमारे आयुर्वेद पे कहा गया है, रोगा सर्वे अपि मंदे अग्नो सुतरा मुदराणी तु।
1: माने?
0: माने सारे जो रोग हैं मंद अग्नि से रिलेटेड हैं।
1: जी,
0: हमारे चरक ने, मतलब हमारे आचार्य चरक ने बहुत श्लोकों में जो जो बता दिया है ना, बहुत मतलब छोटी छोटे श्लोक छोटे होते हैं, उनमें गूढ़ रहस्य होते हैं सर।
1: जैसे कि आप बता रहे हैं कि ये छोटी छोटी बातें अगर हम करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि हमने बताया कि वो ये कह रहे थे कि वो स्वयं नहीं, लोग बीमार क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो बीमारी का कभी सामना नहीं किया।
0: आपने नहीं किया, अच्छी बात है, लेकिन आपने लोगों की लाइफस्टाइल भी तो नहीं देखी।
1: जी जी जी,
0: कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस प्रकार, किस समय उठ रहे हैं, किस समय भोजन कर रहे हैं,
1: जी
0: किस प्रकार का कर रहे हैं।
1: जी, तो अपनी दिनचर्या में इस छोटे से वक्त को जरूर शामिल करें।
0: बिल्कुल
1: जी, और आजीवन स्वस्थ,
0: बिल्कुल आजीवन स्वस्थ
1: जी। और कहा तो यही जाता है कि हमें शतायु का वरदान मिला।
0: बिल्कुल, ईश्वर करे सबको मिले।
1: वाकई, एक श्रोता जुड़े हैं हमसे। नमस्कार।
3: नमस्कार राजेश जी, नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार साहब, ये चहकती आवाज का नाम,
3: कैलाश चंद्र पारिक बोल रहा हूँ।
1: जी जी, बहुत बहुत
3: स्वागत। गर्व महसूस होता है जब दूसरे स्टेट्स के लोग हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुनते हैं। तो मैं सभी जितने भी आकाशवाणी के कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं तो आपके आकाशवाणी के कार्यक्रमों को सुन सुनकर
1: जी
3: खुद भी इतना ट्रेंड हो गया हूँ कि मेरी 70 साल की उम्र के अंदर भी मैं किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं हूँ और स्वस्थ जीवन जी रहा हूँ।
1: क्या बात
3: है। इसके लिए मैं आकाशवाणी कोटा को इसका मुख्य जिम्मेदार मानता हूँ और मेरा बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ।
1: बहुत शुक्रिया साहब,
3: आप अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: तो आपका आज कोई प्रश्न नहीं था?
3: प्रश्न हो ही नहीं सकता है, कार्यक्रम सुनता हूँ तो प्रश्न कहाँ से आएगा
1: जी। तो हो सकता,
3: स्वस्थ हूँ।
1: क्या बात,
3: इसके लिए धन्यवाद देने के लिए,
0: आपका आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद जी। तो डॉक्टर साहिबा, हो सकता है कि जो बात हमने अभी कही थी वो इन्हीं जैसे श्रोता की थी।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे सुधी श्रोता आकाशवाणी से जुड़े हैं और आप विशेषज्ञ के तौर पर चंबल चैनल पर आते हैं, इसलिए सभी का हम चंबल चैनल से बधाई संदेश देते हैं। नमस्कार
4: सर जी। नमस्कार।
1: नमस्कार, कौन साहब?
4: सर जी, मैं शिवा लोहट MP विदिशा से बात कर रहा हूँ सर।
1: नाम क्या बताया?
4: शिवा लोहट सर।
1: शिवा लोहट जी, अपना प्रश्न कीजिए।
4: सर जी, मेरा ये सवाल था कि मेरा जो है कि अधिकतर गला लगा हुआ रहता है और थोड़ी सांस लेने में दिक्कत होती है सर।
1: लगा हुआ यानी बैठा हुआ,
0: कफ का बड़ा
1: कफ वाला? जी जी,
0: जाम है।
1: हाँ, ओह जी। डॉक्टर साहब
0: जी, आप, मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका क्या प्रोफेशन है, क्या जॉब है?
4: मैं एक्चुअली ब्लाइंड हूँ।
0: कोई बात नहीं
4: जी।
0: तो
1: कुछ काम करते हैं या
0: भी कुछ काम, जैसे फिजिकल एक्टिविटी में कुछ करते हैं आप?
4: नहीं नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ भी काम नहीं, घर पे ही रहते हैं मैम।
1: जी जी जी,
0: कोई बात नहीं, आप घर पे रहते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी जैसे बताया था कि आपका कफ ज्यादा बड़ा हुआ रहता है बेटा बॉडी में, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि घर में ही अपनी माता जी को बोलिए कि एक देख तो पिपली लेके आ जाए मम्मी, मरीच लेके आ जाए, और मैम जो काली मिर्च होती है सब घर में वैसे ऑलमोस्ट प्रेजेंट ही रहती है, मुलैठी ले आए
1: जी,
0: मुलैठी पाउडर ले आए। एक तो मुलैठी पाउडर का सेवन आप रोज रेगुलर करिए, और कफ के लिए आप सितोपलादी चूर्ण आता है उसका सेवन करिए
1: जी,
0: है ना। शहद में चाटिए, एक 5-5 ग्राम सुबह शाम
4: जी,
0: और सेंधा नमक और हल्दी और मुलैठी मिला के उसके गरारे करिए, बहुत सही रहेगा।
1: ठीक है। वैसे शिवा जी, आप इस कार्यक्रम को शुरू से सुन रहे हैं?
4: जी सर, मैं शुरू से सुन रहा था वो।

0: पर कॉल लगाने में व्यस्त हो गया था तो थोड़ा सा टॉपिक सुन नहीं पाया।
1: अच्छा, थोड़ा सा मिस हो गया, लेकिन आपकी जानकारी की सभी बातें आपको लाभ पहुंचाएंगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। तो निरंतर सुनते रहिए कार्यक्रम और अपने परिवार जन को भी सुनवाइए, ठीक है?
0: शुक्रिया,
1: बहुत धन्यवाद,
0: बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा,
2: धन्यवाद धन्यवाद
1: जी। जी डॉक्टर साहिबा, आपको दूर दराज के लोग चंबल चैनल पर सुन रहे हैं, ऐसे में हम कुछ ग्रामीण बहनों का भी आपकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, आप उनके लिए इस मौसम में क्या जानकारी देना चाहेंगे?
2: ग्रामीण बहनों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि वो तो इतने अच्छे परिवेश में रह रही हैं कि ग्राम ग्राम जो हमारे पूरे पूरे देश के जो भी ग्राम हैं, सारे गांव, इतनी बढ़िया प्राकृतिक, एक तो हवा मिल रही है, प्राकृतिक भोजन आपका है ही, है ना, और आपकी जो दिनचर्या है वो भी सुधरी हुई रहती है
1: जी।
2: क्योंकि आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती हैं, वहाँ की मतलब ग्रामीण जो महिलाएं हैं वो उनका तो लाइफस्टाइल बहुत ही अच्छा होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो बिजली का इस्तेमाल रात के उजाले के लिए नहीं करती,
2: नहीं,
1: उस समय सो जाते हैं।
2: मेरे जो घर में, मेरे खुद की, मैं अपना पर्सनली बताऊं, मेरी दादी हैं, चाची हैं, वो गांव में ही रहती हैं, तो हम लोग वहां जब जाते हैं तो वो मतलब तारों जैसे रात में उनका 6 बजे भोजन हो जाता है, 8 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं।
1: बहुत सुंदर,
2: मतलब मैं लिटरली बताना चाहूंगी कि सुबह 4 बजे उठने के बाद आप अगर आप उठेंगे ना, आपको खुद प्राकृतिक रूप से इतना अच्छा फ्रेश फील होगा कि मतलब वैसे ही बीमारियां आपसे दूर भागेंगी।
1: अक्सर लोग जैसे माँ की गोद से दूर निकल के चले जाते हैं तो वो परेशानी का सामना करते हैं। प्रकृति हमारी माँ,
2: प्रकृति हमारी माँ है, सही बात है, लेकिन वो भी अब देखिए काम के लिए बाहर तो जाना पड़ेगा, गाँव छोड़ने ही पड़ेंगे, कईयों को छोड़ने पड़ते हैं, कईयों को नहीं भी छोड़ने पड़ते हैं, तो जो नहीं छोड़ पा रहे उनका तो बहुत बढ़िया चीज है, वो वहां पर ना प्राकृतिक गाय भैंसे हैं, वहां पर दूध, प्योर दूध मिल रहा है आपको, जैसे सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, वो लोग जानते हैं कि किस मौसम में क्या सब्जी खानी है। अभी जैसे तोरी आ रही है, लौकी आ रही है, आप ये ना खा के अभी भी आप है ना गोभी की तरफ अगर डाइवर्ट हो रहे हैं, फूल गोभी का अभी सीजन ही नहीं है
1: जी,
2: फिर भी अगर आप खा रहे हैं, पत्ता गोभी का सीजन नहीं है फिर भी अगर आप खा रहे हैं, तो फिर ये तो लिटरली बहुत
1: वाकई जीभ का काम है कि जो हमें स्वाद देती है, यानी कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ विषैला हमारे मुंह में चला जाए, लेकिन इसका ये तो अर्थ नहीं कि हम वो चाहें जो हमें पिछले मौसम के लिए याद था,
2: वही तो
1: ये गलत है जी। डॉक्टर साहब, एक श्रोता हमसे जुड़े हैं, नमस्कार।
3: नमस्ते
1: जी, आपने बहुत धैर्य रखा, उसके लिए धन्यवाद, नाम बताएंगे अपना?
3: मैं ये जानना चाह रही थी।
1: हाँ जी,
3: मैं पानी ले रही हूँ डेली रूटीन में, और एक्सरसाइज भी करती हूँ, मतलब हेल्दी बनती है घंटा, तो फिर भी मुझे मतलब पेट में कॉन्स्टिपेशन, कभी गैस, कभी मतलब पेट में दर्द, कभी पेट होने लगा, तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है।
1: जी जी जी,
2: इसके लिए आप मैम मैं ये कहना चाहूंगी,
1: नाम
2: तो,
1: बता सकेंगे?
2: हाँ, नाम
3: प्रीति बोली सर,
1: प्रीति जी, प्रीति जी जी
2: जी। प्रीति जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो आप सबसे पहले एक सोनोग्राफी पेट की कराइए, है ना, अगर रेगुलर आपके पेट में दर्द रहता है,
3: पर कभी कभी जैसे अभी गर्मियों में कल तो ऐसा दर्द हुआ बहुत तेज की,
2: तो फिर अजवाइन का प्रयोग करिए आप।
3: हाँ, अजवाइन छाछ ले रही हूँ, फिर भी ऐसा है कि ये ऐसा लग रहा है इफेक्टिव ही नहीं है, छाछ वगैरह कुछ काम ही नहीं कर रही है।
2: तो अगर ये नहीं काम कर रही है फिर तो एक सोनोग्राफी की आपको सख्त जरूरत है, हो सकता है आपको जैसे फैटी लिवर की समस्या ज्यादा हो गई है ना?
3: मैं तो स्लिम ट्रिम हो गया,
2: नहीं, स्लिम ट्रिम का फैटी लिवर से कोई रिलेशन नहीं है, पतले लोगों को भी फैटी लिवर हो सकता है मैम, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो सकता है, लिपिड प्रोफाइल कराइए आप, जांच कराइए, LFT और लिपिड प्रोफाइल की जांच कराइए,
1: लिख लीजिए आप।
2: हाँ, ये आप भले लिख सकती हैं, LFT, लिपिड प्रोफाइल और सोनोग्राफी नॉर्मल एक होती है उसको कराइए, और इसके अलावा पाचन संबंधी में मैं ये कहना चाहूंगी कि रात में आप त्रिफला का प्रयोग करिए, त्रिफला चूर्ण बहुत अच्छा होता है, या
3: त्रिफला या कभी कुछ ले लिया,
2: तो अगर आपको त्रिफला और इसबगोल काम नहीं कर रहा है तो इट मींस यू हैव सम बिग काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो अगर आपको सोनोग्राफी फिर तो करानी भी चाहिए मैम, है ना, इसके साथ में रेगुलर जांच, जैसे विटामिन B12 की कमी से भी कई बार कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो वो करिए,
3: थोड़ा हो जाती है बार बार डेफिशिएंसी हो जाती है, तो मैं इसकी टैबलेट ले लेती हूँ जैसे डॉक्टर एडवाइस करता है फिर।
2: मैं यही कहना आपसे यही निवेदन कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, जब उनका ये कॉन्स्टिपेशन हम इस नॉर्मल दवाइयों से नहीं सही कर पाते हैं, तो फिर हम इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं, इन्वेस्टिगेशन में यही निकल के आता है विटामिन B12 लो होता है, और जनरली आजकल शाकाहारी जितने भी हम लोग मोस्टली शाकाहारी रहते हैं विटामिन B12 कम आता है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगी आप स्प्राउट्स का यूज करिए, अंकुरित धान्य का यूज करिए, और इसके साथ में अब गर्मी आ गई है, फर्मेंटेड चीजें बहुत अच्छी, खमीर उठी हुई चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे आप इडली, डोसा, उत्तपम, उसका सेवन करिए
1: जी। जी, क्या बात है,
2: दही चावल का यूज करिए, दही इट्सेल्फ एक बहुत अच्छी औषधि है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है उसमें, यूजफुल बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए बहुत अच्छा है, पाचन में भी बहुत अच्छा करता है, और बॉडी भी सही से आएगी
1: जी, जी, जी।
2: ये करिए,
3: चावल को अपन इंस्टेंट मतलब गरम बना के,
2: गरम गरम नहीं, चावल

0: चावल जैसे बन गया,
1: हाँ
0: दही होता ही है नॉर्मल, बस दही और चावल मिक्स करके खा सकते हैं आप, थोड़ा सा, ये नहीं बहुत कटोरा भर के, थोड़ा थोड़ा, और बाकी आप विटामिन B12 की आयुर्वेदिक दवाइयां आती हैं वो लीजिए
2: जी।
0: मोरिंगा, मोरिंगा यूज करिए, मोरिंगा यूज करिए आप, सहजन
1: को अपन, मैं भी जैसे गर्मी है तो ज्यादा गर्मी नहीं करेगा,
0: सहजन थोड़ा बहुत मैम सब यूज कर सकती हैं आप,
1: एक दो
0: सांभर, जैसे मैंने अभी इडली बोला तो इडली में सांभर भी तो यूज करेंगी, सांभर में आप मोरिंगा डालिए
2: जी,
0: बाकी जांच कराइए।
2: बहुत शुक्रिया आपका, और अपनी जांचें करवाइए और आप स्वस्थ हो जाइए, यही शुभकामना चंबल चैनल से आपके लिए। डॉक्टर साहिबा, वात पित्त कफ, ये तीन एक बेसिक आधार हैं, आधार हैं त्रिदोष का, तो इसके आधार पर इसको कैसे हम सामान्य रख सकते हैं, क्या आम व्यक्ति भी इस बात को समझ सकते हैं?
0: आम व्यक्ति बिल्कुल समझ सकते हैं। देखिए, वात दोष, जैसे कि हम लोग कहते हैं, वात का मतलब ये है कि एक तो हम लोग पूरे हमारे आयुर्वेद में हमें त्रिदोष समावस्था, मतलब अगर आपको कोई कोई भी डिजीज बीमारी नहीं है, मतलब त्रिदोष जो है आपके तीन प्रकार के जो दोष हैं वो समावस्था में चल रहे हैं, है ना। कई बार क्या होता है, जैसे लेट नाइट अपन सोए, लेट नाइट फिर ना बहुत दिन भर सो रहे हैं, और आधा दिन में फिर फ्रेशनेस भी फील नहीं होती कई लोगों को, तो ये वात का प्रकोप हो गया उसको, हेडेक हो रहा है, सर में दुख, मैडम, कई बच्चे आते हैं जैसे वो लेट नाइट ही पढ़ते हैं
2: जी, जी।
0: उनको पढ़ाई में लगता है कईयों को कि भाई यहाँ शांति मिल रही है, मैं तो लेट नाइट ही पढ़ूंगा, फिर वो आगे हमारे यहाँ पे आके समस्या लेके आएंगे, पास में कोचिंग के बच्चे कई लोग आ जाते हैं, मैम मैं ना आईज में बहुत पेन हो रहा है, सर मेरा हमेशा दर्द ही बना रहता है, कई बच्चियां आती हैं ये प्रॉब्लम्स लेके, तो हम लोग उनसे रूटीन ही पूछते हैं कि बेटा आपका रूटीन बताइए पहले, जब आपकी जैसे मान लीजिए इवनिंग की भी शिफ्ट है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोलता है कि आप इवनिंग में आके, एक तो लॉन्ग सिटिंग 6 घंटे बैठ के आए आप, उसके बाद में आपने भोजन किया फिर आप पढ़ने लग गए, इससे ये एक बीमारी करने वाला प्रॉब्लम ये रहता है,
2: अपने शरीर नामक इस यंत्र को सुचारू रखना,
0: ये रथ है, इस रथ को संभालने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं सर, ऐसे नहीं होता ये, सिर्फ पैसा पैसा पैसा या सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, ऐसे नहीं होगा, हमको समय अपनी बॉडी के लिए सर देना ही पड़ेगा।
2: बिल्कुल, चलते चलते एक अंतिम हम फोन ले लेते हैं। नमस्कार।
3: हाँ नमस्कार राजेश जी, मैं फर्स्ट कॉलर लास्ट कॉलर नहीं था।
2: क्या बात है साहब, क्या बात है महेश जी।
3: मेरा प्रश्न ये एक अधूरा रह गया था डॉक्टर साहब से, कि इन दिनों में सब बिल का जूस है ना, और छात्रावली का सेवन मतलब नॉर्मल आदमी को करना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं कार्डियक पेशेंट हूँ स्पेशली, मतलब
0: कार्डियक पेशेंट है आप, अभी क्या मेडिसिन चल रही है आपकी?
3: मतलब मेडिकल में लिपिड की मैनेजमेंट की पूरी चलती है, स्टेटिन वगैरह सब चलती है ना, 2007 से कंटिन्यूस है मेरी मेडिकेशन, मेरा मतलब बाईपास भी और एंजियोप्लास्टी दोनों होते
0: हैं। फिर तो आप अपना जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, लिपिड्स है, उस पर ध्यान रखिए, एक तो
3: नॉर्मल है मैम।
0: हाँ नॉर्मल है, तो फिर छाछ राबड़ी आप एक उपयुक्त मात्रा में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपन को जैसे पूरा पूरा लंच ही उसका कर लेना है,
3: नहीं, नहीं, नहीं।
0: है ना, ऐसा नहीं, एक एक कटोरी एक एक ग्लास तक सीमित रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल का जूस तो फायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा आपको।
3: बिल्कुल
2: ठीक है जी,
3: थोड़ा पूछ लूंगा।
2: हाँ जी, बहुत अच्छा किया, बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि बिल्व का जूस पेट के लिए भी ठीक रहता है,
0: बहुत अच्छा रहता है सर,
2: ग्रीष्म भी वो नियंत्रित रखता है,
0: ठंडक
2: जी
0: बहुत बढ़िया रखेगा। और दूसरी बात है, जैसे प्रवाहिका नामक जो बीमारी होती है ना, जो बार बार पॉटी आना, बार बार जैसे मैडम ना भोजन करते ही मेरे को प्रेशर बन जाता है, पतली पॉटी आ रही है, पॉटी भी एक रेगुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आनी चाहिए, है ना, नहीं आ रही है, पतली आ रही है, बार बार आ रही है, सेमी सॉलिड आ रही है, इसमें हम लोग बोलते हैं कि डिसेंट्री हो जाता है कई बार, कई बार जो कई पेशेंट्स आते हैं जो सोचते रहते हैं, टेंस्ड रहते हैं, मेंटल टेंशन रहती है, साइकोसोमैटिक डिजीजेस जिसे बोलते हैं काइंड ऑफ, तो उसमें भी क्या क्या करना होता है कि ये बिल्व का प्रयोग बहुत अच्छा फायदेमंद।
2: क्या बात है, और इसका उपयोग हम सामान्यतया किस तरह से कर सकते हैं?
0: सामान्यतया एक तो बिल्व का जूस आप ले लीजिए, नहीं तो बिल्वादी चूर्ण आता है उसका प्रयोग हम लोग बताते हैं
2: जी,
0: आप हमें कंसल्ट करिए
2: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, अब चलने का समय हो गया है, क्योंकि समय के अंदर ही हमें सारे काम करने होते हैं, जीवन भी एक समय का ही नाम है। डॉक्टर साहिबा, हमारे श्रोताओं को अपनी जहां आप बैठते हैं, जिस औषधि औषधालय में, उसका पता और समय आपका बता दीजिए
0: जी। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर ज्योति शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन विभाग, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज कोटा में हूँ। मैं ये कॉमर्स कॉलेज लाइन के पास जो वैद्य दाऊदयाल जोशी आयुर्वेदिक अस्पताल है उसके पीछे ही आयुर्वेदिक गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज कोटा है, वहां पर बैठती हूँ
2: जी। तो डॉक्टर साहिबा, आज के इस कार्यक्रम में जो आपने बहुत काम की जानकारियां श्रोताओं को बताई है, आयुर्वेद के अनुसार हम अपनी जीवन शैली को कैसे रखें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकेंगे, और कई बार यही होता है कि हम अपने स्वाद की वजह से अपने आप को बीमार कर लेते हैं, आजकल जो मौसम जरा गर्मी दे रहा है, ऐसे में अतिरिक्त रूप से हम एसी कूलर की हवा में बैठते हैं, सुबह हम उसका परिणाम देख पाते हैं, इसलिए धैर्यता, अधीरता,

0: दोनों में जो तालमेल है उसके बारे में आपने जो बहुत काम की बातें बताई, और खास तौर पर जो आपने बात कही कि प्रकृति के अनुरूप हम चलें और भोजन पर भी विशेष ध्यान रखें, अल्प मात्रा में भोजन लें, ये कुछ आपकी वो बातें जो रेखांकित की जा सकती हैं। डॉक्टर साहिबा, आकाशवाणी के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में और ज्यादा इसको महत्व देने के लिए और इसको महत्वपूर्ण और ज्यादा बनाने के लिए हम आपका बहुत आभार व्यक्त करते हैं। श्रोताओं से आपके जुड़ने का बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोता, ये था आज का सजीव फोन इन प्रोग्राम आपकी सेहत। चाहेंगे कि इसी अनुसार अपने जीवन को आप संवारते रहें। अब चलते हैं और चलते चलते ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग एनके मीणा और सुरेंद्र सिंह तंवर का था, संयोजन तेजरा मीणा का। अब राजेश महावर भी चाहता है अनुमति। नमस्कार। चंबल चैनल का ये कार्यक्रम श्रोताओं आप सुन रहे थे। अब चलते हैं जयपुर केंद्र प्रादेशिक समाचारों के लिए।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सदस्य सचिव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों, न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों सहित कई स्तरों पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रदेश में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जयपुर पीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा ने किया। प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम शर्मा अत्री ने बताया कि लोक अदालत के लिए 479 बेंच का गठन किया गया है। इनमें 7,77,000 से अधिक मामलों को सूचीबद्ध किया गया है। लोक अदालत में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से मामलों का निस्तारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। कल जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नई सैन्य रणनीति के साथ भारत के सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित किया। रक्षा मंत्री ने भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच कमांडरों से भविष्य के लिए तत्पर रहने का आह्वान किया। उन्होंने एआई, स्वायत्त प्रणालियों, डेटा एनालिटिक्स और सुरक्षित संचार नेटवर्क को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। दो दिन की इस कॉन्फ्रेंस में नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता पर मंथन किया गया। वहीं नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं है। टीएमआर जैसे संस्थानों का

0: तारीफ केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि भारत वैश्विक सांस्कृतिक विमर्श में नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। श्री शेखावत कल जोधपुर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इटली के वेनिस में आयोजित ला बिएनेल में भारतीय कलाकारों की भागीदारी सराहनीय है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित और पुरानी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रदर्शनियों में से एक है। इसमें भारतीय कलाकारों की भागीदारी लोकल से ग्लोबल बनने की दिशा में अहम है।
2: भारत के पवेलियन और भारत के कलाकारों की कला ने पूरे विश्व भर के कला साधकों का, कला प्रेमियों का ध्यान आकृष्ट किया। न केवल ध्यान आकृष्ट किया, अभी तो भारत का पवेलियन वहाँ आज पूरी इटली में और देश भर के आर्ट लवर सीरीज में चर्चा का केंद्र बने। भारत की सहभागिता के चलते हुए भारत के आर्ट लवर्स, उनकी गहराई, उनके काम की क्षमता, दक्षता, प्रवीणता, इस सब के प्रति विश्व भर के आर्ट लवर्स का ध्यान आकृष्ट होगा।
1: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज और कल दो दिन दो दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए दो स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। ग्राम 2026 के तहत कल हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। ये समझौते राज्य में विभिन्न स्थानों पर फूड पार्क, सीड प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग के विकास के लिए किए गए इस बिजनेस मीट में निवेशकों, उद्योग जगत और एग्री टैंक विशेषज्ञों के साथ संवाद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीट को संबोधित करते हुए कहा कि हैदराबाद का लैब टू लैंड मॉडल राजस्थान के लिए प्रेरणादायी है और राज्य सरकार इसे अधिक मजबूती के साथ लागू करना चाहती है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा में गेहूं खरीद के लिए 25% अधिक टोकन जारी करने और मंडियों में पड़े गेहूं के उठाव के लिए पर्याप्त संख्या में रैक लगाने के निर्देश दिए। श्री बिरला कल कोटा बूंदी क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एफसीआई सहित सभी खरीद एजेंसियां गेहूं लेकर खरीद केंद्र में आए किसानों की तुलाई का काम सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि खरीद का वर्तमान लक्ष्य पूरा होने के बाद भी अतिरिक्त गेहूं खरीद के लिए बारदाना और भंडारण की उचित व्यवस्था रखी जाए। उन्होंने सभी खरीद एजेंसियों को किसानों को समय पर भुगतान करने के भी निर्देश दिए। बैठक में भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ और एनसीसीएफ के प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोटा मेडिकल कॉलेज में सिजेरियन डिलीवरी के बाद दो प्रसूताओं की मौत और अन्य महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ी कार्रवाई की है। कल चिकित्सा आयुक्त बीएल गोयल के दौरे और प्रारंभिक जांच के बाद लापरवाही बरतने के आरोप में देर रात एक चिकित्सक सहित तीन कर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यूटीबी में कार्यरत महिला चिकित्सक डॉक्टर श्रद्धा उपाध्याय को सेवा से हटा दिया गया है, जबकि एक अन्य चिकित्सक सहित दो नर्सिंग कर्मियों को निलंबित किया गया है। वहीं वार्ड प्रभारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने अस्पताल का दौरा कर दवाओं और ऑपरेशन प्रक्रिया के रिकॉर्ड की जांच की है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। कोटपूतली बहरोड जिले के विराटनगर में करीब 100 से अधिक लोग फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। उपखंड अधिकारी कपिल कुमार उपाध्याय ने बताया कि ढाणी गैसकांड में एक शादी समारोह में भाग लेने के बाद बड़ी संख्या में लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत होने पर उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि अधिकतर मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाइयों और खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे हैं।
3: डानी गैसक्रान गांव से यहाँ पर एक फूड पॉइजनिंग की सूचना मिली। लगभग 45 ग्रामीण और 34 बच्चे यहाँ वोमिटिंग की और पेट दर्द की शिकायत

0: के साथ यहां आए थे। इनमें से अभी 3 बच्चे अपने एडमिट है, बाकी स्वस्थ होकर लौट रहे हैं और बाकी ग्रामीण जिलों का इलाज चल रहा है। ऐसे ही लगभग 14 बच्चे और 16 ग्रामीण के सापुरा भी दिखाने गए थे वहां पर, उनके इस शिकायत के आधार पर सीबीओ साहब को मैंने वहां भेजा था। अभी 3 बच्चे वहां हैं, बच्चे स्वस्थ हैं और सबका इलाज करवाया जा रहा है।
1: राज्य के अधिकतर स्थानों पर कल दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में अधिकतम तापमान में करीब 6 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आई। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में प्रचंड गर्मी का असर बना हुआ है। फलौदी, बाड़मेर और जैसलमेर में पारा 44 डिग्री सेल्सियस के पार मापा गया। वहीं 17 शहरों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। प्रदेश में अगले 2-3 दिनों में तापमान में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 11 मई से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। इसके असर से कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में इस साल की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आज। प्रदेश में 479 बेंच 7.5 लाख से अधिक मामलों का निपटारा करेंगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भविष्य के युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि नई सोच और बेहतर तालमेल से जीते जाएंगे। ग्राम 2026 के तहत हैदराबाद में हुई इन्वेस्टर मीट में 200 करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू किए गए। और प्रदेश में सोमवार से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार। कई हिस्सों में आंधी बारिश का दौर फिर से शुरू होने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ट्यूनिंग है आप FM 102, FM 103.6 MHz, मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज पर, साथ ही न्यूज ऑन AIR और ऑल इंडिया रेडियो लाइव मोबाइल ऐप पर भी। श्रोताओं, जानकारी दें, बहनें सुनेंगे अपना कार्यक्रम 9:30 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी होगा शाम 5 बजे से और ग्रामीण श्रोता सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे से। रात 9 बजे हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम होगा, जिसे आप गुरुवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक रिकॉर्ड करवाते हैं। सुनिएगा जरूर ये सभी कार्यक्रम चंबल चैनल पर। और अब श्रोताओं, लेकर उपस्थित हैं फिल्म संगीत और ये है कार्यक्रम का पहला गीत। फिल्म का नाम जन्नत, आवाज के की।

जन्नत फिल्म से केकी का ये स्वर श्रोतावा आपने सुना। फिल्म संगीत चंबल चैनल से आप सुन रहे हैं। श्रोतावा आपको जानकारी दें, नमस्कार कोटा कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 12 मई को सुबह 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारे अतिथि विशेषज्ञ अभिलाषा जैनवीर के साथ भेंटवार्ता, नर्सिंग एक सेवा कार्य। अवश्य सुनेगा श्रोताओं, चंबल चैनल की सूचनाओं पर आधारित यह कार्यक्रम नमस्कार कोटा 12 मई की ये जानकारी हमने आपको दी।

लाखों तक पहुंचाएं अपनी बात, अपना विज्ञापन बुक कराएं आकाशवाणी से आज। चंबल चैनल का फोन नंबर 0744-232-2442, ईमेल aircota@gmail.com। आकाशवाणी को बनाएं अपना ब्रांड एम्बेसडर। आकाशवाणी, जनवाणी, लाभवाणी।

ये आवाज अतीफ असलम की। किस्मत कनेक्शन फिल्म के लिए इनका साथ अलका याग्निक ने इस गीत में दिया, जिसे सईद कादरी ने लिखा और संगीत प्रीतम का।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजें इस गीत के लिए फिल्म कभी खुशी कभी गम से। समीर का ये गीत, संदेश शांडिल्य का ये संगीत।

श्रोताओ, फिल्म संगीत अब आप सुनेंगे हमारी शाम की प्रसारण सभा में 6:05 से। चंबल चैनल का ये प्रसारण है। बहिनें अब सुनेंगी अपना कार्यक्रम महिला जगत।

सखियों, माँ की गोद में जो सुकून मिलता है वह दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता। माँ के हाथों की रोटी में जो स्वाद होता है वो एक अनदेखी ताकत होती है जो हर निवाले के साथ बच्चे की रग रग में बसती है। अब ये ताकत हमारे आज के बच्चों में है या नहीं, ये पता करने की आवश्यकता है। सखियों, आज हमारी चर्चा का विषय है कि बच्चे क्या खा रहे हैं और जो वो खा रहे हैं क्या आपने उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू चेक की। इन्हीं विचारों और प्रश्नों के साथ मैं हूं आपकी अपनी सखी तेज मोहन। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत आप सभी का आप ही के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। सखियों, आज रुककर सोचेंगे कि बच्चों की नींव मजबूत है या नहीं। सोचिए कि हमारे बच्चे जो खा रहे हैं क्या वो उनका शरीर बना रहा है या बिगाड़ रहा है। याद रखिए, कई बार हमारा प्यार उन्हें गलत खानपान की ओर ले जाता है जो कि उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। बच्चों को माता या पिता जो भी या दादा दादी जो भी स्कूल छोड़ने जाते हैं, बच्चे ने थोड़ी सी जिद की और उसे वो सामान लेकर दिया जाता है जो उन्हें पोषण बिल्कुल भी नहीं देता। अगर हमारी सखियां बच्चों के टिफिन में रोटी सब्जी पराठा दाल चावल इन सब के अलावा कुछ अलग दे रही हैं, जैसे नूडल्स डिब्बा बंद खाना या पैक्ड फूड, तो अब आपको सोचने की आवश्यकता है। आपको मालूम हो सखियों, तो कुछ विद्यालय जो हैं वो इस और भी हैं कि उन्होंने एक टिफिन डे बना दिया है ताकि बच्चों को पोषण की सभी आवश्यकता अनुसार चीजें मिले। अब एक माँ होने के नाते सखियों, आप अपने बच्चे को सिर्फ खाना नहीं पोषण परोसती हैं, उसका भविष्य उसे परोसती हैं। इसलिए बच्चों की पसंद में जंक फूड को बिल्कुल भी स्थान नहीं देना है, क्योंकि ये जंक फूड बच्चों को धीरे धीरे अंदर से कमजोर करता है। इसलिए पैक्ड फूड अगर आप खरीदती हैं तो सजग होकर जांचें कि उसके ऊपर शुगर और सोडियम की मात्रा कितनी है। अगर ज्यादा है तो समझ लीजिए कि ये उसके लिए लाल झंडा है। अब सवाल ये कि बच्चों की थाली में उन्हें देना क्या है, तो आप उसे दीजिए प्रोटीन, दाल पनीर अंडे किसी में भी, सब में मिलता है। ये मांसपेशियों को मजबूत करता है सखियों। कैल्शियम देना है आपको उसे, दूध और दही में आराम से मिल जाता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। आयरन पालक और गुड़ से मिल जाता है, खून बनता है, बच्चों को एनीमिया की बीमारी नहीं होगी। विटामिन्स ताजे फल जो भी होते हैं सभी में मिल जाते हैं और ये बीमारियों से लड़ने में उसकी मदद करेंगे। गुड फैट्स में आप अखरोट बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट्स दे सकती हैं, ये दिमाग को तेज करते हैं। सखियों, हम सबको मालूम है कि बच्चों को लौकी टिंडा तोरई खिलाना पहाड़ चढ़ने जैसा है, पर रास्ते हमें ही तलाशने हैं क्योंकि वो बच्चे हैं और हम माँ हैं। किसी को याद हो, अगर कोई श्रोता आपको अपने बचपन के दिन याद हो, तो भूख लगती थी तो माँ कैसे वो रोटी में घी लगा के और उस पर गुड़ रख के हमको देती थी रोल बना के, कितनी स्वाद लगती थी। और अभी सबको याद आ गया होगा, क्योंकि आपको याद हो श्रोताओं, तो उसमें से घी टपकता था, तो वो टपके नहीं, तो इसलिए हम दोनों तरफ से रोटी खाते थे। सही कह रही हूं या नहीं? और उस समय ना तो हमारी हड्डियां कमजोर थी, ना आंखों पे चश्मा लगता था, और माँ की उस रोटी में ना माँ का

विश्वास था और घर की शुद्धता थी। इसलिए अपनी जड़ों की तरफ लौटे, फिर से बच्चों को गुड़, रोटी, सत्तू, राबड़ी खिलाएं। श्रोताओं, क्योंकि आप अपने बचपन की यादें याद करने लगे हैं, तो एक चीज और याद होगी आपको कि जेब में हमारे पैसे और कैंडी नहीं होती थी, खट्टे मीठे बेर भरे रहते थे जिन्हें हम कूट कर और नमक मिर्च डालकर खाते थे। ना तो दांत खराब होते थे ना पेट खराब होता था, क्योंकि वो कुदरत के विटामिंस थे। और फिर वो कच्चे पक्के जामफल कैसे भूल जाएं, जिसकी खुशबू पूरे आंगन में और घर में ऐसे फैली रहती थी, आते जाते घूमते फिरते, और हम 5 मिनट नहीं लगाते थे कि वो चट कर जाते थे, और उसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता था। और आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, पैक्ड जूस पी रहे हैं और बाजरे की रोटी सख्यो। एक चीज याद रखिए श्रोताओं कि मोटा अनाज जो है ना, ये ताकत देता है। आप अपने पुराने बुजुर्गों को देख लीजिएगा कि बिना डंडे के सहारे वो कई मील तक चल लेते हैं, और आज हमारे बच्चों को इमली और नमक का स्वाद भी मालूम नहीं होगा। तो बच्चों को वो पुराना भारत लौटाना है। और मूली पर वो जो पुदीने की चटनी लगा के देते थे, सच में मुंह में बिल्कुल स्वाद ही आ गया। और हमारे श्रोताओं को अपने बचपन की बहुत सी यादें आई होंगी। आपको कौन सी ऐसी याद अभी मन में चल रही है, आप अपने संदेशों के माध्यम से हमें बताइए। और जो हमारी सखियां अभी अभी मां बनी है, बच्चों को अपना दूध जरूर पिलाएंगे, और जिनके बच्चे बड़े हैं वो घर का शुद्ध बना आहार खिलाएं। बच्चे हैं, नानुकर करते हैं, लेकिन हमें मां बनकर कहानियां सुनाते हुए उन्हें खाना खिलाना है। आज खुद से वादा करना है कि बच्चों को पेट भरने के लिए नहीं, पोषण देने के लिए खाना खिलाना है। और अब आपको सुनवाते हैं एक गीत जो कि आपको ये संदेश दे रहा है कि किस तरीके से हमें फास्ट फूड और पैक्ड फूड, इन सभी चीजों को ना कहना सीखना है।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: सखियों, रोग किसी प्रकार का भी हो,

0: सही जांच, सही समय पर इलाज और मानसिक रूप से मजबूत रहने पर रोग समाप्त होता है। तो सखियों, अब हम सुन लेते हैं डॉक्टर संतोष कुमारी शर्मा जी से हुई बातचीत। विषय है इलाज में जांचों का महत्व।
1: सखियों, वैसे तो हम सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान विशेष तौर पर रखते हैं, पर फिर भी कई बार मौसम बदलने के कारण या पोषण की कमी और गलत आदतों के कारण बीमार हो जाते हैं। ऐसे में इलाज की प्रक्रिया लंबी चलती है और परेशानी होना तय है। इलाज के दौरान कई प्रकार की जांचें भी हमें करवानी पड़ती हैं। ये जांचें क्यों करवाई जाती हैं, इनका हमारे इलाज में क्या महत्व है, इसके लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं जीव रसायन विशेषज्ञ डॉक्टर संतोष कुमारी शर्मा जी। संतोष जी, स्वागत है आपका आप ही के मनपसंद कार्यक्रम महिला जगत में। नमस्कार।
2: नमस्कार और धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
1: संतोष जी, एक आम महिला की बात करूं या एक मरीज की बात करूं तो उसके अनुसार जांच क्या है?
2: देखिए, जल्दी से जल्दी बीमारी ठीक हो ऐसा सभी चाहते हैं
1: जी।
2: और बीमारी तभी ठीक होगी जब सही इलाज होगा, और इसकी प्रथम सीढ़ी है जाँच करवाना
1: जी।
2: तो अगर हमारे सिम्टम्स कुछ इस तरह के आ रहे हैं जिसके लिए हमें चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता है, तो वो कुछ टेस्ट लिखते हैं, जांचें लिखते हैं, जिनके आधार पर आगे के उपचार की प्रक्रिया चालू होती है।
1: तो ऐसे कौन से संकेत शरीर हमारा देता है जिनकी पहचान हमें होनी चाहिए ताकि हम पहले से सजग हो जाएं?
2: देखिए, संकेत हमारा शरीर अवश्य देता है। अचानक से सर में दर्द रहना या भूख ना लगना, कम लगना या भूख अचानक से ज्यादा बढ़ जाना, हाथ पैरों का सुन्न होने लग जाना, पेट में यदा कदार दर्द रहना या बार बार तीव्रता से दर्द रहना, तो ये डिपेंड करता है कि कोई बीमारी आपके शरीर में घर कर रही है।
1: शरीर बार बार बता रहा है कि हमें कुछ प्रॉब्लम
2: हो रही
1: और
2: है।
1: कई बार ऐसा भी होता है संतोष जी कि अक्सर लोग बिना जांच के दवाई ले लेते हैं, क्योंकि डॉक्टर जब हम गए तो वो कुछ दवाई तो प्रिस्क्राइब करते हैं
2: जी,
1: लेकिन जांचें भी लिखते हैं
2: जी,
1: और बिना जांच कराए आप एक दिन में ठीक हो गए और फिर उसका आपने छोड़ दिया, तो उस समय में उनके लिए कितना सही होता है?
2: नहीं, देखिए, जांचें कराना अत्यंत आवश्यक होता है। आजकल एक बड़ा ही जनरल सा फिनोमेना आ गया है कि सभी गूगल बाबा की जय बोलते हैं, अपने सिम्टम्स के हिसाब से और चेक करते हैं कि क्या मुझे ये बीमारी तो नहीं हो गई, वो बीमारी तो नहीं हो गई, और उपचार भी स्वयं ही करने लग जाते हैं। जनरली किसी केमिस्ट की शॉप पे गए, एक टाइम की दवाई खरीदी और ले ली, तो उससे आपको तुरंत आराम तो आ जाता है, लेकिन ना आपने जांचें की, ना आपने उचित चिकित्सकीय परामर्श लिया, तो उसके हिसाब से ये धीरे धीरे जो सिम्टम्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं और आपकी बीमारी बढ़ती चली जाती है।
1: आपके जीवन में संतोष जी कोई ऐसी घटना हुई हो कि एक जांच ने सभी को जागरूक किया हो, मतलब किसी ने जांच करवाई और समय रहते उसकी बीमारी पकड़ में आ गई हो?
2: जी हाँ, मेरे हस्बैंड सर्जन हैं, तो कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं और कई बार ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक बहुत छोटा सा उदाहरण है, एक मरीज पाइल्स के इलाज के लिए आया था
1: जी।
2: तो डॉक्टर साहब ने नॉर्मल रूटीन की जांचें करवाई और अचानक से उन जांचों में डायग्नोस हुआ कि इन्हें ब्लड कैंसर है। तो ये सबके लिए बड़ा शॉक था, उस परिवार के लिए बहुत बड़ा ट्रोमा था, लेकिन टाइमली क्योंकि पता लग गया, चाहे कारण कोई भी हो, बीमारी उनको कोई और रही हो, लेकिन उनको इतनी बड़ी बीमारी का पता लगा, भयावहता का पता लगा और उन्होंने अपना इलाज तुरंत शुरू करवा दिया। तो इस तरह से कई बार होता है, पेशेंट किसी बीमारी के लिए आता है, किसी छोटे मोटे सिम्टम को लेके आता है और जांच से पता लगता है कि यहाँ तो कुछ और ही बीमारी है।
1: और यहाँ संतोष जी, आपकी जो बात है उसी से कहना चाहूंगी कि महिलाएं जो हमारी हैं, सखियां, सब दूसरों का ध्यान तो बहुत अच्छे से रख लेती हैं कि आपको डॉक्टर ने ये खाने के लिए कहा है, आपको समय पर ये लेना है, और जब खुद की सेहत की बारी आती है ना तो पूरी तरह से नजरअंदाज। तो ऐसी सखियों को आप क्या कहेंगी?
2: ऐसी सखियों को मैं सिर्फ एक बात ही कहना चाहूंगी कि हम महिलाएं परिवार की आधारशिला हैं। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का, अपने बच्चों का, अपने पति का और अन्य परिवारजनों का ध्यान नहीं रख पाएंगे। और अगर मन स्वस्थ नहीं होता है, मतलब स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं होते हैं हम लोग, तो मन भी प्रसन्न नहीं होता है और अप्रसन्न मन से हम सबका लालन पालन देखभाल भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें।
1: महिलाओं की ऐसी कौन सी जांचें हैं जो उन्हें करवानी चाहिए नियमित रूप से?
2: देखिए, महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो अपने खून की जांच

0: करवाएं, कई बार अनीमिया की शिकायत रहती है, विटामिन्स के लेवल चेक करवाएं, जैसे कि मोस्टली विटामिन B12 और विटामिन डी होता है। इसके अलावा थायराइड की जांचें करवाएं। और एक बहुत ही छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि अपने सिम्टम्स का ध्यान रखें, आपका शरीर आपको संकेत देता है तो उनको महसूस करें, नजरअंदाज नहीं करें।
1: और कैंसर की भी कुछ जांचें होती होंगी जो महिलाओं को पहले से ही करवाते रहना चाहिए, समय से अगर वो करवाती रहें तो सेफ रहें वो।
0: जी जी जी, कैंसर की भी जांचें होती हैं, जैसे कि एक्सरे से शुरू होता है, उसके बाद में सीटी स्कैन, MRI वगैरह है। मेडिकल कॉलेज लेवल पे ये सारी जांचें निःशुल्क हैं। ट्यूमर मार्कर्स होते हैं जिससे पता लग सकता है कि कौन से अंग का ट्यूमर है। इसके अलावा अभी पैट स्कैन भी आ रहा है हमारे हॉस्पिटल्स में, तो और ये सारी जांचें निःशुल्क होती हैं।
1: यहाँ हम सभी सखियों से ये भी कहना चाहेंगे कि आप जब अकेली हो तो अपने शरीर को पूरी तरह से जांचें कि उसमें कहीं कोई गांठ तो नहीं बन रही। ये तो अभी हम चिकित्सीय सलाह की बात कर रही हैं, लेकिन अगर आप समय पर अपने शरीर को देखती रहेंगी, परखती रहेंगी, तो आप जागरूक रहेंगी। उससे क्या होगा कि शुरुआती लक्षणों में ही आपको इलाज मिल जाएगा।
0: आपने बहुत अच्छी बात कही। जनरली क्या होता है कि स्तन कैंसर बहुत बड़ा खतरा होता है महिलाओं के लिए, और बहुत छोटी सी गांठ होती है शुरुआत में, लेकिन महिलाएं ध्यान नहीं देती हैं और फिर स्टेज बढ़ जाती है, बीमारी की भयावहता बढ़ जाती है और कई बार वो क्यूरेबल भी नहीं होती है। तो महिलाओं, अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या लगती है कि कुछ तो ये हमारे अब नॉर्मल है बॉडी में, तो एक बार जरूर से दिखाएं डॉक्टर को, चेक जरूर कराएं।
1: बच्चों में ऐसी कौन सी समस्याएं होती हैं जिनके लिए उनकी जांचें होती हैं और ये कौन कौन सी रहेंगी?
0: देखिए, बच्चों के हर उम्र की अलग अलग समस्याएं होती हैं। जैसे अभी गर्मियां चल रही हैं तो डायरिया, वोमिटिंग वगैरह बहुत कॉमन है, तो इसमें स्टूल टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड शुगर लेवल की जांच वगैरह होती है कि भाई एकदम से ग्लूकोज कम तो नहीं हो रहा, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कम तो नहीं हो रहा है, वो जांचें होती हैं। इसके अलावा बच्चों में टीबी भी होती है तो उसके लिए अलग जांचें होती हैं। एक बहुत कॉमन सी बीमारी है छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा होती है, निमोनिया, तो उसके लिए भी अलग जांचें होती हैं। तो इस तरह से बच्चों में भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है और हर एक बीमारी के लिए जांचें उपलब्ध रहती हैं।
1: संतोष जी, जैसा कि आप जीव रसायन विशेषज्ञ हैं तो आपके पास हर तरह के पेशेंट आते हैं। अभी जो हम वर्तमान समय की बात करें, हमारे बच्चों का जो भोजन का सिस्टम है वो पूरी तरह से बदल गया है। सभी वो फास्ट फूड की ओर चल रहे हैं। अपने जो बच्चों आते हैं जांच कराने के लिए, वो किस प्रकार के होते हैं, उनको किस प्रकार की जांचें लिखी जाती हैं?
0: बच्चों के लिए जो पोषण से रिगार्डिंग जो मैं जांचें कहना चाहूंगी वो यही होता है कि आप विटामिन की जांचें होती हैं, विटामिन B12 होता है, डी होता है। आजकल सनलाइट में भी बच्चों का एक्सपोजर कम होता है, इंडोर एक्टिविटीज ही ज्यादा करते हैं, बच्चे बाहर खेलने कम जाते हैं, मोबाइल की लत लगी हुई है, मोबाइल में टाइम स्पेंड कर देते हैं। जब तक आप धूप में नहीं जाएंगे विटामिन डी का लेवल कम रहेगा। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल जो है वो भी बच्चों में कई बार गड़बड़ आने लगे हैं, क्योंकि फास्ट फूड जो है वो शुगर का लेवल बढ़ाता है और लिपिड प्रोफाइल को भी गड़बड़ करता है, तो ये जांचें भी आवश्यक हैं।
1: ऐसे समय में जब एक बच्चा बीमार होता है तो माँ थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है, तो उस माँ को कैसे गाइड करते हैं?
0: बिल्कुल, माँ को गाइड करने के लिए देखिए, बहुत महिलाएं आजकल मुझे लगता है कि अकेलापन तो महसूस करती होंगी, क्योंकि मैं भी एक महिला हूं, तो एक समय ऐसा आता है जब आप सोचते हैं कि हम बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे गाइड करें, हम खुद को भी कैसे तसल्ली दें। ठीक है, तो बच्चों से क्या मित्रवत व्यवहार रखें, उन्हें समझाएं कि ये चीजें आपको नुकसान कर रही हैं, बार बार एग्रेशन ना दिखाएं, प्यार से समझाएं। इसके अलावा जो भोजन है घर का बना हुआ देने की कोशिश करें, जो भोजन बाहर फास्ट फूड के रूप में बन रहा है अगर उसको घर पे कुछ रूपांतरित करके देंगी तो बच्चों में आप पोषण तो बढ़ा पाएंगी। तो मेरा यही सजेशन है कि और इसके साथ कुछ एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हों, बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज हों, जैसे कि आप बच्चों के साथ योगा करें, व्यायाम करें, मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो, डांस क्लासेस ज्वाइन करें, कुछ भी करें जिससे आपस में ना थोड़ी जो एक बॉन्ड होता है वो और मजबूत हो और आपको भी खालीपन ना लगे।
1: बच्चे का एक भरोसा होता है
0: जी जी,
1: तो उसे बनाए रखें।
0: बिल्कुल
1: संतोष जी, ग्रामीण सखियां हमारी हैं ना, उनके अंदर जांचों को लेकर बहुत सारे डर भी होते हैं और भ्रम भी होते हैं
0: जी,
1: तो उन सखियों से आप क्या कहना चाहेंगी?
0: नहीं, डरना बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा है कई बार जो ग्रामीण पेशेंट आते हैं ना, जैसे जरा सा इंजेक्शन बाहर दिखा भी, निडल बाहर दिखी भी, और वो चिल्लाने लग जाते हैं डर की वजह से। बस एक छोटा सा प्रिक होता है, जैसे चींटी ने काटा और बस आपका ब्लड सैंपल थोड़ी देर में बाहर निकाल लेते हैं। तो भ्रांतियां नहीं पालनी है कोई भी, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने समय पे जांचें नहीं कराई तो बाद में स्थिति बहुत बिगड़ सकती है और ये आपके जीवन को भी हानि पहुंचा सकती है।
1: ग्रामीण सखियों

0: से निवेदन है कि वो बिल्कुल भी किसी प्रकार की भ्रांति ना पालें। एक छोटी सी जांच आपके जीवन को बचा भी सकती है और आपके परिवार को खुशहाल रख सकती है। अब बात करें एक बीमार व्यक्ति की,
1: जी,
0: तो संतोष जी उसमें सहनशीलता बिल्कुल नहीं होती,
1: जी,
0: और कुछ टेस्ट की रिपोर्ट ऐसी होती है जो 15 से 20 दिन के बाद आती है,
1: जी,
0: तो ऐसे में उन मरीजों को क्या करना चाहिए?
1: उन मरीजों के साथ उनके परिजनों को या उनके जो तीमारदार हैं उनका भी सहयोग हमें अपेक्षित होता है कि वो साथ में उनके साथ मित्रवत व्यवहार रखें,
0: जी,
1: क्योंकि मरीज तो दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, लेकिन अगर हम भी उसके साथ प्यार से नहीं बिहेव करेंगे, प्यार से नहीं बात करेंगे, तो फिर वो और चिड़चिड़ा होगा। अच्छा, जांचों की रही बात, तो कुछ जांचों का प्रोसेस ऐसा ही होता है कि वो टाइम लेती हैं आने में, तो इस अंतराल में जो चिकित्सक ने परामर्श दिया है, जो कुछ मेडिसिंस दी हैं, उनको टाइम से लें और मरीज के साथ मित्रवत व्यवहार करें, थोड़ा ध्यान रखें उनका।
0: तो ऐसी कौन सी जांचें हैं जिन्हें आने में समय लगता है?
1: देखिए, ये डिपेंड करता है कि कुछ जांचें जो हमारे जैसे सेंटर पे उपलब्ध नहीं होती हैं, तो उनको बाहर भी भेजा जाता है। कुछ जांचें हैं हार्मोन्स वगैरह की, उनमें थोड़ा सा टाइम लगता है,
0: जी,
1: तो इस तरह से।
0: कैंसर और ल्यूपस जो बीमारियां हैं, ये दोनों ही गंभीर बीमारियां हैं, इन दोनों बीमारियों में जांचों का क्या महत्व है?
1: कैंसर और ल्यूपस,
0: जी,
1: अगर जांचें समय से होते हैं तो बीमारी की जो भयावहता है, लेटर स्टेज है, उनमें पहुंचने से पहले ही हमें पता लग जाता है उचित परामर्श से और उचित दवाओं के सेवन से कि बीमारियां खत्म हो जाती हैं, मरीज वापस हेल्दी लाइफस्टाइल में लौट सकता है, हेल्दी जीवन में लौट सकता है। और अगर समय से पता नहीं लगता है तो ये फिर प्राण घातक भी हो सकती हैं। तो इसीलिए जांचें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप समय से कराएंगे तो इन बीमारियों से आसानी से निजात पा सकते हैं। जैसे कि कैंसर की अर्ली स्टेज में पता लगता है तो कैंसर रोक सकते हैं, और रही बात ल्यूपस की, तो उसमें भी 5 से 6 महीने का कोर्स होता है, उसको लेने के बाद ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।
0: यहाँ एक और प्रश्न है हमारे मन में कि यूरिन टेस्ट होता है, जो
1: जी
0: एक तो सामान्य होता है, एक 24 घंटे का यूरिन टेस्ट
1: जी
0: होता है, दोनों में क्या अंतर है?
1: देखिए, ये बीमारियों के हिसाब से करना होता है। सिंपल जो यूरिन टेस्ट होता है वो कुछ बीमारियां लगती हैं तो कहीं यूरिन में उनका एक्सक्रीशन तो नहीं हो रहा है सब्सटेंस का, उनको पता लगाने के लिए होता है। और 24 घंटे यूरिन में हम किसी चीज को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि हर स्टेज में या हर घंटे में या अर्ली या टू अर्ली जो भी है, जो चिकित्सक मांग रहे हैं हम लोगों से, तो उसमें चेंजेस या वेरिएशन कितने आ रहे हैं। तो ये पूरा चिकित्सक के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या चीज सर्च करना चाह रहे हैं, कौन सी बीमारी पर उनको शक है कि भाई कहीं मरीज इस बीमारी से ग्रसित तो नहीं है।
0: जी जी सखियों, यहाँ पर हमने बात की कि जांचों का इलाज के लिए क्या महत्व है। तो जांचें सबसे जरूरी हैं, बिना डरे बिना झिझके आप जांच कराएं और अपना इलाज करवाएं, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी इलाज भी सही ढंग से नहीं हो पाएगा। धड़कनों की कहानी खामोशियों में छुपी, शरीर की हर बात जांचों में लिखी, इसलिए अपने अपनों की खातिर समय पर जांच करवाकर खुद को सुरक्षित करें। आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सखियां संतोष जी आपकी बातों का अर्थ समझेंगी और ये समझेंगी कि जांचों का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी।
1: धन्यवाद आपका भी और सभी श्रोताओं का भी मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आज हमने जाना कि इलाज में जांचों का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। जांचें केवल कागज की रिपोर्ट नहीं होती हैं, बल्कि ये शरीर के अंदर छिपी बीमारी की सच्चाई सामने लाती हैं।
0: जी जी।
1: अगर समय पर सही जांच होती है तो बीमारी को गंभीर होने से भी रोक सकते हैं, इलाज को आसान बना सकते हैं और जीवन को बचा सकते हैं।
0: जी
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद सखियों। रोग प्रेम का हो या कोई अन्य, इलाज सभी को करवाना पड़ता है। समय रहते डॉक्टर के द्वारा बताई गई जांचें करवाएं, सकारात्मक रहें, अपना और अपने अपनों का

कहते हैं सखियों कि उम्र छोटी हो सकती है लेकिन हौसले वो कभी छोटे नहीं होते। और आज हम बात कर रहे हैं सखियों उन नन्हे सितारों की जो अपनी चमक से पूरे देश का आसमान रोशन करते हैं, जो मुश्किलों से हारे नहीं बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना लिया। सखियों इन बच्चों में से किसी ने किताबों में कमाल किया तो किसी ने खेल में और किसी ने समाज के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया कि बड़े बड़े लोग भी सोच में पड़ गए। ऐसे असाधारण बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और यह पुरस्कार सखियों उस बच्चे के सपनों की पहचान होता है जो कहता है कि मैं भले ही छोटा हूं पर मेरे सपनों की उड़ान बहुत बड़ी है। ये पुरस्कार हमें यह भी सिखाता है कि बड़े बनने के लिए उम्र नहीं हौसला भी बड़ा होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इसके लिए पात्र कौन कौन है। एक तो 5 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं वो इसके लिए पात्र हैं। भारतीय नागरिक होना इसकी आवश्यक शर्त है और उपलब्धि जो है किसी भी क्षेत्र में वो हाल ही में हुई होनी चाहिए, यानी कि 1 या 2 साल के बीच के अंदर। और उपलब्धियां किस विषय से होनी चाहिए, मतलब किसे ये प्राप्त होगा। कला व संस्कृति में अगर बच्चे ने कुछ श्रेष्ठ किया है तो उसे ये पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। नवाचार से अगर कोई बच्चा जुड़ा हुआ है, यानी इनोवेशन अर्थात उसने किसी चीज की खोज की है, तो उसे यह पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बच्चा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है तो भी उसे पुरस्कार प्राप्त होगा। खेल किसी भी प्रकार का हो, उस खेल के अंदर उसे अपनी निपुणता बतानी है कि गुणवत्ता कितनी है उसकी। और सामाजिक कार्यों में, यानी कि समाज से जुड़े किसी भी कार्य में अगर उसका श्रेष्ठ प्रदर्शन है तो भी उसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। और बहादुरी से जुड़े कार्य, जैसे किसी को बाढ़ से बचा लेना या किसी को आग से बचा लेना, इन कार्यों के लिए भी उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। अब मिलता क्या है, तो मिलता यह है, इसमें एक मेडल मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है, नकद राशि जो कि 1 लाख तक होती है वो मिलती है, और सबसे बड़ी बात माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का अवसर मिलता है। अक्टूबर या नवंबर में इसके आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए awards.gov.in पर आपको आवेदन करना है। नन्हे कदमों में भी ताकत होती है, छोटे सपनों में भी आहट होती है। जो ठान ले कुछ कर दिखाने की, उनकी हर कोशिश एक इबादत होती है। सखियों, कार्यक्रम में पहले पड़ाव में हमने आपसे पोषण के बारे में बात की थी। पहली बात तो सखियों कि आपको बच्चों के पोषण स्तर का विशेष ध्यान रखना है। देखिए, बच्चे स्वस्थ होंगे तभी वो हर क्षेत्र में आगे निकल पाएंगे, और हर क्षेत्र में जब आगे निकलेंगे तो स्वाभाविक है कि जीवन में पुरस्कारों की तो एक लंबी कतार है उनके लिए। आपको हमें पत्र लिखने हैं, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, और आपको हमारे कार्यक्रम के बाद आज अगर कुछ याद आया तो वो भी हमें बताना है। आप हमारा नंबर लिख लीजिए 9530012020, और आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं enjoyairkota@gmail.com। हर बच्चे को इतना प्यार दें कि वे टूटे नहीं, इतनी सेहत दें कि वो रुके नहीं, और इतना विश्वास दें कि वे झुके नहीं। इसलिए सखियों, अगर हमारे बच्चों का बचपन सुरक्षित और मजबूत हो तो आने वाला कल खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगा। आप अपना और अपने अपनों का रखें ख्याल और दीजिए अपनी सखी तेजमोन को अनुमति। नमस्कार।

0: टप बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओ, अब विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों के लिए हम आपको लिए चलते हैं।
1: विविध भारती,
2: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
3: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना? अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे घूम रही थीं जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी, पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गई। वो इस दुनिया से चली गई। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो 1000 टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही, कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

यहीं लौट कर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसकी चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भर आया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तो घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक

मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी। मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थी, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और उसमें नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नजदीक पहुंचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र एक दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल, माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सुनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सुनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहाँ तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे? ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच,

ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी है उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुंदी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें, नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई, मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या माँ बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? माँ बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं। नीरो ने दृढ़ स्वर में

रहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए, फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की

जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरव भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरव, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था। मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरव चुपचाप खड़ा देखता रहा। उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरव पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी, उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है।

मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दो राहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला। जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए। अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। उसमें भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहां जा रही है वही उसकी असली माँ है। मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था। नीर और निर्विकार भाव से इस नियत को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने मां पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधा अनुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं। फिर जब वो रुका तो उसकी सूनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कसकर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी।
उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं।

जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी, तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया, लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं, कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा, वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा, अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था, एक नई शुरुआत का। उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल बदरगी, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुनते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध

लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रपट संगीत। इस कार्यक्रम में पहले हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में ये गजल।

यह आवाज थी तलत महमूद की और कलाम था एहसान मेरठी का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की ये अगली गजल।

0: मदन मोहन के संगीत निर्देशन में साहिर लुधियानवी की लिखी गजल अभी आपने सुनी। स्वर लता मंगेशकर का था और ये फिल्म थी गजल।
1: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सिमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

सुरैया की आवाज थी और फिल्म का नाम था मिर्जा गालिब। गुलाम मोहम्मद की संगीत निर्देशन में ये गालिब की रचना थी। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली गजल। खय्याम साहब के संगीत निर्देशन में बशर नवाज का लिखा कलाम है ये, आवाज भूपेंद्र की और फिल्म का नाम है बाजार।

0: बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जान

पेशे खिदमत है कार्यक्रम की अगली गजल। शहरयार साहब की ये रचना है, सुरेश वाडेकर की आवाज में, फिल्म गमन से हमने ली है। संगीतकार हैं जयदेव।

सुरेश वाडेकर की आवाज में अभी आपने फिल्म गमन की ये गजल सुनी, और इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म शंकर हुसैन की ये गजल सुनवा रहे हैं, रचना जानिसार अख्तर की और संगीत खयाम साहब का।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम आपको बता दें, आज है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो

विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और इसका उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के संरक्षण और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। यानी जो 2026 की थीम है वो है हर पक्षी मायने रखता है, आपका अवलोकन महत्वपूर्ण है। तो ये जो पक्षी हैं वो वाकई हमारे जीवन में, इस समाज में, इस संसार में, इस दुनिया में बहुत मायने रखते हैं और फिल्मी दुनिया में भी गीतकारों ने, फिल्मकारों ने इन पक्षियों को अपनी फिल्मों में स्थान दिया है। तो आज मैटिनी शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही खूबसूरत मधुर गीत जहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी पक्षी का जिक्र है। तो इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं शमशाद बेगम की आवाज में फिल्म आग का गीत। गीतकार हैं बहजाद लखनवी और संगीत राम गांगुली का है। हम आपको बता दें 1948 में रिलीज हुई राज कपूर की फिल्म है ये आग, जो बहुत ही लोकप्रिय और भावनात्मक फिल्म रही और बहजाद लखनवी ने इसमें गीत लिखे और राम गांगुली ने इसका जो संगीत पक्ष है उसे संगीतबद्ध किया। ये गाना नरगिस और राज कपूर पर फिल्माया गया था। दोस्तों ये गाना विरह और पुरानी यादों के दर्द को कोयल की आवाज के साथ जोड़ता है। जैसे कि देखिए ना, कोयल की बोली हमें सुकून देती है ना, कोयल की जो मिठास है वो दिल को भाने वाली होती है। लेकिन जब आप परेशान होते हैं, प्रेम में डूबे होते हैं, विरह में होते हैं, तो ये आवाज भी हमें खलती है। बस यहाँ नायिका की यादों को जगाकर उसे शोर के रूप में ये कोयल की आवाज नायिका को प्रतीत हो रही है। तो ये गीत जो है फिल्मों के शुरुआती दौर के सबसे भावपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

शमशाद बेगम की आवाज में अभी आपने फिल्म आग का ये गीत सुना। गीतकार थे बहजाद लखनवी और संगीतकार थे राम गांगुली। हमारी फिल्मों में हमारे गीतकारों ने जिन गीतों को लिखा उसमें पक्षियों को कई बार प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। एक ऐसा ही गीत है फिल्म माया का, लता मंगेशकर ने इसे आवाज दी है। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल हैं और सलील चौधरी की धुन है। वियोग अकेलेपन और पुरानी यादों के साथ साथ एक नई शुरुआत को दर्शाता है ये गीत। दोस्तों आपने फिल्म देखी होगी माया, जहां माला सिन्हा और देवानंद पर ये गीत फिल्माया गया है और माला सिन्हा और देवानंद की जो जोड़ी है बहुत ही खूबसूरत लगती है। यहाँ गीत गहरे दुख और अकेलेपन को दर्शाता है और पंछी यानी प्यार या उम्मीद जिसे हम कहते हैं वहां से जाने को कहता है कि जहां बाहर है वहां तुम चले जाओ, जहां खुशियां हैं वहां चले जाओ पंछी, क्योंकि यहां तो सिर्फ दुख ही दुख है। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर का गाया फिल्म माया का ये खूबसूरत गीत।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं, क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: जी हाँ, मनचाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे आज दोपहर 3 बजे। तो दोस्तों, मैटिनी शो में आज हम बात कर रहे हैं पंछियों पर, कि किन गीतकारों ने किन किन फिल्मों में इन पंछियों का सहारा लिया। 1950 की एक फिल्म है बाबुल, उस फिल्म का एक गीत आपको याद होगा, पंछी बन में पिया पिया गाने लगा। लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत है, एक अमर प्रेम गीत बन गया है, और इसे महान संगीतकार नौशाद साहब की धुन पर शकील बदायूं ने लिखा था और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी। ये गीत नायिका की पहली प्रेम की अनुभूति और उसके खिलखिलाते हुए मन की कोमल भावनाओं को दर्शाता है। मतलब इस गीत का जो मूल भाव है वो विरह या दर्द नहीं, बल्कि पहली बार हुए प्रेम का उत्साह और आनंद है। जब नायिका को अपने प्रिय से प्रेम हो जाता है तो उसे पूरी प्रकृति में प्यार का संगीत सुनाई देता है। और जहां तक बात है कि पिया पिया गाने लगा पंछी बन के मन, तो जहां तक हम समझते हैं गीतकार के लिखने का उद्देश्य रहा होगा कि इस गीत में पंछी को नायिका के मन की स्वतंत्रता और प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में गीतकार ने दर्शाया होगा, कि जैसे जंगल में पंछी अपने साथी को पुकारता है और पंछी के माध्यम से कवि ने यह दर्शाया है कि प्रेम में बंधने के बाद नायिका का मन, जो पंछी रूपी मन है, वो सांसारिक बंधनों को छोड़कर अपने प्रेमी की दुनिया में उड़ जाना चाहता है। तो आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है बाबुल।

जी तो दोस्तों, मैटिनी शो में अब हम आगे बढ़ते हैं और फिल्म चोर मचाए शोर, जो कि 1974 की फिल्म है, उसका एक गीत है, कौन सा बताइए? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। एक डाल पर तोता बोले, एक डाल पर मैना, एक बेहद प्यारा और रोमानी युगल गीत है। और इस सदाबहार गाने में जो नायक और नायिका है, शशि कपूर और मुमताज के बीच के प्यारे पलों को दिखाया गया है। और जहां तक गीत की बात है, लगता है कि ये गीत रूपक के माध्यम से कुछ बातें कहता है। जैसे कि गाने में तोता और मैना दो अलग अलग डालियों पर बैठे हैं, जो नर और मादा के एक प्रतीकात्मक रूप हैं, और ये इस बात पर दर्शाता है कि भले ही प्यार में आप दूर हों, लेकिन जो प्यार है, बीच का प्यार है, वो अटूट और सच्चा होता है। गीतकार ये कहना चाहता होगा कि भले ही प्रेमी प्रेमिका तोता मैना के रूप में दूर दूर बैठे हों, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के बीच जो प्यार है, वो अटूट और सच्चा है। और तोता और मैना के उदाहरण से गीतकार ये समझाना चाहते हैं कि दो लोगों का जीवन एक दूसरे के साथ ही संपूर्ण होता है, और एक के बिना दूसरे की कल्पना अधूरी लगती है। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। आवाज़ी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने

मैटिनी शो की आखिरी पेशकश हम आपको सुनवा रहे हैं 1989 में आई फिल्म मैंने प्यार किया का गीत। प्यार, वियोग और संदेश भेजने की जिस तरह से मासूम भावना को दर्शाता हुआ ये गीत है कबूतर जा जा जा। और ये गीत मुख्य रूप से नायिका द्वारा नायक को अपने दिल की बात पहुंचाने की तड़प को दिखाता है। नायिका एक कबूतर को अपना प्रेम दूत बनाती है और उसे अपने प्रेमी के पास पहले प्यार की पहली चिट्ठी ले जाने को कहती है। आइए सुनते हैं असद भोपाली का लिखा ये गीत जिसे संगीत में ढाला है राम लक्ष्मण ने।

0: ये था आज का मैटिनी शो। आप सुन रही हैं विविध भारती। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करीब। आमी भारत सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करीब।
1: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के

0: मंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। दोस्तों, आज तलत महमूद साहब की याद का दिन है, तो इस कार्यक्रम में आज हम उन्हीं को याद कर रहे हैं।

सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में अभी आपने राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये गीत सुना। स्वर तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। फिल्म का नाम था छाया। कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद और लता मंगेशकर का ही गाया हुआ। ये फिल्म है उसने कहा था। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं सलील चौधरी।

कार्यक्रम का अगला गीत तलत महमूद की आवाज में फिल्म दाग से सुनिए। गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव
1: शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। स्वर थे तलत महमूद और शमशाद बेगम की। फिल्म का नाम था बाबुल। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जान

0: चलता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
0: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
0: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
0: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने के

लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सुजाता से सुनिए, आवाज तलत महमूद की। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म फुटपाथ का गीत। तलत महमूद ने इसे आवाज दी है। सरदार जाफरी की रचना और खयाम साहब की धुन है।

0: आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम अधिशासी लवेश कुमार परमार
1: कि हम लोग उनके लिए हैं, आकाशवाणी पूरा जो है हमारे सुनने वालों के लिए।
0: अपनी यादें बांटेंगे, कार्यक्रम स्मृतियों के स्वर।
1: और प्रोग्राम की दृष्टि से देखोगे तो आप हमारे जितने भी कलाकार हैं, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं, अनाउंसर्स हैं, उन सब के नाम उनके जवान पे है। क्यों है? क्योंकि उनको प्यार है।
0: 18 मई शाम 7:45 पर
2: तलत महमूद की आवाज में फिल्म संग दिल का गीत सुनिए, राजेंद्र कृष्ण के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा गीत सुनिए। युगल स्वर तलत महमूद और आशा भोंसले की ये फिल्म है बूट पॉलिश।

0: मिलता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म टैक्सी ड्राइवर से हमने लिया है। इस गीत को आवाज तलत महमूद ने दी है, रचना साहिर लुधियानवी की और धुन सचिन देव बर्मन की।

कार्यक्रम में आप सुनिए रवि के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन की रचना, तलत महमूद की आवाज है, फिल्म का नाम एक साल।

कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में शकील बदायूं का लिखा गीत, तलत महमूद की आवाज है और ये फिल्म है दिले नादा।

0: ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री
1: भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ली। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। मुख्यमंत्री के साथ 5 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने सभी को शपथ दिलाई। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 20 राज्यों के मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे।

0: श्री चौहान का कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तारीख से लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी काम करेंगे। वर्तमान में वे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि पश्चिमी और उत्तरी मोर्चों पर प्रमुख परिचालन इकाइयों की कमान भी संभाल चुके हैं। राजधानी जयपुर में आज लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला हो रही है। इसमें नए आपराधिक कानूनों, साइबर क्राइम तथा दिव्यांग कानूनों पर मंथन किया जा रहा है। बिड़ला सभागार में हो रहे इस कार्यक्रम में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहे। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इस कार्यशाला में शिरकत की। कार्यशाला में न्याय प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने तथा नए कानूनों के क्रियान्वयन पर जोर दिया जा रहा है। अजमेर की ऐतिहासिक पहचान से जुड़े तारागढ़ किले और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्र का कायाकल्प किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कल इस बारे में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि आजादी के बाद पहली बार इस किले और क्षेत्र के समग्र विकास तथा संरक्षण की व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने पिछले बजट में इसके लिए 20 करोड़ रूपये का प्रावधान किया था। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की जा रही है। 804 पदों के लिए ली जा रही ये परीक्षा आज एक और कल दो पारियों में होगी। बोर्ड की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार इस बार अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर जाने के लिए 2 स्तरीय सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। बायोमेट्रिक जांच के साथ ही फेस रिकॉग्निशन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जाएगा। पारदर्शी और सुचारू परीक्षा संचालन के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की भी व्यवस्था की गई है। प्रदेश में महिला सुरक्षा संकल्प अभियान 14 और 15 मई को चलाया जाएगा। 2 दिन के इस अभियान के तहत महिला सुरक्षा कानून और आत्मरक्षा के तरीकों के साथ महिलाओं को जागरूक किया जाएगा। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक फूलचंद मीणा ने बताया कि अभियान के तहत स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, पार्क और भीड़भाड़ वाले इलाकों में महिलाओं से अभद्रता करने वाले लोगों के खिलाफ मौके पर ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभियान के तहत कालिका टीम और निर्भया स्क्वाड को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये टीमें सार्वजनिक स्थानों पर लगातार गश्त करेंगी। आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अदम्य साहस और वीरता के पर्याय महाराणा प्रताप को नमन किया है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा है कि महाराणा प्रताप ने मातृभूमि की रक्षा के लिए घास की रोटी खाना स्वीकार किया, लेकिन विदेशी दासता के आगे कभी सिर नहीं झुकाया। पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में हीट वेव का दौर बना हुआ है। जैसलमेर, बाड़मेर और फलौदी में कल तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। 44.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ फलौदी सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग ने आज भी इन जिलों के लिए हीट वेव का अलर्ट बताया है। वहीं कई जिलों में भीषण गर्मी के बीच मौसम बदला। नागौर, अजमेर, टोंक, बूंदी और सवाईमाधोपुर में दोपहर बाद धूल भरी आंधी चली और हल्की बरसात हुई। पूर्वी राजस्थान में आज भरतपुर, धौलपुर, करौली और अलवर जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: नायिका द्वारा उनका लिप मूवमेंट नहीं हुआ है, वो उन्होंने होंठ नहीं हिलाए हैं उन गानों पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो होते हैं और डांसर्स जो होते हैं या बैकग्राउंड में उन गीतों को फिल्माया गया है और वो गीत बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये सुरीला सफर इस गीत के साथ। ये गीत यकीनन आपकी प्लेलिस्ट में है, हमने देख लिया है।

राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आपने मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत सुना। नरेंद्र चंचल की आवाज थी और फिल्म का नाम था बेनाम। जी तो ये गीत सुनकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि पर्दे पर इस गीत को किसने गाया था। जी हाँ, पर्दे पर चंचल साहब भी थे। जब हम उन्हें देखते हैं तो चंचल साहब इस गीत को पर्दे पर गा रहे होते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में कई खूबसूरत और भावनात्मक शब्द छिपे हैं जिन पर गीत चुने जा सकते हैं। मुझे लगता है कि ये शब्द हो सकते हैं जिंदगी, आदमी, पुकार, मुंह, मुसाफिर, गली, विश्वास, श्रद्धा, सफलता, चोटी, जीवन और बेनाम। बिल्कुल, बहुत सारे शब्द आपने बिल्कुल सही चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत मन के उस जटिल रूपांतरण को दर्शाती है जहां एक व्यक्ति शून्यता से पूर्णता की ओर यात्रा करता है। यहां बेनाम जिंदगी

केवल गुमनाम ही नहीं बल्कि उस मानसिक अलगाव का प्रतीक है जहां व्यक्ति स्वयं की पहचान खो चुका होता है। तर्क और बुद्धि जहां हार जाते हैं वहां स्नेह की पुकार काम कर जाती है। ये पुकार व्यक्ति के भीतर सोए हुए मुंह या जीने की इच्छा को फिर से जीवित कर देती है। अतीत के दुखों असफलताओं और पुरानी सोच से मुक्त हुए बिना नए शिखर तक पहुंचना संभव नहीं। जब मन में विश्वास अंकुरित होता है तो बाधाएं मार्ग का पत्थर नहीं बल्कि सीढ़ी बन जाती हैं। तो आज के गीत भी आपने लिखे हैं, बेशक मंदिर मस्जिद में बेनाम तुझसे नाराज नहीं, मितवा मुंह मुंह के धागे करके आपने कोशिश की है कुछ गानों की जो हमारी प्लेलिस्ट से या हमारी पसंद से मिल खाते हैं। बाकी आपने जो अपनी इबारत लिखी है वो बहुत खूबसूरत तरीके से पेश की है।

एक श्रोता लिखते हैं कि अगर जीवन नाटक मालूम पड़ने लग जाए तो आदमी अक्सर शांत हो जाता है और दुनियावी धारा से दूर होकर जीने की कोशिश में सिर्फ संघर्ष करता रह जाता है। इसी समय किसी अपने की पुकार उसमें मुंह के धागे जोड़ देती है। एक जगह से दूसरी जगह भटकते हुए वो मुसाफिर अतीत को पीछे छोड़ सफलता के नए आयाम छू लेता है और रेडियो पर बजने लगता है दिल को छूने वाला गीत, वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ। बहुत सुंदर तरीके से आप अपनी इबारत लिख रहे हैं और आपने जो गानों का कयास लगाया है वो बहुत हद तक सही भी लग रहा है, लेकिन आपको इसके लिए पूरा कार्यक्रम सुनना होगा और उस सुरीले सफर में हमारा साथ देना होगा। आइए सुनते हैं अगला गीत और उसके लिए हम सवाल भी आपसे करने वाले हैं। ये गीत है फिल्म आजाद से, आवाजें लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर की, राजेंद्र कृष्ण की रचना, सी रामचंद्र का संगीत। आपको बतलाना है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, अपलम चपलम, सुना है ना आपने, बहुत ही मशहूर गीत है, किस दिग्गज नृत्य जोड़ी पर फिल्माया गया है, मतलब जो नर्तकी वहाँ नृत्य कर रही हैं, उनके नाम आपको हमें बताने हैं। तो आइए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत गीत।

जी, तो ये स्वर जो आपने सुने बहुत ही खूबसूरत स्वर थे, फिल्म आजाद से हमने लिए थे, लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर के। पर्दे पर दो नर्तकियां इस नृत्य को करती हैं। हमने आपसे पूछा था कि ये कौन है, किस नृत्य जोड़ी पर ये गीत फिल्माया गया है, आपको उनके नाम बताने हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के सभी श्रोताओं को नमस्कार के साथ, आज का एक गीत मुझे लग रहा है तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद ही गाना हो सकता है। कैसे होगा बताइए, गली पर तो अभी आपने जो गाना सुना अपलम चपलम ये हो गया है, तो ये गाना तो हमारी लिस्ट में आज शामिल नहीं है। और दूसरी बात, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज बहुत तरीके से अपनी लिस्ट बनाई है और कई गाने उनको मतलब हमारी पसंद के मुताबिक हमारी पसंद मेल भी खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देने वाला सुंदर परिच्छेद कितनी सहज सुंदर शब्दों में साझा किया है आपने, जो जीवन की निराशा दूर कर देता है और आत्मविश्वास के साथ ये नश्वर जीवन जीने को प्रोत्साहित करता है। आपने कुछ गानों के जिक्र किए हैं, मैं बेनाम हो गया, बिल्कुल सही गाना आपने लिखा था, आगे भी आपने कुछ गानों का जिक्र किया है, आप देखिएगा ये गाने हमारे यहाँ से बजते हैं इस कार्यक्रम में या नहीं, तो अगर हाँ तो हमारी और आपकी पसंद जरूर मिलेगी। लेकिन हाँ, कुछ गाने ऐसे हैं जो आपने बिल्कुल सही पसंद किए हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बातें कम और गाने वो भी पुराने सुनने ज्यादा मिले तो ज्यादा मजा आ जाता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत से उभर कर आने वाले शब्द हैं आदमी पर, आपने बहुत सारी लिस्ट दी है, तो आप भी सुनिएगा आज का ये सुरीला सफर। हमारे साथ इस सफर में आपको बने रहना है और ये देखना है कि आपने जो गाने पसंद किए हैं क्या वो हमारी पसंद से मेल खा रहे हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज हमने बहुत सारे गानों को पसंद किया है, अब देखना यह है कि आपकी पसंद से मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ सफलता किसी के प्यार पाने पर अवश्य ही प्राप्त हो सकती है और ये आत्मीय स्नेह की अनुभूति बेजान जिंदगी में भी जीवन के अनेक रंग भर देती है। ऐसी ही भावनाओं का प्रतिबिंब आज के शब्द गीतमाला में भी नजर आने वाला है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत के गीत शायद इस प्रकार से हो सकते हैं, आपने बहुत सारे गीतों का जिक्र किया है, आप भी सुनिएगा और इस सुरीले सफर में हमारे साथ आपको बने रहना है, ये देखने के लिए, ये सुनने के लिए कि आपकी पसंद हमारी पसंद से कितना मेल खा रही है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज आपका सुरीला सफर तय करने के लिए मैं आ गई हूँ, बहुत अच्छी इबारत लिखी है और इस इबारत से आपको कुछ गीत आए हैं याद आ गए हैं जिसका जिक्र आपने हमें किया है। तो आपको बताना क्या है कि फिल्म आजाद का ये जो गीत है इसमें ये नृत्य किन दो नर्तकियों ने किया है, इनके नाम आपको पटापटा में बताने हैं, फिर हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत और इस गीत को भी आप महसूस करेंगे कि ये किसी नायक या नायिका ने नहीं इसे फिल्मी पर्दे पर गाया है बल्कि समूह स्वर में ये गीत गाया गया है। आपके लिए सवाल ये है कि फिल्म किस्मत का ये गीत किसने गाया है, हम आपको बता देते हैं। इस गीत के गीतकार हैं कवि प्रदीप और संगीत दिया है अनिल विश्वास ने। आइए सुनते हैं ये गीत। अपने जमाने का बेहद मशहूर गीत, आपको इनके गायक

कलाकारों के नाम बताने हैं। और इस गाने से क्या शब्द निकलता है? चोटी।

हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत दार्शनिक तथ्यों को उजागर करती है। कहा गया है कि निराशमय जीवन में एक क्षीण प्रेम पूर्ण रोशनी मार्ग प्रशस्त कर देती है और मन बरबस आकृष्ट हो उम्मीद के साथ उस तरफ गतिमान हो उठता है। अपनी दृढ़ निश्चय संकल्प संग हासिल कर ही लेता है। इबारत गंभीर है मगर बहुत रोचक संगीतमय प्रस्तुति का इंतजार रहेगा। इस कार्यक्रम का सुंदर पक्ष है कि मित्रों द्वारा प्रेषित कमेंट जो ज्ञानवर्धक और तथ्यपूर्ण होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आप जो इबारत लिखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से कहते हैं और उसे पढ़ने में हमें भी बहुत मजा आता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि साधारण मनुष्य के सफल होने का राज किसी जादुई फार्मूले में नहीं बल्कि उन छोटी छोटी आदतों और दृष्टिकोणों में छिपा है जिनमें कोई भी अपना सफर शुरू कर सकता है। सफलता

अक्सर असाधारण काम करने से नहीं बल्कि साधारण कामों को असाधारण निरंतरता के साथ करने से मिलती है। सफल और असफल व्यक्ति के बीच में सबसे बड़ा अंतर निरंतरता का ही है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने बहुत सारे गीतों को लिखा है कि ये गीत शायद आज की प्लेलिस्ट में शामिल हो सकते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि मैं ये कार्यक्रम बहुत ही रोचक लग रहा है। मैं उत्सुक हूँ कि आप लोग कैसे सोशल मीडिया के जरिए श्रोताओं को जोड़ेंगे और कौन से सुरीले गाने सुनवाएंगे। तो आप ये कार्यक्रम सुनिए और आपको पता लगेगा कि कैसे हम सोशल मीडिया से जुड़ते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा परिवार है, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों का फेसबुक से परिवार जुड़ा हुआ है। आप भी उस परिवार से जुड़िए और इस परिवार का हिस्सा बनिए। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है ये और इस कार्यक्रम को समझने में हालांकि थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत में इतनी ताकत होती है कि आसमान से तारे भी नाचते हुए जमीन पर उतर आते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि बेशक आत्मा की पुकार बड़ी शक्तिशाली होती है, सफल व्यक्ति वही होता है जो इस पुकार को सुनकर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलकर अपनी मंजिल को पाता है। और आपके साथ ये सफर भी सुरीला ही होने वाला है, बिल्कुल सुरीला होगा अगर आप इस सफर में कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। तो अब दो सवाल आपके लिए है ना। पहला यही कि फिल्म आजाद का जो नृत्य गीत अभी आपने सुना वो किस पर फिल्माया गया था, नृत्य जोड़ी कौन थी, और फिल्म किस्मत का जो गीत अभी आपने सुना ये हिंदुस्तान हमारा है ये गीत, उसमें चोटी शब्द से ये गीत आ गया था, इसमें गाने वाले कलाकार कौन थे। और बढ़ते हैं अब आगे। वही गीत हमने चुना है जो फिल्मी पर्दे पर कोई नायक या नायिका नहीं गा रही बल्कि अन्य कलाकार गा रहे हैं। फिल्म का नाम है तीसरी कसम। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र की बोल और शंकर जयकिशन की धुन।

0: विवाह तो कन्या
1: उड़ बैठी बजजवा तो कन्या
0: उड़ उड़ बैठी बजजवा तो कन्या। अरे कपड़ा के सब रस

0: बैठी पनवड़िया तो कन्या,
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: रामा, उड़ उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या, अरे बीड़ा के सब रस ले लिया।

हमारे श्रोताओं ने सही जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आपने लिखा है कि फिल्म आजाद का ये गीत जो है दो अभिनेत्रियों डांसर पर अभिनेत्रियां जो डांसर अभिनेत्रियां थी उन पर फिल्माया गया, यानी जो डांसर्स थी नृत्य जोड़ी थी उन पर फिल्माया गया था, वो थी सई और सुब्बुलक्ष्मी। बिल्कुल सही कहा है आपने, आपका जवाब और कई सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि नृत्य जोड़ी थी सई और सुब्बुलक्ष्मी।

और हमारा दूसरा सवाल था कि फिल्म किस्मत में जो गीत आपने सुना, दूर हटो है दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है, इस गीत में गाने वाले कलाकार कौन थे। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हमारे श्रोताओं ने कि आवाजें प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी की थी जिन्होंने इस गीत को गाया था, और साथ में साथी भी थे जिन्होंने इस आवाज को मिलजुल कर आवाज दी थी, यानी प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी ने इस गीत को गाया था, दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिंदुस्तान हमारा है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि सही जवाब आपने हमें दे दिया है। हमारी एक श्रोता लिख रही है कि सफर का टिकट तो ले लिया है कि आपके साथ चलने, बिल्कुल चलने, जब सफर का टिकट आपने ले लिया है तो देर किस बात की, हमारे साथ इस सुरीले सफर में शामिल हो जाइए। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर के लिए तैयार सभी मित्रों को दोपहर का नमस्कार, और इस सुरीले सफर की पायलट मंदाकिनी जोशी जी को भी नमस्कार। आपके साथ एक घंटे के सुरीले सफर के लिए हम सभी संगीत प्रेमी तैयार है, बिल्कुल तैयार है, और हम भी तैयार है आपको इस सुरीले सफर में जगह जगह जाकर अलग अलग चीजों की सैर करवाने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे। अच्छा, आपने पूरी कविता लिख डाली है, आप वही कवि श्रोता हैं हमारे। एक बेनाम जिंदगी जीता हुआ वो आदमी भीड़ में रहकर भी भीड़ से दूर था, चेहरे पर खामोशी की धूल जमी थी और दिल जाने कितने दुखों से चूर था। न कोई अपना उसे आवाज देता, न किसी चौखट पर उसका इंतजार था, वो चलता रहा उस उम्र भर में यूं ही तन्हा, जैसे रेगिस्तान में भड़का कोई गुब्बार था। पुरानी गलियों की टूटी दीवारों पर उसके अधूरे ख्वाब रोया करते थे, रातों की चुप्पी में उसके आंसू तकिए से लिपटकर सोया करते थे। फिर एक दिन किसी आत्मीय पुकार ने उसके सूने मन को छू लिया, जैसे बरसों से की धरती पर पहली बारिश ने प्यार लिख दिया। एक आवाज थी जिसमें अपनापन था, एक नजर थी जिसमें श्रद्धा का उजाला था, उसने पहली बार महसूस किया वो भी किसी के लिए अनमोल निराला था। क्या बात है, वो मुसाफिर फिर मुड़ पड़ा जीवन की ओर, पुरानी गलियों को पीछे छोड़ आया, टूटे हुए विश्वास के टुकड़ों को जोड़कर अपने भीतर नया सूरज उगाया। दर्द अब भी था उसके सीने में, मगर आंखों में उम्मीद का दीप जलने लगा। जो आदमी खुद को खो चुका था, कहीं वो फिर से खुद से मिलने लगा। क्या बात है, और देखो जिसे दुनिया ने बेनाम कहकर ठुकराया, वही एक दिन सफलता की चोटी पर मुस्कुराया, क्योंकि प्रेम और विश्वास का एक छोटा सा बीज है, पत्थर दिल में भी जीवन उगा जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर कविता आप रचते हैं, आपको मैं सैकड़ों साधुवाद देती हूँ। एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इस सप्ताह में तीसरी बार दर्शन देने के लिए, सुरीली आवाज के लिए, मधुर वाणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ये हमारी ड्यूटी है ना, आप इसे लिख लेते हैं कि क्या हुआ कब आने वाले, लेकिन हमारी ड्यूटी है, जब जब ड्यूटी लगेगी तब तब हमें तो आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा तारीफ नहीं करूंगी अपनी, फिर हमारे श्रोता शिकायत करेंगे कि मंदाकिनी जी तो अपनी तारीफ में लगी रहती है। बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत प्यार बरसाया है, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत आभार। चलिए तो इस सुरीले सफर में आगे बढ़ते हैं। आज हमने उन गीतों को चुना है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर किसी नायक या नायिका ने उन गीतों को नहीं गाया है, बल्कि उनके साइड आर्टिस्ट जो हैं या अन्य कलाकार जो हैं उन्होंने इन गीतों को गाया है, या बैकग्राउंड गीत के रूप में ये गीत कहीं ना कहीं हमें दिखाई देते हैं। चलिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपके लिए लेकर आई हूँ, सलिल चौधरी का संगीत है, शैलेंद्र के बोल हैं, लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है दो बीघा जमीन।

0: और इस गीत में आपको शब्द मिलेगा पुकार।
1: जमुना की
0: याद कीजिए, फिल्मी पर्दे पर कौन कौन है।

हमारे और भी श्रोताओं ने सही जवाब हमें दे दिया है। आप लिखते हैं कि सही और सुबह लक्ष्मी दो नर्तकियां हैं जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर नृत्य किया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जो आपने गीत सुनवाया था हिंदुस्तान हमारा है, उसे आवाज दी थी अमीरबाई कर्नाटकी और खान मस्तान ने। जी, इसमें प्रदीप कुमार की आवाज है। प्रदीप जो हमारे गीतकार प्रदीप हैं, कवि प्रदीप हैं, उनकी आवाज है और उनका साथ अमीरबाई कर्नाटकी दे रही हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि गुमनामी के अंधेरे में खुद को समेटे हुए व्यक्ति भले ही दुनिया की नजरों से उजल हो, लेकिन जब कोई निस्वार्थ प्रेम और अपनेपन से उसे पुकारता है तो उसकी भीतर की सोई उम्मीदें फिर से जाग जाती हैं। वह आत्मीयता उसके मन में जीवन के प्रति एक नया आकर्षण पैदा कर देती है। और आप लिखते हैं कि वही पथिक जो कल तक ठहर चुका था, अब अतीत की संगीन गलियों और निराशा को पीछे छोड़कर अटूट आत्मविश्वास के साथ नई राहों पर निकल पड़ता है। यही संकल्प और श्रद्धा उसे साधारण से असाधारण बनाकर सफलता के शिखर तक पहुंचा देती है। बहुत सुंदर। एक श्रोता लिखते हैं कि श्रद्धा और विश्वास जो शब्द है वो अत्यंत गहरे, सकारात्मक और भावनात्मक है, जो एक दूसरे के पूरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों ही शब्दों में आदर और निष्ठा की भावना छुपी होती है। श्रद्धा मन का वो भाव है जिसमें मनुष्य अपने विचारों और कर्मों को किसी उच्चतर सत्ता, ईश्वर, गुरु या आदर्श को समर्पित कर देता है और उसमें ही अपनी भलाई समझता है। बहुत सुंदर आध्यात्मिक तरीके से आपने अपनी बात हमें रखी है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि यूं ही कट जाएगा सफर, सुरीला सफर के साथ चलने से कि गीत नजर आएंगे इबादत को पढ़ने से। बिल्कुल, इबादत पढ़ी। और देखिए, आज तो बहुत सारे श्रोता हमारी पसंद के करीब आ गए हैं। धीरे धीरे ऐसे ही होगा कि हम आपको एक इबारत देंगे और आप समझ जाएंगे कि भैया अब कौन सी गीत आज उद्घोषक लेकर आने वाला है।

है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान जी को हार्दिक धन्यवाद वो देना चाहते हैं। एक श्रोता ने जानना चाहा कि मैं बेनाम हो गया, ये आवाज क्या नरेंद्र चंचल की मधुर आवाज थी और वही पर्दे पर भी गा रहे थे? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, वो मखमली आवाज नरेंद्र चंचल साहब की ही है और पर्दे पर भी वही इस गीत को गा रहे थे। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज इस सुरीला सफर के अंक में हमने एक प्रयोग किया कि उन गीतों को चुना जाए जिन्हें किसी फिल्मी नायक या नायिका ने न गाया हो पर्दे पर, बल्कि साइड आर्टिस्ट जो हैं, अन्य कलाकार जो हैं, या बैकग्राउंड गीत के रूप में उस गीत को फिल्माया गया हो या किसी डांसर ने उस पर नृत्य किया हो, ऐसे कुछ गीतों को चुना जाए। तो आज हमने उन्हीं गीतों को चुना था और आप हर एक गीत को सुनने के बाद समझ रहे होंगे कि पर्दे पर इस गीत को कैसे फिल्माया गया है। एक और गीत आपके सामने पेश कर रहे हैं, दत्ताराम का संगीत, हसरत जयपुरी के बोल, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें हैं। फिल्म का नाम है अब दिल्ली दूर नहीं। इस गीत में से शब्द आया है चिड़िया।

चूहा भी आया बंदर भी आया, चुन चुन करती आई चिड़िया, चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

चलते चलते मिलेगा भालू, हम बोलेंगे नाचो कालू, नाचो कालू, नाचो कालू, मुन्ना ढोल बजाएगा, भालू नाच दिखाएगा, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

का हाथी, मुन्ने का हाथी, मुन्ने का हाथी, सीधा दिल्ली जाऊंगा तेरी दुल्हनिया लाऊंगा। मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया।

जी तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत काफी हद तक मेरे पर ही फिट बैठती है। अच्छा, आप पर फिट बैठती है कैसे? कि महंगी कॉन्वेंट स्कूल की मेरी पढ़ाई, पेरेंट्स पर आर्थिक बोझ, आगे मेरी हायर एजुकेशन बहुत खर्चीला। मैं कंफ्यूजन में था कि ये सब कैसे होगा। फिर मेरी इंटरनल आत्मी पुकार सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं पढ़ाई के साथ साथ ट्यूशन और साइड बिजनेस करके अपनी हायर एजुकेशन का खर्चा निकालूंगा। ऐसा ही हुआ। उदासी की गलियां को छोड़कर जीवन में विश्वास और श्रद्धा के साथ माता रानी के आशीर्वाद से सफलता हासिल करी और आज बच्चे भी अच्छी पोस्ट पर है। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अच्छा, हमारे सवालों का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है कि साई और सुबह लक्ष्मी वो नर्तकियां थी और गायिका थी लता मंगेशकर और उषा मंगेशकर। आपने एक ने सही जवाब दिया कि किस्मत के गायक प्रदीप, कवि प्रदीप और अमीर बाई कर्नाटकी हैं। बिल्कुल सही बात है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 20 मिनट शेष रह गए हैं, अभी भी ओल्ड सॉन्ग्स चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे। अरे तो ओल्ड सॉन्ग ही तो चलने वाले हैं अंत तक, आप इस सफर में हमारे साथ बने हुए हैं ना। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आदमी बेनाम होकर मुख्य धारा से दूर होकर तब जीने लगता है जब वो सभी ओर से हताश हो जाता है। जीवन उसे निरर्थक लगने लगता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि ऐसी कोई रात नहीं जिसकी सुबह ना हो। हताशा के उस समय उसके किसी अपने की पुकार से उसके आत्मविश्वास में नई जान आती है और अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ वो अपनी आगे की मंजिल तय कर लेता है। बहुत सुंदर। वही एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन की यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा दुख से भरी हो या सुख से ही भरी हो। जीवन नैया डगमग डगमग चलती है, कई हिचकोले आते हैं, उसी में फूलों भरी जिंदगी आती है, कांटो भरी शाम भी। व्यक्ति इन्हीं उतार चढ़ाव में अपने को एडजस्ट करते हुए चलता है। अगर जीवन के सफर में सिर्फ फूल ही फूल हो या कांटे ही कांटे हो तो एक रास्ता हो जाएगी, सुख दुख के अनुभव से वंचित रह जाएगा। खट्टा मीठा कड़वा कसेला सभी प्रकार के अनुभव जीवन में आते हैं। बिल्कुल, इसीलिए तो इस सुरीला सफर हमने रखा है जहाँ पर ये सारे स्वाद हमें महसूस करने हैं, है ना। और अंत तक हमें अपना साथ एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना है। तो चलिए इस सफर में आगे बढ़ते हैं फिल्म सफर के साथ। मन्ना डे और साथियों की आवाजें, इंदिवर की बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन। याद कीजिए इस गीत को फिल्माते समय आपको किन का चेहरा याद आता है। हाँ, किसी नायक या नायिका ने तो इस गीत को पर्दे पर नहीं गाया है, है ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि चुन चुन करती आई चिड़िया, जो गाना आपने दिल्ली दूर नहीं का सुनवाया था, उसके मुखड़े में इबारत में कोई शब्द है ही नहीं। क्यों नहीं है? चिड़िया शब्द हमने आपको बताया था ना कि चिड़िया शब्द वहीं से उस गीत को लिया गया है। और एक श्रोता लिखते हैं कि संगीत एकमात्र ऐसा माध्यम है जो दुखों के लिए भी काम कर सकता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है, मैं एक मुसाफिर बेशक पुरानी गली छोड़कर बेनाम जिंदगी गुजार रहा हूं, लेकिन मन में विश्वास और श्रद्धा के बल पर एक दिन सफलता जरूर हासिल करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म 2 बीघा जमीन का ही गाना मेरे पिताजी आखिरी दिनों में हमेशा सुनते थे। उनकी मृत्यु मई महीने में हुई थी। बिल्कुल, ये गीत है ही ऐसा जहां इंसान पुराने जो लोग हैं वो इसे सुनना पसंद करते हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि हम सभी भी तो यहां मुसाफिर ही हैं, हमें अपनी मंजिल का कुछ पता नहीं, जाने कब किस मोड़ पे मंजिल मिल जाए कुछ पता नहीं। बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता लिखते हैं कि सभी मित्रों को आज मैं नमस्कार कहता हूं, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। और विविध भारती जिसे सुनकर हम कहेंगे, हे विविध भारती, जिस गली में जिस घर में रेडियो न रहा हो उस गली से गुजरना नहीं, क्योंकि विविध भारती हमारी खास पसंद है। और अब हम इस सफर के आखिरी सोपान पर हैं, जहां पर हम आपको सुनवा रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों की, फिल्म का नाम अपनापन। फटाफट जवाब भेजिएगा, ये बताइएगा कि आदमी मुसाफिर है, जो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं इसमें शब्द आता है मुसाफिर और आदमी, ये मुख्य रूप से किस अभिनेता और बाल कलाकार पर फिल्माया गया था, और पर्दे पर इस दौरान आपको कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में बैठे हुए दिखाई देते हैं? जी हाँ, ये गीत जो पर्दे पर गा रहे हैं वो अभिनेता कौन है और बाल कलाकार कौन है उनके साथ, और इसी गाने में मुख्य दृश्य के दौरान कौन से अभिनेता और अभिनेत्री बस में सवार दिखाई देते हैं? फटाफट लिखिएगा, बहुत कम समय बचा है।

एक श्रोता ने लिखा है कि कितना बढ़िया गाना है चुन चुन करती आई चिड़िया। इस चिड़िया के ऊपर कई कहानियां बनी हुई हैं जिसको बच्चे बड़े ध्यान से प्रेम से सुनते हैं।

तो इस सवाल का जवाब आपने दिया है कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि आदमी मुसाफिर है गाना मुख्य रूप से अभिनेता सुधीर दलवी, जिन्होंने एक भिखारी की भूमिका निभाई थी, और बाल कलाकार निवेदिता जोशी थी जो बाद में निवेदिता सर्राफ के नाम से जानी गई, उन पर फिल्माया गया था। और इस गाने के मुख्य दृश्य के दौरान कौन थे, अभिनेता जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित भी बस में सफर करते हुए दिखाई देते हैं, है ना? कुछ याद आया आपको?

तो सुरीला सफर में आज इतना ही। आज का ये सफर आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ यूं सफर करना, और सुख दुख उतार चढ़ाव से भरी जिंदगी में इस तरह से गोते लगाना बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथी, हमारे दोस्त हमारे साथ होते हैं। तो बस आज का ये सफर यहीं तक। इस कार्यक्रम से, इस सफर से आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी को दे दें इजाजत। फिर मिलेंगे। नमस्कार।

मित्रों, त्रिवेणी में आज विषय थोड़ा खास है, थोड़ा दिल से जुड़ा हुआ और शायद थोड़ा सा चुभने वाला भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दोस्ती की, लेकिन सिर्फ दोस्ती की नहीं, सही दोस्त चुनने की। दोस्ती एक ऐसा शब्द जो सुनते ही चेहरे पर मुस्कान ले आता है। बचपन की शरारतें, स्कूल की यादें, कॉलेज के किस्से, हर जगह दोस्त हमारे साथ होते हैं। लेकिन क्या हर दोस्त हमारे लिए सही होता है? शायद नहीं। इसीलिए दोस्त चुने, मगर ध्यान से। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके फोन में कितने कॉन्टेक्ट्स हैं? सोशल मीडिया पर आपके कितने फ्रेंड्स हैं? सैकड़ों, हजारों? लेकिन अगर रात 2 बजे आपको किसी की जरूरत पड़े तो आप किसे कॉल करेंगे? बस यही फर्क है दोस्तों की लिस्ट और सच्चे दोस्त में। साथियों, दोस्ती सिर्फ टाइम पास नहीं होती, ये एक जिम्मेदारी होती है। दोस्ती वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं। दोस्त हमारी सोच, हमारी समझ और हमारी पसंद का आईना होते हैं।

दोस्त वो नहीं होता साथियों जो सिर्फ खुशियों में साथ हो, बल्कि वो है दोस्त जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ा रहे, आपकी कमियों को जानकर भी आपको स्वीकार करे और जरूरत पड़े तो आपको सही रास्ता भी दिखाए। आज के समय में दोस्ती का एक नया रूप सामने आया है, ऑनलाइन दोस्ती। लोग एक दूसरे से मिले बिना ही दोस्त बन जाते हैं। यह गलत नहीं है, लेकिन इसमें सावधानी बहुत जरूरी है। हर प्रोफाइल के पीछे एक सच्चा इंसान ही हो, ये जरूरी नहीं। कभी कभी हम पूरी कोशिश के बावजूद गलत लोगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे में सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करें, सबक लें और धीरे धीरे दूरी बनाएं। याद रखें, गलत दोस्ती कभी एकदम से नुकसान नहीं करती, वो धीरे धीरे असर करती है। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसे बन जाते हैं। अगर आपके दोस्त मेहनत करते हैं, सपनों को साकार करने की योजनाएं बनाते हैं, तो आप भी वैसा ही करेंगे। लेकिन अगर वो सिर्फ वक्त बर्बाद करते हैं, तो आप भी वही करने लगेंगे। इसलिए दोस्त चुनना दरअसल अपनी जिंदगी का रास्ता चुनना है।

साथियों, सवाल ये उठता है, कैसे पहचानें कि कौन सही है और कौन नहीं? सिंपल सी बात, जो आपकी बुराई में साथ दे वो दोस्त नहीं, जो आपकी अच्छाई, सफलता, शोहरत और उपलब्धियों से ईर्ष्या करे वो दोस्त नहीं, जो आपकी गैर मौजूदगी में आपका उपहास करे वो दोस्त नहीं, जो आपको खुद से दूर कर दे वो तो बिल्कुल भी दोस्त नहीं। बात करें सच्चे दोस्त की, तो सच्चा दोस्त वो नहीं जो आपकी हर बात पर हाँ कहे, बल्कि वो है जो जरूरत पड़ने पर ना कह सके। सच्चा दोस्त आपकी गलतियों पर आपको रोकेगा, आपकी हार में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपकी जीत में आपसे ज्यादा खुश होगा। सच्चा दोस्त आपकी इज्जत करता है, आपकी बातों को समझता है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, वो कभी आपको अकेला महसूस नहीं होने देगा और हमेशा आपके साथ सच्चा रहेगा। साथियों, दोस्ती में भरोसा करने से पहले समय दीजिए, समझिए और फिर फैसला लीजिए। जिंदगी एक सफर है और सच्चे दोस्त इस सफर के साथी। दोस्त बनाइए लेकिन सोच समझकर, उनके साथ दिल से जुड़िए लेकिन समझदारी के साथ। जिंदगी को आसान बनाना है तो सही दोस्त का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। टीवीके को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री और राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया।
2: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। আমি ভারতের

0: सार्वभौमत्व और अखंडता रक्षा करिब।
1: शपथ ग्रहण की प्रक्रिया के अनुसार सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उसके बाद एक एक कर मंत्री के रूप में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशित प्रामाणिक ने शपथ ली। आकाशवाणी समाचार कोलकाता से काशफिन नाहर।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के शुरुआती दिनों के सबसे वरिष्ठ राज्य नेताओं में से एक 97 वर्षीय मक्खनलाल सरकार का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री ने उन्हें गले लगाया और उनके पैर छुए। मक्खनलाल सरकार भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने जमीनी स्तर पर अथक परिश्रम किया है और जनता की सेवा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने कहा कि जो लोग अब भी नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं उन्हें विवेक से काम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा और संस्कृति को जो भारी नुकसान हुआ है उसे संवारने की जिम्मेदारी भाजपा पर है। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
3: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोभी गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
2: आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 25 वैशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। एक रिपोर्ट।

0: उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। श्री मोदी ने कहा कि गुरुदेव ने एक दार्शनिक, शिक्षाविद, कलाकार और भारत की सभ्यतागत आत्मा की शाश्वत आवाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: संसद के सदस्यों, पूर्व सांसदों और लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में गुरुदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। लोकसभा सचिवालय ने कहा कि गुरुदेव टैगोर की रचनाओं ने देशवासियों में देशभक्ति की भावना को प्रेरित किया। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं करने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। चेन्नई में उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं। एक अन्य घटनाक्रम में अम्मा मक्कल मुनेत्रा कड़गम प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से अपनी पार्टी के विधायक द्वारा टीवीके को सौंपी गई समर्थन पत्र पर कार्यवाही की मांग की है। वीसीके पार्टी आज शाम 4 बजे टीवीके के साथ औपचारिक बैठक के बाद समर्थन के बारे में घोषणा करेगी। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा करेगी। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश तथा कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंध और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया।
1: भारत के त्रिनिदाद और टोबैगो के साथ परंपरागत रूप से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं और ये संबंध साझा इतिहास, उपनिवेश के खिलाफ हमारे संघर्ष और क्रिकेट के हमारे विशेष रिश्तों पर आधारित हैं। दोनों देशों के लोग पहनावे और खेलकूद से लेकर खानपान की आदतों और परंपराओं तक कई मामलों में एक दूसरे से समानता रखते हैं।
0: डॉक्टर जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। यात्रा के दौरान पर्यटन, विदेश और कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के भवन का सौर ऊर्जा से संचालन, विभिन्न परियोजनाओं और आयुर्वेद केंद्र की स्थापना सहित कई समझौतों पर सहमति बनी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि लोक अदालत में समझौता योग्य आपराधिक मामलों, चेक बाउंस और बैंक वसूली विवादों सहित कई प्रकार के मामलों की सुनवाई की जाती है।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: श्री पांडे ने बताया कि वर्ष 2023 से 2025 के बीच 12 राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन कर 26 करोड़ मामलों का निपटारा किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन चुके हैं और जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 21,500 करोड़ रुपए और पीएम सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 3,660 करोड़ रुपए के दावों का निपटारा किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडेबेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र के रूप में बदल दिया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
3: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व की आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। हुरमुज जल डमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। दूतावास हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है।

0: है। पाकिस्तान मानवाधिकार परिषद ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में हाल में की गई वृद्धि की कड़ी निंदा करते हुए इसे जनता पर सीधा हमला बताया है। मानवाधिकार संस्था ने सरकार से मूल्य वृद्धि तुरंत वापस लेने और जनता को राहत प्रदान करने का आग्रह किया। परिषद ने परिवहन किराए और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में मनमानी वृद्धि पर रोक लगाने की भी मांग की। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। दो दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष CDS नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। आकाशवाणी की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंजाब के जालंधर और पटियाला स्टेशन पर आज वॉकेथॉन का आयोजन किया गया। एक रिपोर्ट।
1: पंजाब में आकाशवाणी ने हरित क्रांति के दौरान एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी कृषि पर विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के जरिए किसानों को जानकारियां उपलब्ध करवा रहा है। आज के वॉकथॉन के दौरान आकाशवाणी के श्रोताओं, पूर्व कर्मचारियों और अन्य लोगों ने FM स्टूडियो में एंकर्स द्वारा बजाए जा रहे बेहतरीन गानों के बीच सीधे प्रसारण के जरिए अपने अनुभव साझा किए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए यह राष्ट्रीय प्रसारक विभिन्न कार्यक्रमों और समाचार बुलेटिन के माध्यम से जानकारी, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान करते हुए बीते 9 दशकों से देश की सेवा में तत्पर है। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर।
0: आकाशवाणी शिलोंग में भी मैराथन का आयोजन किया गया। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात पांचवें नंबर पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिरोध जारी। TVK को अब तक बहुमत नहीं मिला। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। और जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। ये स्वर है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है ताजमहल। गीतकार साहिर लुधियानवी, संगीतकार रोशन।

कार्यक्रम में अब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गाइड का गीत। गीत रचना शैलेंद्र की और संगीत रचना सचिन देव बर्मन की है।

0: दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: जाने

किशोर कुमार की आवाज थी, फिल्म का नाम था मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। गीत आनंद बख्शी ने लिखा था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।

0: वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ओआरएस हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं।

होते हैं, जो जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है, एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
2: खत

अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और साथियों को। फिल्म का नाम था दिल अपना और प्रीत पराई। शब्दकार शैलेंद्र थे और संगीतकार शंकर जयकिशन थे। इस गाने के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम अब खत्म होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
1: मन चाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी का स्नेहिल अभिवादन। चलिए शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। ये पहला गीत सुनना चाहा है, ये है हमारे सुनने वाले श्रोता ककराला उत्तर प्रदेश से डॉक्टर मसरूर खान, सरफराज खान, प्रवीण खान, अनिल नागर और इनके परिवार के दोस्त। और ये हैं विनोद कुमार अड़िया, भारती अड़िया, पारुल, पायल, श्वेता, उर्वी बैन।

अढ़िया, इन्होंने ये खत लिखा है अकोला महाराष्ट्र से। आप सभी से अनुरोध है कि आप कृपया थोड़ा सा अपने जो शब्द हैं, जो राइटिंग है, उन्हें साफ सुथरा लिखें ताकि हमें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। फिर हम जब नामों को पढ़ते हैं और कोई गलत नाम हमसे पढ़े जाते हैं तो हमारे शिकायत श्रोता जो हैं भर भर के हमारी शिकायत करते हैं। तो कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ सुथरी लिखें, साफ तरीके से, ताकि हम आपके नाम को अच्छे से पढ़ सकें। आपने अपने नामों को घुमा घुमा के लिखा है, कृपया इसी तरह से नामों को न लिखें, साफ सुथरे तरीके से लिखें ताकि हम सही नाम आप तक पहुंचा सकें। चलिए, आप सभी सुनना चाहते हैं लैला मजनू फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं गांव दलपतपुरा से दुर्गा देवी, हरि सिंह, प्रेम, बलबीर सिंह, अनिल, अनुप्रिया और उनके परिवार वाले। इसी गाने को

मन भावन प्रोग्राम की शुरुआत आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड रेडियो स्टेशन 100.1 पर। और जी शनिवार है, शनिवार की आपकी दोस्त सीमा वर्मा एक बार फिर आपसे मुखातिब है आपकी बहुत सारी फरमाइशें लेकर। और जिन्होंने अभी अभी अपना रेडियो सेट ट्यून इन किया है, हम आपको बता दें कि आप एफएम गोल्ड 100.1 के साथ हैं। एक प्रोग्राम शुरू होता है जी जिसका नाम है मन भावन, और इसमें आप अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? fmgoldairdelhi@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं, fmgoldairdelhi@gmail.com। और हर बार की तरह पहला गीत मेरी फरमाइश का आप सबके लिए। आप मुस्कुराते रहिए और हम तक अपना संदेशा पहुंचाते रहिए। fmgoldairdelhi@gmail.com सभी सुनने वालों को सीमा वर्मा का नमस्कार।

0: ये था फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज का ये कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपकी अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी ने। अब दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनवाते हैं के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी। नाटक का शीर्षक है पोस्टमैन। तो सुनिए नाटक पोस्टमैन का पहला भाग।

0: चिट्ठी ले लीजिए।
1: आता हूँ पोस्टमैन भैया।
2: कौन? लगता है गांव के तुम नए पोस्टमैन हो।
3: जी हाँ, मैं नया पोस्टमैन कंदस्वामी हूँ। लीजिए, ये आपकी चिट्ठी है।
2: लाओ। अरे हाँ, याद आया, अब पुराना पोस्टमैन रिटायर होने वाला था ना।
3: जी हाँ, वो रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह मैं आया हूँ। अच्छा, तो मैं चलता हूँ श्रीमान।
2: अरे भाई, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? पुराना पोस्टमैन तो इस तरह कभी जल्दी नहीं मचाता था। हर घर में कम से कम आधा घंटा बैठता था, बातचीत करता था और फिर आगे जाता था।
3: जी हाँ, सब ऐसा ही कहते हैं। मेरे लिए तो एक एक मिनट सोने के बराबर है। सयानों ने कहा है ना कि गया वक्त कभी हाथ नहीं आता। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए।
2: वाह वाह, तुम देखने में तो कम उम्र के मालूम होते हो, लेकिन बातें बड़ी समझदारी की करते हो। मुझे तो वक्त काटने के लिए कोई ना कोई साथी चाहिए। कुछ ना कुछ बोले बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैं तो बोलता ही रहूंगा। अच्छा, तुम जाओ भैया, अपना काम देखो।
4: पोस्टमैन, मेरी कोई चिट्ठी है?
3: घर का क्या नंबर पता है श्रीमान?
4: नंबर 11 पश्चिमी गली।
3: इस पते का एक लिफाफा है श्रीमान, लीजिए।
4: मुझे पढ़ना नहीं आता है भैया, जरा तुम ही पढ़कर सुना दो।
3: लिखा है, पूज्य पिताजी प्रणाम, मैं सकुशल हूँ, आपकी कुशलता भगवान से चाहता हूँ।
4: मेरे बेटे मणि की चिट्ठी है। अच्छा, आगे पढ़ो।
3: मैं यहाँ अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ, परीक्षा की फीस देनी है, कृपया 50 रुपए।

0: भेज दीजिए, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। आपका प्रिय पुत्र मणि। बस इतना ही लिखा है, ये लीजिए चिट्ठी।
1: अगर कष्ट न हो तो डाक बांटकर मेरे घर आ जाना, मनियाड़े लिखकर मेरे बेटे के नाम भेज देना, बड़ा उपकार होगा भैया।
0: मैं जरूर आऊंगा बाबा, अपना काम खत्म करके मैं सीधा आपके घर आऊंगा, तभी मनी ऑर्डर फॉर्म भर दूंगा।

0: पाकर मिलता है, उनकी चिट्ठियां पढ़कर मिलता है, उस आनंद का क्या शब्दों में वर्णन हो सकता है।
1: अरे वाह कंद स्वामी, इस छोटी सी उम्र में भी गूढ़ बात करना खूब जानते हो।
0: मैं बचपन से ही मुसीबत में पला हूं ना, मैं अभी बच्चा ही था कि मेरे माँ बाप परलोक सिधार गए, मेरे भाई बहन कोई नहीं रहे। मैं अपने मामा की सहायता से पढ़ लिखकर बड़ा हुआ और इस पोस्टमैन की नौकरी पर लगा। बातों बातों में देर हो ही गई, यहाँ का काम मैं जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। देखिए कोई मनी ऑर्डर या रजिस्ट्री है क्या, तब तक मैं बाकी चिट्ठियों पर मोहर लगाता हूँ।
1: मनी ऑर्डर हाँ एक है। सैनिक ने रुपया भेजा है, शाबाश जवान।
0: कौन है वो सैनिक?
1: अरे वही तुम्हारा डुप्लीकेट।
0: मेरा डुप्लीकेट?
1: हाँ तुम्हारा हम शक्ल। तुम जब पहले दिन ड्यूटी पर आए थे तो तुम्हें देखते ही मुझे यही बात महसूस हुई थी। कंदस्वामी तुम्हारी शक्ल सूरत उस सैनिक से इतनी मिलती जुलती है कि तुम दोनों को अलग अलग खड़ा कर देखें तो ये कहना मुश्किल होगा कि कौन कंदस्वामी है और कौन कुमार स्वामी। एक ही सांचे में ढली दो मूर्तियां, एक सा चेहरा एक सा कद। अगर तुम्हारे चेहरे पर मूछें और गाल पर एक मस्सा हो तो तुम्हारी माँ भी तुम दोनों में फर्क नहीं कर सकती, वो हूबहू तुम जैसा है।
0: कौन है वो?
1: अरे शिवकामी नाम की बुढ़िया का बेटा कुमार स्वामी।
0: कौन शिवकामी? वो तो नहीं जो उस उत्तरी गली में 14 नंबर के मकान में रहती है, उसी की बात कर रहे हैं ना आप?
1: हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। उसका बेटा कुमार स्वामी बचपन से ही बड़ा उद्दंड और शरारती था, जब देखो कोई न कोई उपद्रव खड़ा किए हुए है। लोगों ने चैन की सांस ली जब किसी तरह सेना में भर्ती होकर गांव से चला गया। वहां वो बड़ा ही अच्छा और जिम्मेदार जवान बना, काफी तरक्की की है। साल में एक बार छुट्टी पर यहां आता है। दुश्मन ने जब से देश पर हमला किया था तब से वह छुट्टी पर नहीं आया, सीमा रक्षा के किसी मोर्चे पर लगा है। वो 3 महीने में एक बार 3,000 या 4,000 रुपए अपनी माँ को भेजता है। अब भी उसने 3,000 रुपए भेजे हैं।
0: अच्छा तभी वो बेचारी बुढ़िया माँ दरवाजे पर खड़ी होकर रोज मुझे घूर घूर कर देखती है। आज जब मैं उसे मनी ऑर्डर दूंगा तो वह कितनी खुश होगी।
1: आज क्या जल्दी है, कल जाकर दे आना।
0: क्या कह रहे हैं आप पोस्टमास्टर साहब, ये गलत बात है। डाकखाने का नियम तो ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने स्थान पर मौजूद है तो उसके डाक उसे फौरन मिलने चाहिए।
1: मैं तो यूं ही तुम्हारी परीक्षा ले रहा था बस।
0: सभी पत्रों पर मोहर लगा दी है, तो मैं चलूं। और हाँ उस मनी ऑर्डर का रुपया दे दीजिए।
1: ये लो ठीक तरह से गिन लो, डाक जल्दी बांट कर मेरे घर आ जाना। आज तुम मेरे साथ ही खाना खाओगे।

0: क्यों भाई सिंगारम, क्या हालचाल है? बड़े नाराज मालूम होते हो आज, क्या बात है? क्या एक कप चाय लाऊं? क्या सोच रहे हो? अरे भाई मैं अपने पैसे से चाय खरीद कर लाऊंगा।
1: अरे क्या बकता है मारी, आजकल मेरा हाथ जरा तंग है इसलिए तुझे मजाक की सूझ रही है। अरे तू क्या मुझे चाय पिलाएगा, मैं चाहूँ तो अब भी हजारों को चाय पिला सकता हूँ, समझे?
0: सो तो है, लेकिन जरा समय का फेर देखो, हनुमान जी तो एक ही छलांग में समुद्र पार करके लंका में पहुँच गए थे, और यहाँ तुम हो कि गांव के नाले को भी नहीं लांग सकते। है ना?
1: लगता है मारी आज तेरी चांद कुछ खुजला रही है साले, लगाओ।
0: अरे रे रे रे, जबान का काम हाथ से क्यों ले रहे हो भाई सिंगारम? कहो कुछ काम बना?
1: बड़ा आया है काम बनाने वाला, जब खुद मैं किसी की अंटी ढीली करूंगा तभी कुछ काम बनेगा। हाँ।
0: अरे भाई अपने राम का भी तो यही धंधा है, मेहनत मजदूरी तो हमसे होती नहीं, ये हाथ पांव काम करने के काबिल ही कहां रहे। अगर कोई भूला भटका सामने पड़ जाए तो उसे छीना झपटी करके ही अपनी रोटी चलती है।
1: और चारा ही क्या है, अगर मेरी वो बुढ़िया बहन कृपा करके कुछ न कुछ देती रहे तो रोटी की कोई फिक्र ही नहीं रहेगी। लेकिन वो एक पैसे की दीवार नहीं, मोर्चे से बेटा रुपया भेजता है तो उन्हें संदूक में रखकर ताला लगा देती है और कहती है मेरे पास तो एक भी पैसा नहीं है।
0: सिंगारम, सिंगारम उधर देखो, नया डाकिया कंद स्वामी आ रहा है।
1: अरे यही है वो? अरे ये तो हूबहू मेरी बहन के बेटे कुमार स्वामी जैसा दिखता है।
0: अरे कुछ मत पूछो दोस्त, फौजी आदमी भी इसके सामने कोई चीज नहीं है, अपने को बहुत बड़ा धर्मात्मा और ईमानदार समझता है।
1: क्यों, कोई झगड़ा तकरार?
0: मेरे साथ तो अभी कुछ नहीं हुआ।
1: तो?

0: नहीं सुनाई कह रहा हूँ, तुम जरा बात करके देखो, अब पता चल जाएगा।
1: अच्छा ऐसी बात है।
2: अजी पोस्टमैन साहब, जरा इधर तशरीफ तो लाइए।
3: कहिए क्या बात है। कैसे बुलाया आपने।
1: अजी बैठिए भी।
2: अरे मारी भाग कर एक कप चाय तो लाना।
3: क्षमा कीजिए श्रीमान, इस समय बैठने की फुर्सत नहीं, डाक बहुत है हाथ में।
1: वो तो मैं देख ही रहा हूँ। अच्छा कोई मनी ऑर्डर है?
3: है क्यों नहीं,
1: तो लाइए दे दीजिए ना। मेरा नाम सिंगारम है।
3: आपके नाम का तो कोई मनी ऑर्डर नहीं है।
1: अजी किसी के भी नाम का हो क्या फर्क पड़ता है, जिसके नाम मनी ऑर्डर है उसी के नाम के यहाँ मैं दस्तखत कर देता हूँ। आपको तो मनी ऑर्डर पाने वाले के सिर्फ दस्तखत ही चाहिए ना, और कुछ तो नहीं। लाइए लाइए मनी ऑर्डर।
3: वाह ऐसे कैसे दे सकता हूँ मैं, ये तो जालसाजी हुई जो कानूनन जुर्म है।
1: अरे आप भी कानून का क्या पचड़ा ले बैठे। मनी ऑर्डर दरअसल है किसके नाम?
3: शिवकामी अम्माल के नाम। उन्हीं को देना है मुझे, मैं चलता हूँ।
1: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: बेकार की बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है।
1: पोस्टमैन, इस गांव में नए आए मालूम होते हो, उस पर ये छोटी उम्र और जवानी का उबाल, इसीलिए अक्खड़ बने फिरते हो। लेकिन शायद तुम सिंगारम को नहीं जानते। जिस शिवकामी के नाम ये मनी ऑर्डर है वो मेरी बड़ी बहन है, समझे। उसका मनी ऑर्डर फौरन मेरे हवाले कर दो, वरना।
3: वरना क्या होगा?
4: अरे भाई क्यों उलझते हो इनसे, ये चाहे तो इस गांव से तुम्हारा नाम और निशान मिटा दें। इसलिए भाई बेकार झगड़ा मोल ना लो इनसे, अपनी बहन के नाम के दस्तखत ये खुद किए देते हैं, तुम चुपचाप मनी ऑर्डर के रुपए इन्हें दे दो।
1: हाँ हाँ रुपए लाओ लाओ लाओ।
3: सिंगारम ये ना भूलो कि बलि से भी बड़ा बलि वो है जिसे भगवान कहते हैं। तुम्हारी धमकियों से मैं तो डरने वाला नहीं, तुम मेरी इज्जत रखोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत रखूंगा, अगर तुम मेरी इज्जत उतारना चाहोगे तो मैं भी तुम्हारी इज्जत उतार दूंगा।
4: अरे बाप रे, ये पोस्टमैन छोकरा तो तूफान की तरह गरजता हुआ चला गया।
1: अरे जाने दे जाने दे जाने दे, आखिर बच के जाएगा कहाँ।

0: जी मैं पोस्टमैन। क्या शिवकामी अम्माल आप ही हैं? क्या बात है माई, आप इस तरह चकित क्यों रह गई? आप मुझे इस तरह घूर घूर कर क्यों देख रही हैं?
1: क्या कहा तुमने? तुम सचमुच पोस्टमैन ही हो ना? तुम जरा इधर मेरे पास आकर बैठो। क्षण भर में ही मेरी क्या हालत हो गई। एकाएक मुझे ऐसा लगा मानो मेरा बेटा कुमार स्वामी ही मेरे सामने आ गया हो।
0: कुमार स्वामी नहीं, आपके नाम ये मनी ऑर्डर भेजा है माई।
1: अच्छा,
0: 3000 रुपए भेजे हैं। यहाँ इस जगह दस्तखत कर दीजिए। और यहाँ भी। ठीक, ये लीजिए रुपए। 100-100 रुपए के 30 नोट हैं। अच्छी तरह गिन लीजिए। और ये रहा कूपन।
1: बेटा, मुझे सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, पढ़ना नहीं आता। जरा पढ़कर सुना दो कूपन पर मेरे बेटे ने क्या लिखा है। तुम शायद जानते नहीं, मेरा बेटा फौज में है। हाँ तो पढ़ो।
0: हाँ, लिखा है, प्रिय माता जी प्रणाम।
1: अरे, तुम्हारी आवाज भी कुमार स्वामी जैसी ही है। तुम्हारे अगर मुझे हो और गाल पर मस्सा हो तो तुम में और मेरे कुमार स्वामी में कोई फर्क नहीं होगा। ओह, भगवान की कैसी लीला है। अच्छा, आगे पढ़ो बेटा।
0: मैं यहाँ सकुशल हूँ। मेरा विश्वास है कि आप और नीला भी सकुशल होंगी। मुझे घर का खाना बार बार याद आता है। आपके हाथ से बना खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। जब छुट्टी मिलेगी तब जरूर आऊंगा। आपका बेटा कुमार स्वामी।
1: बेचारा, अब फौज में जाकर मेरे बनाए खाने के लिए तरस रहा है। किसने कहा था फौज में भर्ती होने को?
0: ऐसा ना कहिए माँ जी, निकम्मों की तरह गांव में आवारागर्दी करने की अपेक्षा सीमा रक्षा

0: के मोर्चे पर जाकर देश सेवा करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं तो कहूंगा आपका बेटा धन्य है।
1: क्यों बेटा, मेरे कुमार स्वामी के लिए वहाँ कोई खतरा तो नहीं?
0: देखिए माँ जी, खतरा कहाँ नहीं है। अगर हर कोई आदमी अपनी जान की चिंता करने लगे तो देश की चिंता कौन करेगा, सीमा रक्षा की चिंता कौन करेगा। आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, वो देश के शुभ काम में लगा हुआ है।
1: बेटा, ये कहकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। मुझे इस तरह धीरज बंधाने वाले, तसल्ली देने वाले तुम इस गांव में पहले आदमी हो। इस गांव में मेरा अपना कोई नहीं, दूर के रिश्ते का एक भाई है जो आवारा और बदमाश है।
0: सिंगारम, अभी आते आते उसे देखा था।
1: वो हमेशा मुझसे कहता है कि मेरा बेटा मोर्चे से वापस नहीं आएगा। हमेशा ऐसी ही अशुभ बातें उसके मुंह से निकलती।
0: माँ जी, अगर एक आदमी के कहने से दूसरा आदमी मर सकता है तो इस संसार में कोई भी जिंदा ना बचे। और रहा वो सिंगारम, उसके कहने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ सकता। आप चिंता न कीजिए।
1: जियो बेटा, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने ही बेटे से मिलकर बातें कर रही हूँ। अच्छा, ये लो 10 रुपए, कुछ खा पी लेना।
0: पैसे रहने दीजिए माँ जी, मेरे लिए तो आपका प्यार ही बहुत है। आपकी कृपा से सरकार जो वेतन देती है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। और फिर मनी ऑर्डर देकर बदले में किसी से कुछ पैसा लेना डाक आने के कानून के खिलाफ है।
1: क्या तुम्हारे माँ बाप हैं? शादी हो गई है?
0: मैं तो एक तरह से अनाथ हूँ माँ जी, और शादी की क्या जल्दी है अभी। अच्छा तो चलता हूँ माँ जी, बहुत सी डाक बांटनी है अभी।
1: जब कभी समय मिले तो इधर आ जाया करो, और नहीं तो मेरे मन को कुछ तसल्ली ही मिलती रहेगी। हाँ, आओगे ना बेटा?
0: आऊंगा माँ जी।

0: अरे जरा देख कर चलना चाहिए। अच्छा हुआ कि आपका घड़ा नीचे नहीं गिरा।
1: माफ कीजिए, मैं अपने ध्यान में चली जा रही थी कि कोई चिट्ठी है।
0: आपके लिए तो नहीं है,
1: मेरा मतलब है शिवकामी अम्माल के नाम कोई चिट्ठी है।
0: तो क्या आपको उस बुढ़िया की चिंता है?
1: वो मेरी नानी लगती है ना।
0: आपकी नानी? ओह समझा, आपका नाम।
1: मेरा नाम जानकर आप क्या करेंगे?
0: जी जी, वो जब कभी आपकी चिट्ठी आएगी तो।
1: मेरा नाम नीला है।
0: इस गांव में इतनी सुंदर लड़की, इसका नाम नीला नहीं चांदनी होना चाहिए था। अरे ये मैं क्या सोचने लगा। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। मैं इस गांव का डाकिया हूँ, डाकिया।

0: कहो जी जी, कैसा हाल चाल है?
1: कौन? शिंगारम? अरे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे घर आकर बीड़ी न पिया कर। ओह, मेरा तो दम घुट रहा है।
0: मेरी हैसियत तो बीड़ी ही पीने की है जीजी। तुम्हारा बेटा सेना में खूब कमाता है। वो नीला कहाँ गई है?
1: उसकी चिंता तू क्यों करता है? तुझे अपने काम।
0: अरे अरे अरे अरे, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है। इतनी लापरवाही ठीक नहीं है जीजी। जवान लड़की है और अच्छा, कल तुम्हें कोई मनी ऑर्डर मिला था क्या?
1: क्या तुझे भी मालूम हो गया?
0: कैसी बातें कर रही हो जीजी? भले ही प्राण यमराज की जानकारी के बिना निकल जाए, लेकिन इस गांव में कोई भी काम मेरी जानकारी के बिना नहीं हो सकता। नहीं जानती क्या?
1: मेरे लिए तो तू यमराज ही है। अच्छा, तब चलता फिरता नजर आ।
0: इस तरह क्यों दुत्कारती हो जीजी? बड़े जोर की प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी पिला दो ना।
1: अच्छा अच्छा, ये ले पानी। और अब
0: जी जी, इस उम्र में तुम खुद क्यों काम करती हो? नीला कहाँ गई? मैंने पानी ये सोचकर मांगा था कि तुम नीला को ही पानी लाने के लिए कहोगी।
1: मुझे भी मालूम था कि तूने पानी क्यों मांगा। मैंने नीला से कह रखा है कि वो तेरे सामने कभी ना आए।

0: तुम तो नीला को इस तरह से सहेज संभाल कर रखती हो मानो तुम्हारा बेटा कल परसों आकर उससे शादी कर लेगा और वो तुम्हारी बहू बन जाएगी। अरे वो कुमार स्वामी नीला से शादी करेगा या मोर्चे पर दुश्मन की गोली से मरेगा? कौन जाने।
1: शिंगारम, सवेरे सवेरे आकर तू क्यों इस तरह मेरा दिल दुखाता है? तुम्हारी ये उल जलूल बातें मुझे अच्छी नहीं लगती।
0: मैं क्या करूं जीजी, मेरी जबान जरा लंबी है, वो हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। मैं तो यही कहना चाहता था कि तुम अगर नीला की शादी मेरे साथ कर दो तो मैं उसे रानी की तरह रखूंगा।
1: अरे मैं अंधी नहीं जो तोता पालकर बंदर के हाथ में दे दूं।
0: अच्छा, खैर कोई बात नहीं, ये बात तो फिर कभी होती रहेगी। पहले ये बताओ लड़के ने कितने रुपए भेजे हैं?
1: कितने भी भेजे हो तुझे क्या मतलब?
0: मतलब है तभी तो पूछ रहा हूँ, सब रुपए अभी तो खर्च करोगी नहीं, अगर मुझे भी कुछ रुपए दे दो तो मैं ब्याज सहित लौटा दूंगा। यकीन मानो मुझे रुपए देना बैंक में जमा करने के बराबर है।
1: नहीं, अंधे कुएं में डालने के बराबर है। अब कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगी, चला जा यहाँ से।
0: मैं तो तुम्हें अपनी बहन समझकर आदर दे रहा हूँ।
1: तू मेरा कुछ नहीं लगता और जाता है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत जल्दी तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैं

0: अरे सामने वो बदमाश शिंकारम खड़ा है, अब मैं क्या करूं? नानी ने इसके सामने ना पढ़ने को कहा था। अरे मुझे देखकर ये इधर ही आ रहा है, यहाँ तो एकदम सुनसान है, अब क्या करूं? सिर पर पानी का घड़ा और अच्छा पेड़ों की झुरमुट की आड़ लेकर भागती हूँ।
1: अरे नीला, क्यों तुम हिरनी की तरह भाग रही हो? रुको, मैं कहता हूँ रुको।
2: क्या नल से पानी लाई हो? अरे घबराती क्यों हो? मैं बाघ थोड़े ही हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। चलो हंसकर दो बातें करो। और
0: मुझे घर जाना है, नानी अकेली है।
2: मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ तुम्हारे साथ।
0: मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, मुझे रास्ता मालूम है।
2: मैंने कब कहा कि तुम्हें रास्ता मालूम नहीं है? देखो नीला, जमाना बहुत बुरा है, तुम जवान लड़की हो, गांव में बदमाशों की कमी नहीं है, रास्ते में कहीं भी किसी ने छेड़छाड़ की तो
0: और कोई क्या करेगा।
2: ये बात है, बहुत ही बढ़ चढ़ कर बातें करने लगी हो। कल ही तुम्हारी नानी के पास पहुंचूंगा और डरा धमका कर जैसे भी हो शादी की बात पक्की करके रहूंगा। देखना तुम मुझसे ही शादी करोगी।
0: जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये कभी नहीं होने का।
2: अच्छा?
0: मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, ज्यादा किया तो मेरी लाश को ही शायद मंगलसूत्र बांध सकोगे।
2: अच्छा ये बात है।
0: छोड़ मैं
3: यहाँ कोई नहीं बताएगा तुझे। दिन भर एक अपने लड़की से छेड़छाड़ करता है, तेरी ये हिम्मत? बदमाश कमीना कहीं का, तू जैसे लफंगों की वजह से सारी पुरुष जाति की बदनामी होती है।
2: अरे बकवास बंद करो डाके, गांव में नया नया आया है और मुझ पर तो हाथ उठाता है। अच्छा देख लूंगा तुझे।
3: अरे अभी देख लेना अच्छी तरह से, अभी जो तेरी धुनाई की है अगर वो काफी नहीं तो लगाऊं तो चलो हाल उधर कर दूंगा। क्या समझ रखा है तूने?
2: अगर मैं अपने दलबल के साथ होता तो जरूर समझा देता तुझे,

0: जैसे कल के छोकरे से क्या भिड़ू, तुझसे उलझना मेरे लिए बेइज्जती की बात है। अच्छा अभी तो जाता हूँ, लेकिन एक दिन तुझसे बदला जरूर लेकर आऊंगा।
1: मैं किस मुंह से आपको धन्यवाद दूं, आपने ठीक समय पर आकर मुझे बचा लिया, नहीं तो ना जाने वो बदमाश क्या कर बैठता।
2: भगवान सबका रक्षक है, आओ नीला तुम्हें घर तक पहुंचा दूं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव में किसी बदमाश की इतनी जरूरत हो सकती है।
1: जी इस गांव के सब लोग अच्छे हैं, ना कोई किसी से झगड़ा करता है ना लड़ाई, सिर्फ यही एक शिंगारम ही ऐसा आदमी है जो सबको डराता धमकाता फिरता है। इसका अपना कोई आगे पीछे है नहीं, सो
2: तुम्हारी नानी इसकी बहन जो लगती है।
1: अरे नहीं, मेरी नानी का ये बहुत दूर के रिश्ते का भाई लगता है, इसी नाते ही हमारे घर आता जाता है। पहले ये मेरी माँ से शादी करना चाहता था।
2: हाँ हमारे यहाँ मामा भांजी की शादी जायज मानी जाती है।
1: लेकिन मामा ढंग का तो हो, मेरी नानी ने शिंगारम की बात नहीं मानी और अपनी बेटी यानी कि मेरी माँ की शादी दूसरी जगह कर दी। मेरे पैदा होते ही मेरी माँ चल बसी।
2: ओह तो तुम्हारी माँ नहीं है।
1: आप तो बाप भी नहीं है, लेकिन नानी ने मुझे माँ बाप की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। वो मुझसे माँ की तरह प्यार करती हैं। अब वो बदमाश शिंगारम मुझसे शादी करना चाहता है, इसीलिए वो मेरे पीछे पड़ा है।
2: तुम्हारा अपना इरादा क्या है?
1: मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगी।
2: हाँ हाँ रिवाज के मुताबिक तुम तो अपने फौजी मामा कुमार स्वामी से ही शादी करोगी।
1: अरे अरे बातों बातों में घर तक पहुंच गए, अब कोई डर नहीं। मैं जाती हूँ, समय पर आकर आपने मुझे इस बदमाश से बचा लिया, इसका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी।
2: अरे रहने भी दो, ऐसा कौन सा बड़ा उपकार किया है मैंने। चली गई, कितनी सुंदर है ये, और सुशील भी, बोली ऐसी मानो कानों में मिश्री घोल दी हो। अगर कहीं ये छी छी, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ऐसा सोचना पागलपन है, पाप है, ये कैसे संभव हो सकता है। जब उसका मंगेतर है तब पता नहीं मुझे क्या हो गया है, जब से मैंने नीला को देखा है तब से मेरा मन उसी की ओर खींचता जा रहा है। लेकिन मैं तो एक डाकिया ठहरा, घर घर डाक बांटने वाला। मेरे मन में किसी लड़की के बारे में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब उस घर में कभी नहीं जाऊंगा। घर के अंदर जाऊं या कोई अर्ज नहीं, नीला को मैंने अभी अभी कहीं बाहर जाते देखा है। मैं तो शिवकामी अम्माल से मिलना चाहता हूँ, अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो लगता है जैसे अपनी माँ के पास बैठा हूँ। मैं अनाथ कब से अपनी माँ के प्यार के लिए तरस रहा था। माँ जी।
3: कौन? कंद स्वामी, आओ बेटा, बहुत दिनों बाद तुम्हारी आवाज सुनाई दी है।
4: माँ जी आज आपके लिए कोई चिट्ठी नहीं है।
3: अरे अगर चिट्ठी नहीं है तो तुम अपनी माँ से मिलने ही नहीं आओगे, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ ना।
2: है ये खांसी, आप लेटी हुई क्यों हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
3: कल रात से सिर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, साथ ही कुछ खांसी बुखार भी है।
2: मैं आपका सिर दबाता हूँ। नहीं नहीं पहले मैं जाकर डॉक्टर को बुलाता हूँ।
3: डॉक्टर सवेरे आया था, कुछ गोलियां दे गया था, बाकी दवाई
2: मैं लाता हूँ। दवाई?
3: नहीं नहीं, नीला नुस्खा लेकर डॉक्टर की दुकान पर गई है। तुम इतने दिनों से क्यों नहीं आए? मरने से पहले मैं तुम्हें।
2: ये आप क्या कह रही हैं माँ जी, मामूली खांसी बुखार है, आप जल्दी ठीक हो जाएंगी।
3: बेटा तुम्हारी भावना को मैं समझती हूँ, तुम्हें मैंने अपना दूसरा बेटा मान लिया है।
2: माँ आप जैसी माँ को पाने के लिए कई जन्मों तक पुण्य कर्म करने चाहिए, आज मैं कितना खुश हूँ, अब मैं अनाथ नहीं हूँ।
3: अरे खुश तो मैं हूँ जिसके एक नहीं दो बेटे हैं, जरा जरा मेरे पास आओ।
2: लो माँ

के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद अभी आप सुन रहे थे, पोस्टमैन। इस नाटक का पहला भाग हमने आपको सुनवाया। हिंदी अनुवादक थे P.S. कृष्णस्वामी और निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। आकाशवाणी उदयपुर की प्रस्तुति अभी आप सुन रहे थे। आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाल पिकलाय आंबा, आला बाय पाडाल पिकलाय हो नीट बघ पाडाल पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: हो पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का पहला भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारती के दर्शकों को, मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार। और आज यहाँ पे आने का मुझे मौका मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं हमारे सुनने वालों से जुड़ जाऊंगी। हालांकि 25 साल प्रोग्राम करने के बाद बहुत सारे लोग, मतलब जो आके बोलते हैं आपका शो देखा, मुक्त इतने साल पहले आपका शो देखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और उससे ज्यादा खुशी आज यहाँ आने से मुझे मिली है कि और दर्शकों तक मैं पहुंच जाऊंगी और गाने भी पेश कर पाऊंगी।
2: क्या बात है,
3: बहुत बहुत शुक्रिया।
2: प्रमिला जी, सुनहरी यादें की शुरुआत जब हुई थी, असल में आपके करियर की शुरुआत उससे भी पहले हुई थी
3: जी,
2: तो हम तब से बात शुरू करें
3: जी,
2: कि वो पहला कौन सा मौका था कि आपको फिल्म इंडस्ट्री के लिए गाने का मौका मिला।
3: फिल्म इंडस्ट्री के गाने का, तब के बहुत ही मशहूर संगीतकार वसंत देसाई जी थे, सी रामचंद्र थे
2: जी,
3: उनके पास मैंने मराठी फिल्मों में गाने गाए।
2: हाँ।
3: और फिर थोड़ा सा मेरा नेचर ऐसा था कि किसी के पास जाए और मुझे आप काम दे दे या कोई मुझे गाना दे दे, ये मेरा नेचर नहीं था। तो मेरे हस्बैंड को भी वो मालूम था कि ये ऐसी नहीं बनने वाली। तो एक बहुत अच्छी यादगार है कि मराठी ड्रामा जो हमारे हैं उसमें मुझे काम करने के लिए पूछा गया था, वो प्रभाकर पणशीकर जी हैं, राजा राम शिंदे जी थे। तो मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा कि मैं करूं क्या, तो बोले तेरा मन है तो कर, लेकिन तुम अपना कुछ शुरू करो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो हिसाब से फिर सोचते सोचते भी सुनहरी यादें, फिर नाम क्या रखे।
2: हाँ।
3: तो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे, अभी वो दिल्ली में, उनका नाम नहीं मुझे याद, अशोक जैन करके
2: जी, जी, जी।
3: तो उन्होंने ये नाम का सुझाव दिया कि आप ज्यादातर पुराने गाने लोग पसंद करते हैं, तो आप सुनहरी यादें नाम रखिए।
2: हाँ।
3: बहुत यूनिक और थोड़ा अलग सा है, प्रमिला दातार ऑर्केस्ट्रा, और इससे सबसे पहले ही वो थोड़ा सा अच्छा लगता है नाम, क्योंकि पुराने गाने ज्यादा पेश करने का इरादा था उसमें।
2: वाह वाह
3: जी।
2: तो पहला शो कब हुआ था सुनहरी यादें?
3: पहला शो 1975 14 अप्रैल
2: जी,
3: जो दिन गुड़ी पाड़वा

0: था, हमारे साल शुरू होता है गुड़ी पड़वा के दिन। हाँ, हाँ, तो उस दिन 14 अप्रैल को मैंने पूना के बाल गंधर्व थिएटर में पहला शो किया।
1: क्या बात है
0: जी,
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अच्छा मुहूर्त माना जाता है।
0: मुहूर्त माना
1: जाता,
0: हमारे 3.5 मुहूर्त बोलते हैं अच्छे। हाँ, जिस दिन उनमें पाड़वा बहुत अहमियत रखता है, गुड़ी पाड़वा।
1: क्या बात है
0: जी,
1: ये सिलसिला शुरू हुआ मगर उससे पहले आप मराठी फिल्मों के लिए गा चुकी।
0: हाँ, फिल्मों के लिए गा चुकी हूँ। जैसे मैं कहना अन्ना जी के साथ घरकुल करके पिक्चर था अन्ना जी का, वो हाउस ऑफ बैम्बू मन्नादा के साथ गाना था।
1: हाँ,
0: तो मेरे लिए तो इतना अच्छा मौका था, वो सुवर्ण संधि बोलते हैं कि मन्नादा के साथ मैं गाना गा रही हूँ। वो गाना अभी भी लोग याद करते हैं, पप्पा संगा कुणा से, वो जो गाना है मुझे देखते ही पप्पा संगा, छोटे बच्चे भी पप्पा संगा कुणा। मुझे याद है छोटी सी किस्सा है, मैं अमेरिका गई थी
1: जी।
0: मेरी एक पोती वहां रहती है, मैं छोटी सी थी 4-5 साल की। तो मुझे देख के ऐसे हो गई, तो क्या हुआ उसको, तो बोले हमने उनको बोल दिया है कि पप्पा संगा कुणा से ये आजी ने गाना गाया है। तो वो इतनी खुश हो गई। अच्छा, मुझे बोली अच्छा। तू मेरे लिए गाओगी? तो बोले हाँ जरूर गाओगी।
1: क्या बात,
0: बहुत मजा आया उससे बच्चों से लेकर।
1: तो 14 अप्रैल को जो पहला शो सुनहरी यादें का हुआ
0: जी,
1: तो पहले शो के लिए आपने गीतों की जो फहरिस्त बनाई होगी, लिस्ट बनाई होगी, आपको याद है?
0: इतना सा तो नहीं, लेकिन एक दो मराठी लावणी और पुराने गीतों में वो जो तुम न जाने किस जहां में खो गए, अजीब दास्तां है ये।
1: हाँ,
0: इस तरह के सब पुराने गाने हुआ करते थे उस वक्त।
1: बिल्कुल, तो आपने जितने शो किए हैं उसकी बातें होंगी, बहुत से कलाकारों के साथ आपने टूर्स किए हैं उनकी भी बातें होंगी।
0: हाँ,
1: मगर साथ में आपके पसंदीदा गीतों की भी बात होगी। आप किसी गायिका से ये पूछना कि आपके पसंद का गाना कौन सा है जरा मुश्किल है,
0: राइट?
1: तो फिर भी पहला गाना इस कार्यक्रम के लिए आप कौन सा चुनना चाहेंगी?
0: मैं ऐसे एक नॉन फिल्मी गीत है मुझे। हाँ, वो बहुत पसंद है, वो आज जाने की जिद ना करो।
1: ओह, क्या बात,
0: आई लव दैट सॉन्ग। बहुत अच्छा,
1: अलग अलग गायिकाओं ने अलग अलग मौके पे
0: ऐसे मैं है। मेरे शो में एक मेडली करके एक आइटम पेश कर दी थी। हाँ, अलग अलग गायिकाओं के गाने हुए
1: जी,
0: उसकी
1: जी,
0: झलक।
1: हाँ,
0: उसमें मुबारक बेगम, शमशाद बेगम, रेशमा जी
1: जी
0: और ऐसे सब गायिकाओं के, सलमा आगा गाने, एक एक अंतरा, वो लोग बहुत पसंद करते थे उस आइटम
1: जी। तो आप एक लाइन इसकी गुनगुनाइए।

0: शर्मिला जी, अब आपके बचपन की ओर चलते हैं। बचपन कहाँ बीता?
1: बचपन बहुत, मतलब जैसे मध्यम वर्ग बोलते हैं।
0: जी जी।
1: मेरे पिताजी स्कूल में हेडमास्टर थे, उसी स्कूल में मैं पढ़ी।
0: ये किस शहर की बात हो रही है?
1: बम्बई।
0: अच्छा, मुंबई। मुंबई में?
1: गिरगांव में।
0: गिरगांव
1: में हमारा रहना भी वहाँ था।
0: मुंबई
1: सब चाल थे, सब ऐसे।
0: जी, जी, जी, जी।
1: और वैसे चाल थे, लेकिन पूरा चाल एक कुटुंब जैसा था। किसी घर में कोई कुछ कार्य हो, जैसे पापड़ बेलना, सब
0: मिलकर
1: सब मिलकर काम करते थे। बहुत मजा आता था, लेकिन पूरा एक चाल कुटुंब जैसा था। और सब सब गणपति, दिवाली, सब त्योहार इतने अच्छी तरह से मनाए जाते थे कि जैसे कि लगता था हम सबका एक ही त्योहार है और सब लोग मजे कर रहे हैं। बहुत ही मजा आता था। और जैसे कि मैंने आपसे शुरुआत में कहा, मेरे पिताजी ने बाहर होटल में चार आने की चाय कभी नहीं पी जाके।
0: अच्छा।
1: लेकिन घर में दूध सब सब इतना खाना का माहौल, इतना अच्छा सकस खाना मिलता था घर में। बाहर खाने का उस वक्त इतना सा बहुत शौक नहीं था लोगों को।
0: जी जी।
1: जो घर में बनता था वो ही अच्छा बनता था।
0: हाँ।
1: तो बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं थी, इसलिए कि स्कूल के दिन से मुझे गाने का जो शौक था, मुझे
0: जी जी।
1: गाने तो पसंद थी मेरी। तो हमारे स्कूल में नाश्ता नवरंग करके बहुत ही बड़े अच्छे गुरु के हिसाब से बहुत अच्छे थे।
0: अच्छा।
1: तो उनके क्लासेस चलते थे मेरे स्कूल में।
0: अच्छा।
1: तो इसीलिए जाना हुआ।
0: हाँ।
1: कहने का मतलब यह है कि हम गिरगांव में रहते थे और गिरगांव से दादर भी नहीं भेजते थे अगर दादर में क्लास होता तो।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो बहुत ही स्कूल में था और स्कूल खत्म करके, अपना क्लास खत्म करके घर आ जाए, और घर का स्कूल 5 मिनट का रास्ता था चलने का।
0: अच्छा।
1: तो इसलिए वो सब इतना सुविधाएं थी, तो उसकी वजह से वो हो गया। पहली बार मैं मुंबई से बाहर गई, मैंने SNDT कॉलेज में गई, क्योंकि वहाँ म्यूजिक एक वन ऑफ द सब्जेक्ट्स था।
0: जी जी।
1: तो SNDT कॉलेज में गई तो यूथ फेस्टिवल हुआ करता था। हाँ, दिल्ली में। हाँ। तो यूथ फेस्टिवल में हमारा एक नाटक करके
0: संगीत शारदा। जी जी।
1: तो स्कूल के दिनों में मैंने उसमें कोदंड की भूमिका निभाई।
0: अच्छा।
1: मेरी आवाज जरा भारी थी, जाड़ी थी।
0: हाँ, हाँ,
1: तो पुरुष के गायक के लायक थी।
0: अच्छा।
1: और हाइट भी अच्छी थी।
0: जी,
1: तो
0: जी।
1: मैं कोदंड और दूसरी शारदा, फिर मैं कोदंड का रोल किया है, कृष्ण का रोल किया है, नारद का रोल किया है स्कूल में। तो स्कूल
0: की महिला विश्वविद्यालय,
1: महिला विश्वविद्यालय नहीं, वो स्कूल की बात कर रही हूँ। महिला विश्वविद्यालय में हमने वो शारदा नाटक, शारदा का भी एक हल्दी कुंकू जो होता है उसका सीन था।
0: अच्छा।
1: तो वो हमने उधर किया यूथ फेस्टिवल में। तो पहली बार मैं बम्बई छोड़ के अकेली दिल्ली गई यूथ फेस्टिवल के।
0: अच्छा,
1: बाकी फ्रेंड्स वगैरह थे साथ। बहुत मजा आया दिल्ली में, और पहली बार गए थे तो ऐसा क्या देखो और क्या नहीं ऐसा हुआ था।
0: क्या बात है,
1: बहुत मजा आया।
0: उस संगीत शारदा से कोई नाट्य पद जिसकी एक लाइन आप सुना
1: जरूर सके? जरूर।

0: वाह वाह क्या बात है। बिल्कुल, अपने श्रोताओं को हम बताना चाहेंगे कि संगीत नाटक जो हुआ करता था मराठी में महाराष्ट्र के मंचों पर, उसका एक स्वर्णिम युग था और तब स्त्रियां जो है, महिलाएं जो है, भूमिका नहीं करती थी,
1: नहीं करती
0: पुरुष पर, तो पुरुष किया करते थे, जिसके लिए नारायण राजहंस यानी बाल गंधर्व जाने जाते हैं।
1: राइट, राइट।
0: और बहुत से केशवराव भोसले हुए, बहुत से ऐसे कलाकार प्रसिद्ध हुए अपनी उन स्त्री भूमिकाओं के लिए।
1: यहाँ उल्टे मामला हुआ,
0: और मामला उल्टा हुआ, आपने पुरुष की भूमिका इस नाटक में निभाई थी। जीवन में वो कौन सा अवसर था, वो कौन सा समय था जब पहली बार संगीत उद्योग से या फिल्म उद्योग से जुड़ा हुआ एक अवसर आपकी झोली में ऊपर वाले ने डाल दिया?
1: एक तो एक न्यूथ फेस्टिवल का ये था, हम हमारे जब मैंने जो पेश किया उसको बख्शीश भी मिला, प्राइज भी मिला। और बाद में मैं एक फिल्म डिवीजन की छोटी सी वुमेन्स एजुकेशन करके फिल्म बनाई थी उन्होंने, तो उसमें भी मैंने रोल किया था।
0: अच्छा।
1: क्योंकि एक वहाँ के लोग, दो तीन लोग हमारे स्कूल में आए थे शाला में कि किसको मतलब चुना जाए इस रोल के लिए, तो हम 10-12 लड़कियां खड़ी थी, तो उन्होंने मुझे चुना और वुमेन्स एजुकेशन करके एक शॉर्ट फिल्म थी। पहले जमाने में पिक्चर से पहले ये सब फिल्म डिवीजन वाली छोटी छोटी फिल्में दिखाते थे, अभी तो वो मामला बंद हो गया शायद, फिल्म डिवीजन भी चालू है कहीं पता नहीं। तो वो पहला मौका मिलना चाहिए ऐसा कहना चाहिए। फिर बाद में कॉलेज में गई मैं, तो कॉलेज में बीए किया मैंने म्यूजिक लेके, तो म्यूजिक एक सब्जेक्ट था, बाकी और भी सब्जेक्ट थे उसमें बीए तक। और बीए का वो एग्जाम हुआ और इंटर में जब भी मैंने 16 साल की तब शादी हो गए।
0: अच्छा।
1: 42 साल का मेरा जन्म है और 58 को शादी हो गई, 16 साल की। तो 58 को शादी हो गई, फिर मैं ऐसे घर में, तो बीए हो गया, मैं बैठ गई घर में, मतलब अभी 20 साल की मैं हो गई तो पहली बेटी हो गई, तो 1962 में
0: जी
1: उसका बेटी का जन्म हुआ। फिर बाद में इन्होंने ही मुझे कहा, मेरे हस्बैंड ने, कि अभी तुम्हारा गाना इतना अच्छा है, तुम कर रही हो तो क्यों रोकती हो, एमए करो। एमए में इंटायर म्यूजिक था एसएनडीटी में, तो उनकी बदौलत मैं एमए करने के लिए गई। और घर में भी ऐसा सुविधा थी कि मेरी सासू जी थी और बहुत अच्छी तरह से वो, मतलब बेटी घर में हो तो थोड़ा सा मतलब झिझक होती है कि जाओ कि नहीं, तो उस तरफ से कोई मुझे चिंता नहीं थी, कि वो बहुत अच्छी तरह मुझसे भी ज्यादा अच्छा संभालती थी बच्चों को। तो 62 में मैंने एमए किया फिर, और फिर एमए किया और फिर 68 में पहला मौका आया तलत साहब के साथ।
0: अच्छा।
1: तलत साहब के साथ एक नंदी दुगल करके प्रमोटर थे, तो मेरे हस्बैंड लायंस क्लब के मेंबर थे, तो वहां पे मैं इधर उधर एक दो गाने चली, प्रमिला जी आप गाने गाइए, कुछ फंक्शन हुआ लायंस क्लब का, तो नंदी दुगल जी ने सुना मुझे और मुझे आए, उन्होंने पूछे कि आप चलेगी क्या, हमने चलेगी
0: दौड़ते
1: जाऊंगी कूदते जाऊंगी। तो तलत साहब के साथ ये ऐसा अच्छा मौका मिला, 3 महीने का वो टूर था हमारा,
0: क्या बात,
1: और 2 बेटियां, एक 4 साल की एक 6 साल की, लेकिन सासू जी थी तो वो कोई चिंता नहीं थी घर की, मैं बिंदास चली गई और बहुत कुछ सीखने को मिला तलत साहब से। और वेस्ट इंडीज में हम लोग यहाँ कहते हैं कि हमारे जो प्लेबैक बड़े बड़े लेजेंड्स है
0: जी जी,
1: उनका यहाँ इतना नाम था वेस्ट इंडीज में, हमको मतलब देखा वहां जाके कि कोई गाने ऐसे थे तो तलत साहब हमको ये गाना मेरा है ऐसा पूछते, इतना उनको भी याद नहीं थे उनके गाने, ऐसे ऐसे गाने को लोग फरमाइश देते थे। बहुत मजा आया टूर में, उनसे वो सीखने को मिला।
0: तलत साहब को आपने याद किया तो कोई गाना उनका इस वक्त हम सुनाए अपने श्रोताओं को। तलत साहब ने मराठी में भी गाने गाए हैं,
1: मराठी में गाने थे
0: जी जी।

0: लिए।
1: बहुत ही सुंदर सा ये गीत सुजाता फिल्म से अपने श्रोताओं को हमने सुनाया। प्रमिला जी, फिर एक बार सुनहरी यादें के बारे में हम बात करते हैं कि इस शो को लेकर के आप अलग अलग देशों में घूमी हैं।
2: घूमी
1: जी, तो पहला टूर जो था वो किस देश का था?
2: नहीं, सबसे
1: पहले वेस्ट इंडीज के बारे में बताया।
2: ज्यादा तो जी
1: वेस्ट इंडीज आप तलत साहब के साथ,
2: तलत साहब के साथ गए।
1: हाँ।
2: फिर उसी को नंदी दुगल जी थे
1: जी
2: प्रमोटर अगली बार।
1: हाँ, हाँ।
2: तो उन्होंने किशोर कुमार जी के साथ,
1: हाँ हाँ,
2: जाने के लिए। मैंने कहा बाबा भाई, मेरे जीवन में इतना अच्छा मौका और किसको नहीं मिलेगा।
1: जी, जी।
2: तो किशोर दादा के साथ ईस्ट अफ्रीका का दौरा किया हमने, टूर किया।
1: अच्छा,
2: ईस्ट अफ्रीके का।
1: हाँ, हाँ।
2: उनके तो क्या एक किस्से में, सबसे पहले तो मैं बहुत छोटी थी, नाम भी नहीं था, ना तो प्लेबैक गाया हुआ था फिल्मों के लिए। तो उन्होंने पहले ही शर्त डाल के मैं दो गाना डुएट नहीं गाऊंगा।
1: हाँ।
2: मैंने कहा बाबा दादा आप बड़े हैं।
1: हाँ।
2: और आपको कोई बोलेगा नहीं मेरे साथ डुएट गाए। तो मैं अपने गाने गा के, मतलब शो की शुरुआत में पहली एंट्री मेरी होती थी।
1: जी, जी।
2: तो उस वक्त ये गाना बहुत मशहूर था, दम मारो दम। तो दम मारो दम गाना उषा उत्तम जी की रेंज और आशा भाई की रेंज।
1: हाँ।
2: तो दोनों में मैं संभालती थी कैसे भी करके।
1: अच्छा।
2: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो गाना, तो इनवेरिएबली हर प्रोग्राम में वो गाना वंस मोर होता था।
1: अच्छा।
2: दम मारो दम।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
2: तो किशोर कुमार जी मेरे बाद उनकी एंट्री थी
1: जी, जी।
2: तो स्टेज पे आए थे, दम मारो दम ऐसा करते थे।
1: अच्छा।
2: तो वो कहा मैं कहा, फिर भी मुझे मतलब, और बहुत बहुत अस्वस्थ रहते थे उनको, जो मैंने नोटिस हाँ, किया हाँ, उनको
1: जी, जी।
2: इतने बड़े बहुत बहुत ही बड़े सर, सब गायक कलाकार लेजेंड्स हैं, लेकिन शो शुरू होने से पहले जो स्टेज के बाजू में जगह रहती वहां शेर कैसा है, इधर उधर इधर ऐसा घूमते हैं, बहुत अस्वस्थ रहते थे।
1: जी, जी।
2: और उनका अब्दुल था मैन फ्राइडे, वो अब्दुल मेरा टॉवल का है, अब्दुल मेरा ये का है, अब्दुल मेरा। और एक बार स्टेज पे गए छूट गए फिर। मेरी ये नसीब में इतना अच्छा है थे कि आपने तीन चार गाने गा के
1: हाँ।
2: इन लोगों को सामने से सुनते बैठू।
1: हाँ हाँ।
2: बहुत ही भाग्य था मेरा इस बारे में। रफी साहब को
1: किशोरदा ने फिर मंच पर कोई ड्यूएट आपके साथ?
2: ड्यूएट नहीं गाया,
1: नहीं गाया। अगर किशोरदा को याद करने के लिए कोई गीत हम सुने तो कौन सा होगा वो?

0: कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और लोगों ने क्या कहा जब आपने मंच पे?
1: लोगों ने बहुत नाम भी रखे क्योंकि ये क्या है,
0: मतलब टीका टिप्पणी की, आप जो
1: टीका टिप्पणी की,
0: जी, जी, जी, जी।
1: वो मेरे लिए अच्छी थी, साबित हुई। उसकी वजह ये है कि लोगों टीका टिप्पणी मतलब ये, अब 3 घंटे स्टेज पे खड़ा होना, कंपेयरिंग मैं ही करती थी।
0: अच्छा,
1: खड़ा होना, गाने गाना, फिर बाकी सब म्यूजिशियन को संभालना, ये भी बातें आती थी उसमें।
0: जी, जी।
1: तो ये जिनको मालूम नहीं है कि इसमें किसने कष्ट है या इसमें कितनी कठिनाइयां हैं, तो लोग क्या, हाँ वो दूसरे के गाए हुए जो पॉपुलर गीत है वही गाती है।
0: अच्छा,
1: हाँ, मतलब अपना कुछ नहीं, ये उनका शायद रोक होगा, मुझे पता नहीं। लेकिन फिर उसमें मैं किसी की नकल नहीं कभी करती थी। लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मैं अपने ढंग में। फिर अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं कि अभी मैं एक पिछले 4 साल से
0: जी।
1: लोगों ने कहा कि अब तू खाली बैठे बैठे क्या कर रही हो, इतने सालों से शोध बंक के, इतने साल हुए कि कुछ करो, कुछ लिखो, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस कितने होंगे जो 25 साल के टूर किए या प्रोग्राम किए। तो मुझे उससे ये मिल गया कि सूचना कि कुछ तो करना चाहिए अभी बैठ के नहीं का। तो मैंने अपना ये लिखना शुरू किया, एक छोटा छोटा एक्सपीरियंस जो मुझे बहुत सारे दरमियान आए थे, तो वो शुरू किए। बाद में वो किसी ने बोला वो दिख रही हो तो एक गाना भी गाओ ना साथ में।
0: अच्छा,
1: मेरी सब सहेलियां मेरे सब, तो सिर्फ हारमोनियम के साथ मैं गाने गा के भेजती हूँ। रोज सुबह मेरा ये काम होता है।
0: क्या बात है,
1: कुछ लिखा हुआ, कभी कभी नए लोग भी जुड़ जाते हैं
0: सोशल मीडिया पे।
1: तो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे मैं सबको शेयर करती हूँ।
0: क्या बात है।
1: हाँ।

0: मुझे एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिलता है इसके जरिए कि कोई भी गाना हो
1: हाँ।
0: वो तुम तुम्हारा करके गाती हो
1: हाँ।
0: वो प्रमिला दादान का गाना लगता है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि लता बाई जो रेंज में गाती है मेरी आवाज नहीं जाती, आशा बाई जो रेंज में मतलब उनके सबके रेंज में, अभी उम्र के हिसाब से भी पहले मैं उनके रिकॉर्ड के स्केल में गाती थी पहले
1: जी,
0: गाने
1: जी।
0: अभी नई आवाज जाती है, काली एक, काली पांच, काली एक तक जाती, तो मैं अपने हिसाब से वो गाना गाती हूँ ना, थोड़ा सा मैं अपनी वैरायटी करती हूँ जो मुझे ज्ञान मिला है क्लासिकल म्यूजिक का। तो इसलिए लोगों ने ये कहा तो मुझे बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट लगा कि तुम जो गाना गाती हो तुम्हारा हो जाता है, क्योंकि मेरे स्टाइल में वो मैं गाती हूँ। ये मुझे कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगता है और वो उसका मेरा उत्साह और बड़ा करीब करीब मैंने 700 गाने रिकॉर्ड करके हारमोनियम पे से
1: क्या बात है
0: भेजे।
1: अच्छा।
0: कभी कभी अगर फास्ट गाना हो तो तबला मशीन साथ में लेके उसके
1: जी,
0: साथ
1: जी,
0: गाए, लेकिन बहुत सारे गाने मैंने ऐसे ही गाए, बजाता है मुझे भी अच्छा लगता है।
1: तो इसमें आपने किसी नए सिंगर का गाना गाया हो ऐसा भी हुआ?
0: नए में मुझे नहीं याद आता है, अलका याग्निक का एक गाना गाया शायद, अलका याग्निक का।
1: अच्छा,
0: मोह मोह के धागे,
1: मोह मोह के धागे दम लगा के रहेशा, इस फिल्म
0: दम लगा के रहेशा उसका
1: गीत, लेकिन आपने ट्राई किया है, आप पे गाया है
0: मोह मोह के,
1: तो और इसकी एक झलक हमारे श्रोताओं को।

0: आप जब सुनहरी यादें में गीतों का चयन करती थी कि आज मंच पर ये गीत हमें हाँ। प्रस्तुत करना है, तो अलग अलग गायिकाओं के गीत
1: जी,
0: उस हर गीत को अपने ढंग से अपनी तरह से गाना है, ये आपका हमेशा से रवैया रहा है
1: क्या? नकल नहीं किसी,
0: नकल किसी की नहीं, यानी मिमिक्री नहीं,
1: मिमिक्री नहीं।
0: अच्छा,
1: अपनी गीता दत्त के गाने बहुत मुझे पसंद।
0: लेकिन आशा जी का गाना है तो उसको आशा जी के अंदाज, आपको अपने अंदाज में भी गाना है?
1: तो अंदाज लहजा थोड़ा आता ही था,
0: आता ही था,
1: क्योंकि ओरिजिनल उन्होंने गाया हुआ है, मतलब शब्दोच्चार या कोई हरकत या कोई मुर्की या उनकी तरह से, तो वो आता ही था अपने आप से,
0: अपने आप,
1: नॉट नकल करने का हिसाब से नहीं आता था वो।
0: जी जी,
1: क्योंकि इसीलिए मैंने बोला कि अपनी आवाज नहीं जा रही है तो क्यों ये हट, क्यों कि लता जी के रेंज में ही मैं
0: गाऊं,
1: ऊपर जाके फिर वो आवाज डबल हो जाएगी, उसके बदले अपने जिसमें तुम कंफर्टेबल हो
0: उसी रेंज में
1: गाओ ना, वो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, ये नए गाने सीखने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है।
1: ऐसा लगता है कि मैं अनुभव से ये कह रही हूँ।
0: जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अनुभव,
1: क्योंकि आजकल वो जो कैरियो के जो प्रकार आया है ना,
0: जी जी,
1: आई हेट दैट, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं भी गाता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ सीखो अच्छी तरह से, तालीम पाओ, और इतना आसान नहीं है, नहीं तो एक ही लता मंगेशकर, एक ही आशा भोसले नहीं होती थी, बहुत सारे निकलते थे गली चौड़े में।
0: क्या बात है, तालीम बहुत जरूरी है, क्लासिकल
1: बहुत ही
0: सीखना
1: बहुत
0: कितना जरूरी है आपको लगता है?
1: बहुत, पहले 3-4-5 साल तो, फिर साइड बाय साइड तुम गाते रहो लाइट म्यूजिक
0: जी,
1: लेकिन आवाज की तैयारी, जो हरकतें मुरकते, फिर अपने गले से नहीं है तो कोई अपने हिसाब से लेता है, दैट इज नॉट, मैं अलग गाती हूँ वो बात अलग है, ओरिजिनल उनका गाके फिर मैं जो मेरा मेरे हिसाब से करना होता है कुछ जो वैरायटीज वो करती हूँ, बहुत सारे गाने ऐसे उसमें मैं करती हूँ, लेकिन उसके लिए पहले उनके जैसा गाओ, मतलब वो जो हरकत है वो ऐसी ही आनी चाहिए,
0: जो ओरिजिनल है पहले वो तो गाओ।
1: हाँ। नकल नहीं आती उसमें, लेकिन उसमें आवाज की तैयारी भी हो जाती है, और वो हिसाब से बहुत जरूरी है, आवाज अच्छी है मैं भी गाती हूँ वो गाना नहीं होता ऐसा मुझे लगता है, पता नहीं अभी।
0: बिल्कुल सही।
1: तो ये जो बड़ों बड़े जो ने पूरी जिंदगी अपनी गवाई तपस्या में,
0: जी जी,
1: वो क्यों करते थे इतना?
0: बिल्कुल
1: ऐसे ही गाते थे ना।
0: सही बात, बिल्कुल सही। मन्नता की बात करते हैं, आपने पहला गाना मराठी में उनके साथ रिकॉर्ड किया, संगीतकार थे श्री रामचंद्र। तो मन्ना दा को किस तरह से आप याद करना चाहेंगी? आपने उनके साथ शो भी किया?
1: एक शो किया बड़ौदा में।
0: अच्छा,
1: बड़ौदा में मन्ना ने मुझे एक, मतलब एक उनको मैंने पूछा था कि मेरी प्रॉब्लम थी कि हम लोग बड़ौदा में बाय ट्रेन जा रहे थे, तो मेरी आवाज में वो जो मॉड्यूलेशन होता है जो लाइट म्यूजिक के लिए बहुत ही जरूरी है,
0: जी, जी।
1: क्लासिकल में आप प्लेन सुर लगाओ और वही सुर अगर आप लाइट में गाते हो तो उसमें मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी है, तो फ्लैट लगेगा और भाव नहीं आएंगे उसमें, तो मेरी आवाज में नहीं था, किसी के आवाज में जाता होता है किसी के आवाज में, तो मैंने मन्ना दा को पूछा कि मन्ना दा ये कैसा लाने का अपने आवाज में, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से मुझे बताया कि एक सुर लगाओ और उसमें अच्छा ऐसे आघात करते जाओ। अच्छा। और मेरे आवाज में अपने आप आ गया वो सब रियाज करके।
0: क्या बात,
1: बहुत ही अच्छा। फिर भी उन्होंने ये भी बोला कि ज्यादा नहीं करना, लेकिन तो कंप होगा तेरे आवाज में बहुत ही। अच्छा। उनका और मेरा जो डुएट है हाउस ऑफ बैम्बू,
0: जी जी,
1: तो ये नॉन मराठी लोग जो उनके च छ झ मराठी का थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक लाइन थी ऐसी वो गाने में, बाम्बू चा वना च झ झ बहुत से बाम्बू चा वना झऱ्याच्या काठी येशील सजणे सजणे माझ्याच पाठी।
0: बिल्कुल, उनके लिए टंग ट्विस्टिंग
1: बहुत बहुत 3 बार हुआ 4 बार हुआ इतने या अन्ना तेरी मराठी भाषा मेरे को नहीं होगा अन्ना बोले डरो डरो डरो मैं कुछ करता हूँ, तो उन्होंने वो नीचे डांट वगैरह देते हैं उनको बराबर
0: करके
1: लाइन में।
0: क्यों ना इस गीत की एक झलक आप सुनवा दे हमें,
1: हाउस ऑफ बैम्बू।
0: जी जी।

0: Number 54, the house of the bamboo door. Number 54, the house. जिसे मॉड्यूलेशन
1: हाँ
0: हाँ कि उसके कम करना उसके ज्यादा फोर्स में गाना वो भी डिपेंड करता है.
1: जी जी जी.
0: Number 54, the house of the bamboo door. बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूचे घर बांबूचे दार बांबूची जमीन पिवळी शार बांबूच्या घरात आहा आहा स्वप्नाचा झुला लला लला झुलवित राहील पापा पापा तुला आणि मला. नंबर 54 है द हाउस ऑफ द बॅम्बू डोर. Number 54, the house of the bamboo door.
1: क्या बात है, बहुत सुंदर.
0: उनका तो क्या.
1: वाह वाह. मन्ना दा अपने क्लासिकल सिंगिंग के लिए ज्यादा जाने जाते हैं.
0: जी जी जी.
1: हालांकि हर गाना क्लासिकल बेस ही होता है.
0: हाँ.
1: मगर प्योर क्लासिकल गाने प्योर जिनको कहा जाए जो लाइट कमर क्लासिकल ज्यादा लगते हैं ऐसे उनके कई गाने.
0: लेकिन दूसरे सिंगरों में भी लक्ष्मी साहब थे क्लासिकल गाने हैं, ऐसी बात नहीं.
1: बहुत से
0: लेकिन उनका जो आवाज में जो ये था दर्द या भारीपन था आवाज में वो उसमें बहुत असर करता था गाने पे, ऐसा मुझे लगता है. मुझे उनका ये गाना बहुत पसंद है, मेरे प्यारे वतन.
1: वाह
0: बहुत अच्छे. थोड़ा सुना था.

0: क्या बात है,
1: बहुत अच्छा। ये गाना गाते वक्त रोना आता है, जो एक अंतरा है, माँ का दिल बनके कभी तू सीने से लग जाएगा, और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता।
0: वाह वाह,
1: बहुत अच्छी
0: लिखावटी गाना।
1: गाने लिखे जाते थे, गाए जाते थे संगीतकार।
0: जी जी जी, प्रमिला जी, इतने शोज आपने किए हैं और बहुत नामचीन कलाकारों के साथ भी आपको मंच पर गाने का मौका मिला है। हम रफी साहब को अभी याद करते हैं, रफी साहब के साथ।
1: रफी साहब तो मेरा सॉफ्ट कॉर्नर है, सॉफ्ट कॉर्नर है उनके साथ बहुत सारे।

0: टूर किए, साउथ अफ्रीका, फिजी, मिडिल ईस्ट, फिर जाम्बिया, मलावी, बहुत टूर किए रफी साहब के साथ। और जो उनसे सीखा है ना, मतलब सिर्फ गाना नहीं, स्वभाव के हिसाब से भी इतने नम्र, और जितना ऊंचा आदमी उतना नम्र स्वभाव। और उनको किसी ने सवाल पूछा है, पत्रकार परिषद थी, कि आप गायक तो मतलब चोटी के है उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन आप साथ साथ थोड़ा कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन में क्यों नहीं आप हाथ अपना आजमाते? तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं जो कर रहा हूँ, मतलब मेरा गाना, उसमें ही मुझे नहीं लगता कि मैं परिपूर्ण हूँ, तो मैं और क्या करूँ, और किसमें हाथ क्यों डालूं?
1: विनम्रता की हद है,
0: हद है, हद है। और इतने नम्र दूसरे अपने साथ में कलाकार, मैं तो उनके सामने बहुत ही छोटी थी, लेकिन जो तारीफ करनी होती है, तो एक दिन मैंने नए नए गाने हम लोग चुनते थे, वो मैंने वो कव्वाली गाई, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, तो उसमें एक तो बड़ी लंबी चौड़ी, उसमें सरगम भी थी, उसमें तान भी थे, तो वो गाया तो लोगों को भी बहुत, साउथ अफ्रीका की याद है
1: जी जी,
0: बहुत पसंद आया लोगों को, वो गाना ही ऐसा है। तो रफी साहब सब लोग बैठे थे, हम प्रोग्राम खत्म हुआ, तो प्रमिला जी आजकल बहुत कठिन कठिन गाने चुन रही है। अपनी तरफ से उन्होंने जो दाद दी है
1: जी, जी क्या बात, वाह वाह,
0: बहुत अच्छा लगा।
1: रफी साहब के इतने सारे गाने हैं
0: जी,
1: मगर उनका कौन सा गाना आपको ज्यादा पसंद है?
0: ज्यादा पसंद नहीं बोलूंगी, सबसे सब पसंद कि ये जो गाना है उनका, तुम जो मिल गए हो,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: जो वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है, वो गाने के लिए थोड़ा चैलेंजिंग भी है, और तुम जो मिल गए हो
1: जी जी,
0: हाँ हंसते जख्म
1: जी जी,
0: तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है,
1: हंसते जख्म फिल्म का जी, बिल्कुल वही सुनते हैं।

0: तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है, ऐसा कब किसी ने आपके लिए कहा?
1: जो मैंने कहा 16 साल की थी जब ही उनके मिलने के बाद जहां ही मिल गया,
0: क्या बात है,
1: क्योंकि माय हस्बैंड उनके लिए बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं जो कर रही थी उनमें मैं 5% कर रही थी, 95% उनका सहयोग।
0: क्या बात,
1: बहुत। एक छोटा इंसिडेंट बताती हूँ, उनके पूरे आयुष्य में उन्होंने बहुत बहुत सर्जरीज हुए, उनके 5 मेजर सर्जरीज, उसमें 2 हार्ट बाईपास, 2 एक मैन्यूरिज्म करके है और 2 किडनी स्टोन की। उस वक्त रेजर वेजर कुछ लाया था, स्टेट फाड़ो जाओ किडनी तक और करो जो। तो ऐसा होके भी एक दिन उनकी अचानक से अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी किडनी स्टोन की, डॉक्टर एस डी बापट करके दादर में है, उन्होंने किया। और दूसरे दिन मुझे टूर पे जाना था, 8 दिन का टूर था, घर में सासू जी थी। लेकिन मैंने बोला नहीं अम्मी, मैं टूर कैंसिल, क्योंकि वह सब अचानक आया, प्रीप्लान तो हमारा टूर था। तो बोला नहीं, मैं कैंसिल करती हूँ, कोई बात नहीं, जो नुकसान होगा वो भर देंगे उनका। और बहुत जल्दी इतला कर रहे हैं तो उनको भी सुविधा हो जाएगी कैंसिल करने की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम कैंसिल नहीं करोगी, तुम जाओ वही नहीं, मतलब हम सासू जी को वही नहीं बोलते थे, वही नहीं मेरे पास है, वो देखेगी, तुम बिंदास जाओ। उस वक्त फोन भी ये भी कुछ नहीं था, तो बीच में प्रोग्राम के बाद ट्रंक कॉल बुक करो, फिर वो आधे पौने घंटे के बाद लगे, तो ऐसे सब होके भी उन्होंने, ऐसे एक इंसिडेंस है, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस हुए जिसमें उन्होंने जो मेरा साथ दिया है,
0: वो
1: दुनिया में किसी हस्बैंड अपनी वाइफ को देगा।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। कितनी भाग्यशाली आप हैं।
1: बहुत बहुत, मैं तो बोलूं आपको हर स्तर में मैं भाग्यशाली हूँ।
0: जी जी, जी।
1: बचपन से गाना सीखने को उत्तेजन मिला, फिर मौके मिलते गए, कंपटीशन में भाग लिए, फिर प्रोग्राम शुरू किए, फिर रसिकों के आग्रह से और रसिकों के मिला मुझे कब साथ मिला, उससे वो चले, बहुत चले, 25 साल तक किए। बीच में ये सब रफी साहब जैसे उनके साथ ये टूर हुए
0: जी।
1: तो मेरा जो एक आयुष्य का आलेख बोलते हैं जिंदगी का, वो चढ़ उतार रहता है, ऐसा बोलते हैं कभी कभी चढ़कर, तो मेरा शुरू से लेकर चढ़ता ही जा रहा है।
0: वाह वाह।
1: इसलिए मैं ईश्वर के भी आभार और बाकी मेरे आसपास जो लोग हैं बाकी के, उनके भी आभार मानने चाहिए कि उनकी सबकी बदौलत ये सब हुआ।
0: क्या बात, परिवार की बात चली है
1: जी।
0: तो आपकी अगली पीढ़ी में
1: मेरी दोनों बेटियां मेरे साथ गाती थी।
0: अच्छा।
1: शो में शुरू से मतलब उन्होंने तब कुछ मेरा ही वक्त हुआ, मैं कंट्रोवर्स कर रही हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि उन्होंने तब कोई सिखा नहीं था गाना, वो छोटी थी दोनों। तो उनका जाते हैं उनके पास मतलब वो हुनर था, तो दोनों मेरे शो में गाती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ, मतलब बाद में बड़ी बेटी की शादी हो गई तो छोटी पे बाहर आ गए,
0: बचपन से ही उन्होंने आपको उन्होंने गाते
1: देखा, देखा तो उन्होंने
0: तो वो भी गाती वो आप...
1: और लोग पसंद भी करते थे, ऐसे नहीं कि कचरा क्यों आए ऐसे ऐसे नहीं। और हम तब तो जब वो बड़ी हो गई तो मैं थोड़ी सी मतलब उनकी जैसी, हम तीनों जैसे, तो किसी ने एक बार स्टेज पे बोला, किसी ने आदमी ने आके बाद में, तुम तीनों बहनें कितनी अच्छी दिखती हो स्टेज पे।
0: क्या बात,
1: बड़ी बेटी एकदम हमारी माँ है, वो हमारी बेटी नहीं, हमारी बहन नहीं, बहन नहीं है।
0: क्या बात है, क्या बात, कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट,
1: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट।
0: जी जी जी। अगर आपसे कहा जाए कि अपने परिवार के लिए एक गाना चुनिए तो कौन सा गीत होगा, आप तीनों ने मिलके जो स्टेज पर गाना गाया होगा?
1: हाँ, हम लोग डुएट भी गाते थे
0: जी,
1: वो
0: जी।
1: मन क्यों बहका रे बहका वो है, फिर कजरा मोहब्बत वाला वो है, फिर अन्ना जी का अपलब चपलब उस पे डाल भी होता था मेरे शो में, ऐसे सब डुएट दो गाने हम लोग ने। तो उसका पैटर्न गाना मेरी बड़ी बेटी का, पंख होती तो उड़ाती रे। फिर उसकी शादी हो गई तो दूसरी ने लिया वो पंख होती तो, लेकिन वो गाना जरूरी था हमारे शो में, बहुत लोगों को पसंद।
0: यही गीत सुनवा दिया जाए श्रोता?
1: अरे बापरे।
0: रामलाल जी का कंपोजिशन है।

ये थी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। आज इस बातचीत का पहला भाग आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। इस कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग अगले हफ्ते।

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकीज।
1: ये है विविध भारती।
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया दे रंगू किया है वहाँ से टेली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
7: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
7: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
8: सुनिए,
7: कहिए, सुनिए एक खुशखबरी।
9: कहिए ना।
7: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार।

को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज पर। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारी आज शाम की सभा में। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों के साथ कार्यक्रम युववाणी।

सूरज ढला तो रंगों ने आसमान सजा दिया, शाम की ठंडी हवा ने हर गम भुला दिया, चाय की खुशबू और यादों का प्यार। इस खूबसूरत शाम को आपका और हमारा नमस्कार।

0: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी, जहां आज आपके साथ है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
1: और मैं चेष्टा। दोस्तों, हम दोनों की तरफ से आप सभी को प्यार भरा
0: नमस्कार।
1: दोस्तों, उम्मीद है आपका दिन शानदार गुजर रहा होगा। लेकिन राहुल, मुझे तुमसे एक चीज पूछनी है कि स्टूडियो में आते ही मैंने एक चीज देखी कि तुम्हारे पास में गिफ्ट रखा हुआ है। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि गिफ्ट किसी स्पेशल के लिए है, किसी का बर्थडे है या कोई खास प्लानिंग चल रही है?
0: मैं भी एक चीज पूछता हूँ चेष्टा, कि प्रोग्राम के बीच में ही तुम्हें ये पूछना था, लेकिन चलो अच्छा है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्यों है और किस लिए है। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, ये गिफ्ट मैं अपनी माँ के लिए लेकर आया हूँ।
1: अच्छा, बहुत प्यारा है, लेकिन आज अचानक मतलब कुछ स्पेशल है क्या?
0: स्पेशल चेष्टा, कल मदर्स डे है और मैंने सोचा ना कि इस बार मैं अपनी माँ को सिर्फ हैप्पी मदर्स डे बोलने के बजाय ना कुछ ऐसा दूं कि जिससे उन्हें ये महसूस हो कि वो मेरे लिए कितनी ज्यादा स्पेशल है, कितनी ज्यादा खास है।
1: वाव राहुल, वेरी थॉटफुल। सच कहूँ तो माँ के लिए प्यार जताने का कोई एक दिन हो ही नहीं सकता, लेकिन मदर्स डे हमें एक मौका जरूर देता है कि हम अपनी माँ को धन्यवाद कह सकें।
0: बिल्कुल, और मुझे लगता है ना कि हम सभी को अपनी जिंदगी में, हम लोग क्योंकि इतने व्यस्त हो जाते हैं ना कि कई बार माँ को ये बताना ही भूल जाते हैं कि वो हमारे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: बिल्कुल सही कहा, माँ तो क्योंकि वो होती है जो खुद तकलीफ में रहकर अपने बच्चे की खुशी का ध्यान रखती है। बचपन में हमें चलना सिखाने से लेकर हर मुश्किल में हमारा हौसला बढ़ाने तक माँ ही हमारे साथ हर जगह होती है।
0: बिल्कुल, और दोस्तों, अगर आप में से भी कोई ये सोच रहा है कि मदर्स डे तो कल है, हम तो भूल ही गए, तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास टाइम है कि आप भी अपनी मम्मी के लिए कुछ ना कुछ तो ले ही सकते हैं।
1: बिल्कुल, जरूरी नहीं है कि आप बहुत महंगा गिफ्ट लें, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आप थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं, एक प्यारा सा ग्रीटिंग कार्ड बना सकते हैं।

0: हैं, उनकी पसंद की चाय बना सकते हैं या वो चीज़ें कर सकते हैं जो उनको पसंद है, या सिर्फ दिल से कह सकते हैं थैंक यू मम्मी, वो भी उनके लिए बहुत बड़ी
1: बहुत
0: बात
1: बड़ी बात होती है।
0: क्योंकि साल भर में बच्चा एक ही दिन बोलता है तो उनको बहुत अच्छा लगता है।
1: क्योंकि सच तो ये है ना दोस्तों, क्योंकि आज हम जो भी हैं, हम जहाँ भी बैठे हुए हैं, उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारी माँ का ही होता है। और वैसे भी कहा गया है कि माँ को ही सबसे पहला जो है गुरु माना गया है। उन्होंने इस दुनिया में लाने के लिए हर मोड़ पर संभाला है हमें, और अपना पूरा जीवन ही एक तरह से उन्होंने हमारे नाम कर दिया है।
0: बिल्कुल, तो इस मदर्स डे पर एक छोटा सा वादा कीजिए अपनी माँ को, सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन सम्मान और प्यार देंगे।
1: बिल्कुल सही कहा। और अगर आपकी माँ इस वक्त आपके पास बैठी हुई है ना दोस्तों, तो उन्हें एक प्यारी सी झप्पी दीजिए और कहिए कि माँ आप ही हमारी दुनिया है।
0: वाह, कितनी प्यारी बात कही राहुल आपने। तो दोस्तों, इस खूबसूरत सी सोच के साथ अब वक्त हो गया है आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने का।
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं युवाणी, जहाँ बात होती है युवाओं की, उनके सपनों की और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई खास बातों की। तो चलिए, माँ की जब बात हुई ही है तो शुरू करते हैं प्रोग्राम को माँ के ही नाम से। और ये पहला गाना आज की शाम का करते हैं हम सभी की और आप सभी की मम्मी को डेडिकेट।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम युवाणी में, जहां आज आपके साथ है आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल,
1: मैं चेष्टा गौतम।
0: दोस्तों, कुछ नाम सिर्फ इतिहास में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में बस जाते हैं।
1: कुछ लोग राज करते हैं और कुछ लोग स्वाभिमान की मिसाल बन जाते हैं।
0: और दोस्तों, अरावली की पहाड़ियों के बीच जहां मिट्टी में भी वीरता की खुशबू बसती है, वहीं पर जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का
1: जिन्होंने कभी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, जिन्होंने कठिनाइयों में भी हार नहीं मानी और जिन्होंने पूरी जिंदगी मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित कर दी थी।
0: जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप की, जिनका जन्म 9 मई 1540 को आज ही के दिन राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था।
1: इनके पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता जयवंता बाई थी।
0: दोस्तों, बचपन से ही महाराणा प्रताप बहादुर थे, स्वाभिमानी थे और निडर स्वभाव के थे।
1: इन्हें युद्ध कला, घुड़सवारी और तलवारबाजी में विशेष प्रशिक्षण दिया गया था।
0: और दोस्तों, महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया था।
1: राहुल, उनका कहना था कि वो अपने स्वाभिमान और मातृभूमि के लिए हर संघर्ष सह लेंगे, लेकिन गुलामी कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
0: क्या बात है, क्या विचार थे। और दोस्तों, कठिन परिस्थितियों में भी महाराणा प्रताप ने यही रणनीति अपनाई कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जंगलों में रहकर संघर्ष करते हुए उन्होंने धीरे धीरे अपने कई क्षेत्रों को वापस जीत लिया।
1: और उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो हालात चाहे जैसे भी हो, अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान को कभी छोड़ते नहीं है।
0: बिल्कुल। और महाराणा प्रताप दोस्तों आज भी वीरता, त्याग और देशभक्ति की सबसे बड़ी मिसाल माने जाते हैं। उनका जीवन हर युवा को ये संदेश देता है कि अगर इरादे सच में मजबूत हों तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। चेष्टा, हमारे राजस्थान के गौरव में कितने सारे ऐसे महान योद्धा है ना, मतलब कभी कभी तो ऐसा प्राउड होता है ना कि हम लोग भी राजस्थानी हैं, या हम लोगों में भी वही खून है जो हमारे योद्धाओं में था।
1: हमारी जो रूट्स है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा होता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरे को ऐसे, हम जब राजस्थान से बाहर जाते किसी अदर स्टेट में, लोग पूछते कि आप कहाँ से हो, तो बोलते ना राजस्थानी, तो इतना प्राउड फील होता है कि हाँ, हमारा इतिहास इतना अच्छा रहा है, कि हमें बहुत प्राउड फील होता है।
0: बिल्कुल। तो दोस्तों, इसके बाद ले चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में, क्योंकि समय हो चला है एक नए गीत से आपको रूबरू करवाने का।

0: दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने कार्यक्रम युववाणी में, और आपके साथ हैं आपके दो रेडियो दोस्त, मैं चेष्टा गौतम
1: और मैं राहुल शर्मा।
0: अब हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक और खूबसूरत पर्यटक स्थल की ओर जहां हर पत्थर एक कहानी कहता है और जिसका नाम है ओरछा।
1: बिल्कुल दोस्तों, वैसे तो कई लोग इसे उत्तर प्रदेश से जोड़ते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के झांसी शहर के बहुत ही करीब है, लेकिन वास्तव में ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है।
0: सही कहा राहुल, ओरछा की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजाओं ने की थी। यहाँ के महल, मंदिर और छत्रियाँ आज भी उस शाही इतिहास की याद दिलाते हैं।
1: और दोस्तों, अगर आप इतिहास प्रेमी हैं तो यहाँ का ओरछा किला आपको जरूर पसंद आएगा। तुम्हें पता है इसकी भव्यता चेष्टा, मतलब वास्तुकलाएं, जो दीवारों पे जो कलाकृतियां बनी हुई है ना, वो बाहर से आने वाले जितने भी पर्यटक है ना, उनमें काफी फेमस है। मतलब बहुत ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाली यहाँ पे कलाकृतियां बनी।
0: अच्छा, और राहुल यहाँ का जो जहांगीर महल है वो तो उनका पर्यटकों का ना बहुत आकर्षण वाला जो स्थल है उसको माना गया है, और कहा जाता है कि इसे मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया गया था। इसकी खिड़कियाँ, गुंबद और नक्काशी बेहद शानदार की गई है।
1: बिल्कुल, और दोस्तों पता है इतना ही नहीं, यहाँ का राजा राम मंदिर जो कि यहाँ की पहचान है, ये भारत का दोस्तों एकमात्र ऐसा मंदिर है ना जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा की जाती है, और उन्हें ना चेष्टा पुलिस गार्ड ऑन ऑफर भी दिया जाता है।
0: वाह, क्या बात है। और एक बात और बताऊं तुम्हें कि जो प्रकृति प्रेमी होते हैं ना, उनके लिए भी ओरछा किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लाइक पर्सनली मैं एक नेचर एडिक्टेड पर्सन हूँ, तो अगर मैं कहूँ तो मुझे भी वहाँ पे जाना बहुत ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि बतवा नदी के किनारे बैठकर सूर्यास्त और जो सूर्य उदय होता है उसका जो दृश्य होता है ना, वो मन को बहुत ही ज्यादा शांति,
1: बहुत अच्छा होता होगा,
0: शांति पहुंचाता है। लाइक एक तो आप देख रहे हो कि वहां से सनसेट भी हो रहा है और सनराइज भी हो रहा है, तो बहुत ही ज्यादा कहीं पे बैठ के देखो तो अच्छा ही लगता है। लेकिन अगर ऐसी जगह पर जहाँ पे प्रकृति की इतना सुंदर जो है दिया गया है, तो वहां पर उसको देखने का
1: क्यों नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों अगर आप भी ऐसी जगह पे घूमना चाहते हैं ना जहाँ इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता तीनों का अद्भुत मेल हो, तो ओरछा आपकी अगली यात्रा का बेहतरीन एक चॉइस, एक विकल्प हो सकता है दोस्तों। और दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ ना चेष्टा कि अब गर्मी की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है, जैसा कि हो ही गई है ऑलमोस्ट, तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कि जाना चाहिए, लोगों को स्टार्ट कर देना चाहिए जाना। तो दोस्तों अगर आपकी लिस्ट में भी यहाँ ओरछा का नाम नहीं है तो आप जरूर अपनी लिस्ट में इसे ऐड करें, और अब दीजिए अपने सफर को एक नया रंग और निकल पड़िए ओरछा की तरफ। फिलहाल हमारे दोस्तों को
0: चलते हैं आपको गीत संगीत की दुनिया में, और अगली बार फिर मिलेंगे भारत के किसी अनोखे पर्यटक स्थल के साथ। अभी बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको गीत।

0: दोस्तों आप कार्यक्रम युववाणी सुन रहे हैं आपके अपने दो रेडियो दोस्त मैं चेष्टा गौतम
1: और मैं राहुल शर्मा
0: के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बेहद ही खास दिन की, यानी कि जो है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस।
1: चेष्टा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ पक्षी जो होते हैं ना, वो हर साल हजारों किलोमीटर का सफर क्यों तय करते हैं? जब आज टॉपिक आया है ना, आज विषय आया है, तो मैं सोचता हूँ ना कि आज इसी पे बात करते हैं, थोड़ी सी बात तुम्हारी भी नॉलेज थोड़ी सी चेक करते हैं।
0: बिल्कुल, क्यों नहीं। देखो जब ना मौसम बदलने लगता है भोजन की तलाश में और सुरक्षित प्रजनन के लिए, जो बहुत सारे बर्ड्स होते हैं ना, वो एक देश से दूसरे देश तक की उड़ान भरते हैं, और इन्हीं जो पक्षी ये जो यात्रा करते हैं ना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रवासी पक्षी कहा जाता है।
1: वाह, मतलब
0: ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं।
1: तुमने बिल्कुल सही पढ़ा है। और उनकी यात्रा पता है आसान नहीं होती है बिल्कुल भी, मतलब उन्हें बहुत सारी जो है ना प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है पूरे रास्ते में, जैसे कि हवाएं, प्रदूषण, जंगलों की कटाई और

0: बदलता पर्यावरण, मतलब उनके लिए ना बहुत सारी चुनौतियां एक तरह से सामने देखने को मिलती
1: है। अगर इतना लंबा सफर कोई इंसान तय कर रहा है तो उसके लिए तो मुश्किल है। मुझे तो ऐसा लगता था कि पक्षियों के लिए तो कितना आसान होता होगा,
0: जबकि इंसान के पास फैसिलिटीज होती है। मतलब वो चाहे तो कार से भी सफर कर सकता है, वो चाहे तो ट्रेन से भी सफर कर सकता है, वो चाहे तो एयरप्लेन से भी सफर कर सकता है।
1: बट जैसे कि अभी आप बता रहे हो कि उनको बहुत परेशानियां होती है, तो ये चीज लाइक जो और भी ह्यूमन बींग्स है उनके दिमाग में भी नहीं आता कि उनको इतना पॉल्यूशन ये सब चीजों का सामना करना पड़ता होगा।
0: और ये हम ना कनेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग सपोज हम लोग क्या एक देश से दूसरे देश की यात्रा पैदल कर सकते हैं?
1: बिल्कुल भी नहीं। मैं तो क्या बताऊँ, अगर हम ट्रेन से भी अगर एक दिन का सफर तय करते हैं तो उसमें हमारी हालत क्या हो जाती है?
0: उसी में हम लोग बोलते हैं कि थकान हो गई है, बहुत ज्यादा थक चुके हैं।
1: वही तो उनकी हालत क्या होती होगी वो तो वही जानते हैं।
0: वही दोस्तों, भारत में भी हर साल साइबेरिया और दूसरे देशों से इसी तरह से कई सारे खूबसूरत पक्षी आते हैं, जिनमें फ्लेमिंगो, साइबेरियन क्रेन और बार हेडेड गूज, ये जो है ये कॉमन एक प्रजातियां होती है जो देखने को मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा, और यही कारण है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, ताकि लोग पक्षियों और उनके आवासों की सुरक्षा के प्रति जागरूक हो सके। और इन पक्षियों को देखना सचमुच प्रकृति का अद्भुत उपहार है। लेकिन अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो शायद आने वाले समय में ये पक्षी हमें कहीं ना कहीं शायद दिखाई ना दे, हो सकता है ना ऐसा।
0: मुझे सुन के ही बहुत मतलब दुख वाली चीज हो रही है फील, पर चेष्टा हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम अपने श्रोताओं को बताएं तो वो भी हम जागरूक हों थोड़ा सा इस चीज को लेके, तो हमारे श्रोताओं को ये भी बताओ।
1: वैसे तो ये ना बहुत ज्यादा नॉर्मल चीज है जो हम कर सकते हैं और बहुत आसान सी है, जैसे कि पेड़ लगाना, जल स्रोत को साफ रखना, यानी कि जैसे कि बाहर कोई पानी भर के रखता है ना, अब हो सकता है कोई कोई है ना उसको डेली क्लीन ना करता हो, तो हफ्ते में चलो डेली ना बट हफ्ते में दो बार तो आप क्लीन कर ही सकते हो। लाइक आप खुद की मटकी भी डेली मांजते हो तो हफ्ते में तीन बार आप उनके लिए भी क्लीन कर ही सकते हो।
0: मैंने देखा है यार, मतलब ये चीज तो हर जगह होती है ना कि एक दिन का जोश सबको होता है कि हाँ पानी रखना है ही रखना है, बट उसको उसका मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है कि उसको रोज साफ करना, उसकी सफाई करना, क्योंकि वो लोग भी मतलब जीवन
1: है
0: उनके अंदर,
1: हमारे अंदर जीव है वैसे उनके अंदर भी।
0: बिल्कुल, जब अगर हम गंदा नहीं पी सकते तो उन्हें हम कैसे गंदा पिला सकते हैं।
1: और जैसे कि ना प्लास्टिक है उसका कम से कम इस्तेमाल करें, ज्यादा उसको यूज ना करें,
0: तो बिल्कुल जहर है बिल्कुल प्लास्टिक तो।
1: और पक्षियों को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं उनसे बचने का पूरा प्रयास करें।
0: और दोस्तों साथ ही बच्चों और युवाओं को भी प्रकृति और पक्षियों के महत्व के बारे में मुझे लगता है बताना चाहिए, क्योंकि ना ये जो युवा है वही हमारी आने वाली पीढ़ी है। अगर ये जागरूक रहेंगे, बच्चे जागरूक रहेंगे ना इस चीज को लेकर, तो मुझे लगता है ना एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज हमें देखने को मिलेगा इस दिशा में।
1: और जैसे कि जब बच्चा बालक रूप में होता है ना, तब से अगर उन्हें ये सब चीजें सिखाने लग जाए तो बड़े होकर एक तो वो जागरूक नागरिक बनेंगे, इसके अलावा उन्हें उनको मतलब समझ आएगा कि कैसे चीजें वर्क करती है, उन्हें हर हफ्ते में तीन बारी क्लीन करना चाहिए जहाँ पे वो पानी भरते हैं। लाइक हाँ हम करते हैं कि उनको दाना डालना, पानी पिलाना, बट जिसमें हम पानी पिला रहे हैं वो भी तो क्लीन होना चाहिए ना। तो ये सब हैबिट अगर आप बच्चे को बचपन से सिखा रहे तो उसमें कहीं ना कहीं वो डेवलप होगी। और क्योंकि जब पक्षी सुरक्षित होंगे तभी हमारा जो पर्यावरण है वो संतुलित रहेगा।
0: बिल्कुल सही बात कही। तो दोस्तों आइए इस विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर हम सब मिलकर ये संकल्प लें, और चेष्टा तुम भी हमारे साथ संकल्प लो।
1: हाँ, बिल्कुल, मैं तो हुई आपके साथ,
0: कि प्रकृति और पक्षियों की रक्षा करेंगे, क्योंकि उनकी उड़ान में ही ना प्रकृति की मुस्कान छुपी है। प्रकृति से प्यार करेंगे और पक्षियों की रक्षा सदैव करेंगे। तो दोस्तों इसी संदेश के साथ ले चलते हैं फिर से एक बार आपको गीत संगीत की दुनिया में, और सुनाते हैं आज की शाम का ये अगला गाना।

0: हमारे जो दादी नानी के जो टाइम हुआ करता था उसमें ये बीमारियां नहीं होती थी, मतलब
1: बिल्कुल
0: हम लोग
1: नहीं
0: सुनते
1: होती
0: भी नहीं
1: थी।
0: थे।
1: हाँ, और आजकल तो क्या, जैसे कि लाइफस्टाइल को देखते हुए भी हम कह सकते हैं कि लोगों को ना हार्ट अटैक के चांस बढ़ रहे हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा ही हो गया उसको भी आ जाता है, बड़ा हो उसको भी आ जाता है। तो पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप कह नहीं सकते कि इस एज में वो चीज़ होगी। कोई भी किसी भी परेशानी से या बीमारी से कभी भी जूझ सकता है।
0: ये तो बिल्कुल सही बात बोल रही हो तुम। और आज हम इसी विषय पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं, किसी
1: हाँ,
0: बीमारी से रिलेटेड ही। तो बताओ आज हम अपने श्रोताओं को किस बारे में बताएं?
1: आज हम हमारे श्रोताओं को विश्व थैलेसीमिया दिवस के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये भी एक गंभीर बीमारी है जो कि मतलब इसके जो सिम्टम्स है ना वो लोगों को समझ नहीं आते आसानी से।
0: मतलब आज विश्व थैलेसीमिया दिवस है तुम्हारे अकॉर्डिंग, तो
1: हाँ।
0: चेष्टा सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताओ कि ये थैलेसीमिया क्या होता है।
1: राहुल, थैलेसीमिया एक अनुवांशिक यानी वंशानुगत रक्त रोग है। इसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, जिससे मरीज को बार बार खून चढ़ाने की जरूरत पड़ती है।
0: अच्छा, यानी कि ये बीमारी तुम कहना चाह रही हो कि जन्म से ही होती है, मतलब इसमें ऐसा नहीं होता है ना कि ये किसी से फैलने, छू के फैलने वाली बीमारी।
1: हाँ, ये वैसी नहीं है कि कोई किसी को टच करे और उसको हो जाए। ये जन्म से ही आती है इंसान में, और अगर माता पिता दोनों थैलेसीमिया माइनर हो तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: अच्छा, तो क्या इससे बचाव संभव है?
1: बिल्कुल है, अगर शादी से पहले और गर्भ अवस्था में थैलेसीमिया की जांच करवाकर इस बीमारी से काफी ज्यादा हद तक बचा जा सकता है, और जागरूकता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है कहा जाए तो।
0: और मैंने ये सुना है ना कि दोस्तों थैलेसीमिया जो बीमारी है इसमें पीड़ित लोगों को नियमित रक्तदान की जरूरत होती है, और ऐसे में जो रक्तदान है वो किसी के लिए जीवन भी अमृत भी साबित हो सकता है।
1: बिल्कुल हो सकता है, सही कहा राहुल। एक छोटा सा रक्तदान किसी बच्चे की मुस्कान और किसी परिवार की उम्मीद बन सकता है।
0: बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं ना जिनके पास कोई नहीं है, मतलब उनका सपोर्ट सिस्टम कोई भी नहीं है, तो उनके लिए तो ये एक तरह से
1: बहुत ज्यादा वो वाली बात हो जाती है, कुछ मिल जाए तो उनको। जैसे किसी की माँ है, अगर वो इससे गुजर रही हो तो उसके बच्चे के लिए क्या होता है कि मेरी माँ बच जाए। अगर कोई माँ है उसका बच्चा इस चीज से जूझ रहा हो तो उसको क्या होता है कि मेरा बच्चा बच जाए। तो कहीं ना कहीं वो दोनों के लिए काफी
0: ब्लेसिंग्स भी बहुत मिलती है इस चीज से। और साथ ही
1: समाज में इस बीमारी को लेकर फैली हुई जो गलत फहमियां है वो दूर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि थैलेसीमिया कोई छूने से नहीं फैलती, ये एक वंशानुगत बीमारी है।
0: और दोस्तों आज के दिन ये आप भी, मैं कहता हूँ ना, ये संकल्प लें कि जागरूकता फैलाएं, समय पर जांच करवाएं, कभी भी ना किसी भी छोटी सी चीज को भी आप लाइटली ना लें।
1: हाँ।
0: और जरूरतमंद की मदद करने के लिए रक्तदान जरूर करें, क्योंकि सही जानकारी और सहयोग से ही हम थैलेसीमिया के खिलाफ लड़ाई को मजबूत बना सकते हैं। और आखिरी में यही संदेश देंगे कि स्वस्थ रहें, जागरूक रहें।
1: बिल्कुल, अभी बढ़ते हैं हम कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको एक और गीत।

0: चेष्टा, तुम्हें नहीं लगता कि हमारे देश में रोज कितने ही लोग बीमारियों से अपना दम तोड़ देते हैं?
1: वो तो
0: मतलब
1: है।
0: बहुत से लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है ना कि वो किस बीमारी से जूझ रहे हैं। और ये टाइम मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मरने वाले लोगों की संख्याएं बहुत बढ़ती जा रही है। मतलब अभी तुम देखो कि पता ही नहीं चल रहा है इंसानों का कि कब कितनी कम उम्र में। हाँ, मतलब बहुत सारी
1: आजकल क्या है, बहुत सारी डिजीज बढ़ गई है और मतलब बहुत सारे ना रोग हो चुके हैं जो कि पता भी नहीं है डॉक्टर्स को कि यही चीजें भी होती है।
0: और मतलब ऐसी ऐसी बीमारियां सामने आती है ना कि हमें उनके नाम भी नहीं सुने होते हैं। मतलब डॉक्टर से जब सुनते हैं ना तो पहली बार में ऐसा लगता है कि यार
1: क्या ही है
0: ये बीमारी, तो हमने कभी सुनी ही नहीं। और देखा ना कि

0: दोस्तों, जैसे कि संवाद में हमने आपको महाराणा प्रताप जी के बारे में बताया था, तो वीरता और स्वाभिमान की प्रेरणादायक कहानी को जानने के बाद अब समय है इतिहास के एक और ऐसे महान व्यक्तित्व की ओर बढ़ने का।
1: जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नॉलेज कॉर्नर की तरफ, जहाँ हम जानेंगे आज गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में, जिन्होंने दोस्तों तलवार नहीं उठाई लेकिन अपने विचारों और जान से पूरे देश को नई दिशा दी।
0: बिल्कुल दोस्तों, कुछ लोग अपनी ताकत से इतिहास बनाते हैं और कुछ लोग अपनी सोच और शब्दों से पूरे समाज को बदल देते हैं।
1: और दोस्तों, आज के हमारे नॉलेज कॉर्नर में भी हम गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में बात करेंगे, जो कि एक समाज सुधारक भी थे और एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे,
0: जिन्होंने भारत को सिर्फ आजादी का सपना ही नहीं दिखाया बल्कि उसे सपने को सही दिशा भी दी थी।
1: दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी का जन्म सन 1866 को आज ही के दिन 9 मई को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था।
0: ये बचपन से ही पढ़ाई में अच्छे थे और शिक्षा को समाज में बदलने का सबसे बड़ा माध्यम मानते थे।
1: और दोस्तों, साधारण से परिवार से होने के बावजूद भी इन्होंने बहुत कठिन मेहनत की और ज्ञान के दम पर समाज में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई।
0: गोखले जी भारतीय राष्ट्र के प्रमुख नेताओं में से एक थे। वे मानते थे कि देश की प्रगति शिक्षा, सामाजिक सुधार और शांतिपूर्ण विचारों से ही संभव हो सकती है।
1: दोस्तों, इन्होंने लोगों को एकजुट होकर देश के लिए काम करने की प्रेरणाएं दी। और दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले

0: जी को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी बोला जाता था और माना जाता था।
1: और गांधी जी ने उनका कहना था कि गोखले जी ने उन्हें देश के समाज को समझाने और समझने की जो है सही राह दिखाई थी।
0: और चेष्टा, तुम्हें पता है 1905 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश की सेवा के लिए ऐसे लोगों को तैयार करना था जो कि
1: हाँ निस्वार्थ भावना से समाज के लिए
0: काम करे। और इन्होंने गरीबों, किसानों और आम लोगों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का भी काम किया और देश हित को सबसे ऊपर उठा रखा था।
1: गोपाल कृष्ण गोखले जी का मानना था कि किसी भी बदलाव के लिए सबसे जरूरी है लोगों को जागरूक बनाना और सही शिक्षा का प्रचलन करना।
0: चेष्टा, तुमने एक बात, एक चीज नोटिस की है कि जितने भी पुराने जो ये समाज से सुधारक हैं,
1: हाँ।
0: ये लोग इतने फेमस हुए हैं, इनके बारे में
1: हाँ।
0: इतनी नॉलेज है, तुम्हें लगता है क्या कि अभी के टाइम पर भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो आगे जाके भविष्य में, मतलब एक एक कहते हैं ना
1: हाँ
0: कि
1: एक अच्छा पॉलिटिशियन बने या समाज सुधारक बने जो अपने देश की प्रगति के लिए
0: मतलब एक
1: कार्य
0: अपना
1: करें।
0: वो अपना अस्तित्व बनाए रखे कि
1: हाँ
0: हाँ मतलब
1: अस्तित्व
0: ये
1: बना
0: कुछ थे, या
1: रखे।
0: इनके बारे में कुछ आने वाली
1: हाँ
0: पीढ़ी इनके बारे में बताए कि हाँ ऐसे भी लोग हुआ करते थे। तुम्हें
1: बिल्कुल
0: लगता है कि
1: हो सकता है। देखो हम कह नहीं सकते एकदम पहले जैसा, तो हम कह नहीं सकते कि वैसे उनका व्यक्तित्व होगा या ऐसे से वो कार्य करेंगे, लेकिन उनसे हटकर कुछ हमें नया देखने को भी मिल सकता है। लाइक वो इतिहास बना सकते हैं, जरूरी नहीं है तलवार वो सब करके, लेकिन एक नई तरीके से वो अपने देश को नई पहचान दे सकते हैं। यू
0: क्योंकि ये
1: नेवर नो,
0: टाइम भी, हाँ
1: यू
0: क्योंकि
1: नेवर
0: टाइम
1: नो।
0: भी नया है। बट तो दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले जी के जीवन से भी हमें यही सीखने को मिलता है कि सच्ची ताकत सिर्फ आपकी शक्ति में नहीं होती, बल्कि आपके ज्ञान में, आपके धैर्य में और आपके अच्छे विचारों में भी होती है। और आज भी इनकी सोच और इनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरणा देते हैं, और उम्मीद है इनके व्यक्तित्व से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।
1: चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनवाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

0: दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर जो कि है करंट अफेयर्स।
1: दोस्तों मई 2026 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC का नया अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है।
0: मई 2026 में भारत का 18वां रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया है, जिसका मुख्यालय विशाखापट्टनम में है।
1: विश्व टेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया, जिसकी थीम मानवता में एकता है।
0: मई 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 से बढ़ाकर 38 की जाएगी।
1: मई 2026 में ITI मद्रास ने अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध केंद्र खोला है।
0: केंद्रीय सरकार ने स्कूली बच्चों में 21 प्रकार की विकलांगताओं की शीघ्र पहचान के लिए प्रशस्त 2.0 ऐप लॉन्च किया है। भारत के पहले AI संचालित ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट पाथ फाइंडर को पिक्सल और सर्वम AI स्टार्टअप द्वारा विकसित किया जा रहा है।
1: मई 2026 में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित हुई है। और दोस्तों इसी के साथ घड़ी की सुइयां हमें इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का। तो दोस्तों आज आपके सफर में आपके साथ थे आपके दो रेडियो दोस्त, मैं राहुल
0: और मैं चेष्टा गौतम।
1: नमस्कार।

युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण अभी आपने सुना। ये आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है। FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए श्रोताओं, अब आप सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार कुछ ही पलों में। प्रतीक्षा की

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमी बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी

0: ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी कोटा बूंदी का ये चंबल चैनल है। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

इश्क सूफियाना गाना, डर्टी पिक्चर से, आवाज़ें कमाल खान की और धुन विशाल शेखर की, गीत के बोल रजत अरोड़ा के। इसी के साथ अगली पेशकश पेश है विशाल मिश्रा और सुनिधि चौहान की सुरीली आवाज़ों में मुन्ना माइकल फिल्म से।

श्रोताओं, यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अगला नगमा अरिजीत की आवाज में, फिल्म जब हैरी मेट सेजल से।

0: सांवरिया फिल्म से शान के सुरों में गीत आपने सुना, संगीत मोंटी का और बोल समीर के।
1: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है, ऐसा ही तो होता है ना।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए, ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब आप सुनेंगे हिंदी और राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी हमारे जयपुर केंद्र से। कुछ ही क्षणों में प्रतीक्षा कीजिए।

0: हर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी। और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर, हमारे स्टेशन्स लाइव। मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: अदबी दुनिया की अजीम शख्सियत और उनके कारनामों से आपको रूशनास कराना, हल्काए इल्म व अदब के सरगर्मियों से हर वक्त बाखबर करना, मुशायरों के जरिए शोराए इकराम के फिक्र फन की बुलंदियों को छूना, अलावा अजीम मुल्की और बैन अक्वामी मामलात, सियासी नजरियात, माशियात और सकाफत पर मुदल्लल मुबाहिसे और इजहार ख्याल, साथ ही अवामी मफादात की तबलीग व तशहीर, जिसका मकसद है वो है आपका अपना डीडी उर्दू चैनल।
2: रेडियो ने कभी सरहदों के दायरे नहीं माने, आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी, कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स, यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल, जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़।

0: बांग्ला और रागम चैनल, साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड और एफएम रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर, यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ
1: हमेशा। नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालतें लगाई गई, जिनमें बड़ी संख्या में मामलों का आपसी सहमति से निस्तारण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा ने उच्च न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में श्री शर्मा ने बताया कि लोक अदालतों में आपसी समझौतों के माध्यम से मामलों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने कहा कि इससे अदालतों का समय भी बचता है और पक्षकारों को त्वरित न्याय भी मिलता है।
1: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें कि लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको कि आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
0: राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की विशिष्ट सचिव रश्मि नवल ने आकाशवाणी को बताया कि इस लोक अदालत में 7.5 लाख से अधिक प्रकरण रेफर किए गए।
2: इसका गठन किया गया और समस्त DLSAs राजस्थान में कुल मिलाकर 482 बेंचेस का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में, और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
0: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि नई न्याय संहिता का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को दंड देना नहीं बल्कि न्याय सुनिश्चित करना है। उन्होंने आज जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में लोक अभियोजकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला में शिरकत की। पत्रकारों से बातचीत में श्री मेघवाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अभियोजकों से नए कानून पर विस्तार से चर्चा की गई और नई प्रणाली को लागू करने में आ रही व्यवहारिक समस्याओं पर मंथन किया गया।
3: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, IPC की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें PP और APP की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
0: कार्यशाला में राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल भी मौजूद रहे। उन्होंने लोक अभियोजकों की समस्याओं को सुना और उनके प्रभावी समाधान पर चिंतन किया गया। इस एक दिवसीय कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांगजन मामलों और नई आपराधिक विधियों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विशेष तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा है कि आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग हमेशा मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय विषय पर 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित

संबोधित कर रहे थे। श्री मसीह ने कहा कि बदलते समय के साथ आधुनिक तकनीक का उपयोग भी जरूरी है, लेकिन उसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने तकनीक के उपयोग में न्याय के हितों का उल्लंघन नहीं करने की बात कही। डॉ भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और सुबोध लॉ कॉलेज की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में देश भर के शिक्षाविदों, न्यायविदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते

शहीदों और शोधार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान अनुसंधान कार्यों को लेकर एक एमओयू भी किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्रीलंका के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस ने न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने आज कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का ये ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, राष्ट्रहित और जनविश्वास की सशक्त अभिव्यक्ति है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में अब उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने आज जयपुर में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी ऑपरेशन थियेटर और ICU जैसे संवेदनशील स्थानों पर लापरवाही बरतने पर संस्थान प्रभारी और यूनिट हेड सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे। श्रीमती राठौड़ ने बताया कि अस्पतालों में संक्रमण को रोकने के लिए नियमित रूप से स्टरिलाइजेशन किया जाएगा। उन्होंने सीनियर डॉक्टरों को ड्यूटी के दौरान अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने और दवाओं के भंडारण के मानकों का पालन करने को कहा। कोटा के न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हाल ही में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की मौत और तबियत बिगड़ने के प्रकरण में राज्य सरकार ने एक चिकित्सक सहित 2 नर्सिंग कर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही UTB पर कार्यरत एक चिकित्सक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। 2 अन्य चिकित्सकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उधर कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज कोटा पहुंचकर अस्पताल का दौरा किया। इस दल का नेतृत्व कर रहे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री परसादी लाल मीणा ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर और लेबर रूम की स्थिति खराब होने के बावजूद भी वहां सर्जरी की गई, जिसके कारण मरीजों में संक्रमण फैला। श्री मीणा ने जिम्मेदार उच्च अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग की। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप का त्याग और स्वाभिमान युगों तक प्रेरणा देता रहेगा। भरतपुर में इस अवसर पर शौर्य यात्रा निकाली गई। शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी इस यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बाद में आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के अदम्य साहस और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डाला। वहीं पाली जिले के जवाली में रैली निकाली गई और रक्तदान शिविर लगाया गया। और अब मौसम। प्रदेश के पश्चिमी जिले भीषण लू की चपेट में हैं, वहीं दक्षिणी पूर्वी हिस्सों में आंधी बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। आज जैसलमेर, बाड़मेर और फलोदी में दिन का पारा 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मापा गया। कुछ अन्य पश्चिमी जिले भी प्रचंड गर्मी की चपेट में रहे। दिन के साथ साथ पश्चिमी जिलों में रात का पारा भी सामान्य से ऊपर दर्ज किया जा रहा है। बीती रात

0: दिन और कहीं कहीं आंधी चलने की संभावना है। इसके साथ में राज्य के अधिकांश भागों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना बनी।
1: प्रदेश में जनगणना 2027 की तैयारियों के तहत कार्मिकों के प्रशिक्षण का दौर जारी है। इसी कड़ी में डूंगरपुर के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रगणकों और पर्यवेक्षकों के तीसरे बैच का 3 दिन का प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। तहसीलदार उज्जवल जैन ने बताया कि ये डिजिटल जनगणना 2 चरणों में पूरी होगी। पहले चरण में 16 मई से 14 जून तक मकानों के सूचीकरण का काम किया जाएगा, जबकि मुख्य जनगणना अगले साल फरवरी में होगी। प्रशिक्षण में मोबाइल ऐप के उपयोग, लेआउट मैप बनाने और स्वगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान प्रगणकों को फील्ड में मोबाइल के जरिए डेटा दर्ज करने का व्यवहारिक अभ्यास भी कराया गया। जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और पीड़ितों को तुरंत न्याय दिलाने के निर्देश दिए हैं। वे आज जयपुर में शहर की कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की समीक्षा कर रहे थे। श्री मित्तल ने विशेष रूप से महिला और बाल अपराधों सहित SC ST से जुड़े मामलों में जल्द अनुसंधान और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस की प्राथमिकता अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास पैदा करना होना चाहिए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आज भूगोल विषय की प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2026 शांतिपूर्वक संपन्न हुई। प्रदेश के 38 जिलों में आयोजित इस परीक्षा में कुल 76.43% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार परीक्षा के लिए कुल 3,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत थे। इनमें से 3,02,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में आज लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालतों में आपसी राजीनामे से बड़ी संख्या में मामलों का निस्तारण किया गया। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा, आधुनिक तकनीक और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय मूल्यों और न्याय के अधीन होना चाहिए। राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में उपचार प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर तेज गर्मी का असर, अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। सृष्टि रचियता जगत पिता ब्रह्मा की पवित्र नगरी और अपनी जायकेदार कढ़ी कचौरी के नाश्ते के लिए प्रसिद्ध अजमेर जिले की चिट्ठी में हम आपको हालिया खबरों, ताजा घटनाक्रम और जिले की मुख्य गतिविधियों के बारे में बताएंगे। चिट्ठी की शुरुआत SI भर्ती परीक्षा 2021 की बात के साथ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने ये भर्ती परीक्षा रद्द कर दी है। ये भर्ती परीक्षा इस साल दोबारा से सितंबर महीने में संभावित है। आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने बताया कि अब केवल वही 3,83,000 अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा दे सकेंगे जो पहले दोनों पेपर में शामिल हुए थे। नए आवेदकों को इसमें अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा पूर्व में भरे गए आवेदन पत्रों में आवश्यक सुधार और अपडेट करने का मौका दिया जा रहा है। संशोधन की यह प्रक्रिया 16 मई से 30 मई तक चलेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और रिक्रूटमेंट पोर्टल देखते रहें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। जिले में इस परीक्षा के लिए 32 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 8,900 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। बोर्ड ने पारदर्शी और सुचारू तरीके से परीक्षा करवाने के लिए सभी केंद्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है। जिले में 16वीं राष्ट्रीय डिजिटल जनगणना प्रक्रिया 2027 शुरू हो गई है। पहले चरण में मकानों का सूचीकरण किया जा रहा है। 1 मई से 15 मई तक नागरिक स्वगणना कर सकते हैं। वहीं 16 मई से 14 जून तक जनगणना कर्मी घर घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे। जिले में जनगणना के लिए मास्टर ट्रेनर्स को CMMS पोर्टल और मोबाइल ऐप के इस्तेमाल संबंधी प्रशिक्षण

0: मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में तापमान के और बढ़ने के आसार हैं।
1: फिलहाल पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो रहे हैं। आगामी 2-3 दिनों में और 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने और पश्चिमी राजस्थान में अगले 4-5 दिन हीट वेव का दौर दर्ज होने की प्रबल संभावना है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी ज्यादातर इलाकों में अगले 2-4 दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इसके अलावा केवल उत्तर पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में 11, 12 और 13 मई को मेघ

0: किया गया। साथ ही जिला प्रशासन ने डिजिटल जनगणना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कई कार्यक्रम किए हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े पिछले महीने अजमेर प्रवास पर रहे। उन्होंने अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई वेबसाइट का लोकार्पण किया। ये वेबसाइट भारतीय ज्ञान परंपरा की आधुनिक दृष्टि विषय पर विकसित की गई है। लोकार्पण समारोह में राज्यपाल ने नई तैयार वेबसाइट की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस वेबसाइट के माध्यम से विश्वविद्यालय की सभी सेवाओं को अधिक सुगम, पारदर्शी और उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया गया है, जिससे विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अभिभावकों को सभी शैक्षणिक जानकारियां तथा पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि विश्वविद्यालय अब जीरो कार्बन कैंपस हो गया है। मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पिछले दिनों एक समारोह में 37 दिव्यांगों को स्कूटी प्रदान की। ये कार्यक्रम अजमेर के वैशाली नगर बधिर विद्यालय में आयोजित किया गया। स्कूटी मिलने से इन दिव्यांगों को जीवन यापन, रोजगार और कामकाज में सहयोग मिलेगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री देवनानी ने 118 जरूरतमंद व्यक्तियों को 5,000 रूपये की आर्थिक सहायता भी दी। बीते महीने जिले को कई विकास कार्यों की भी सौगात मिली। चंद्रवरदाई नगर योजना में 7 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले JNIT नर्सिंग स्कूल का केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी के मुख्य आतिथ्य में शिलान्यास किया गया। साथ ही मानसून के दौरान शहर में जल भराव की समस्या से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विधायक श्री देवनानी के प्रयासों से केसरबाग पुलिया को चौड़ा और ऊंचा करने के काम के लिए राज्य स्तर पर स्वीकृति मिली। वहीं 3 करोड़ रुपए की लागत से पुलिस लाइन नाले का काम भी किया जाएगा। जिले की राजकीय विद्यालयों में बोर्ड परीक्षा 2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 6 बालकों और 16 बालिकाओं को जिला प्रशासन द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समारोह में सम्मानित किया गया। अजमेर जिले की चिट्ठी में बस इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। प्रदेश में आज राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई ची। मोटी तादाद में मामला राजीनामा निपटाई गया। सुप्रीम कोर्ट रा न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह कहो नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी मानवीय मूल्यां और न्याय राधीन काम ले जावनी चाहिए। राज्य सरकार सगला सरकारी अस्पताल में इलाज रा प्रोटोकॉल री कड़ाई पालना करण रा हुकम दीना। और प्रदेश में घन खर्च होना तेज गर्मी रो असर आवता दिना पारो और चढ़वा रा आसार। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। विधिक सेवा प्राधिकरण री ओरू आज देशभर माय साल री दूजी राष्ट्रीय लोक अदालत लगाईची। प्राधिकरण रा सदस्य सचिव संजीव पांडे आकाशवाणी समाचार ने बतायो कि लोक अदालत माय राजीनामा लायक मामला ने सुनवाई करी जावे है। वे कहो कि इन अदालतां रो टेम बचबा सागे पक्षकारा ने तुरंत न्याय मिले है।
2: जो एक्चुअल केसेस में जिसमें की लीगल पॉइंट्स होते हैं वो तो कोर्ट में रिजॉल्व होते ही होते हैं, पर आउट ऑफ द कोर्ट जिनको की आपसी समझाइश के तौर पे विवाद निस्तारण किया जा सकता है उनको हम इन लोक अदालत में लेके आते हैं। जैसे कि हमारे पास MACT के केसेस होते हैं, इंश्योरेंस के मैटर्स होते हैं, फैमिली कोर्ट के डिस्प्यूट्स होते हैं, इवन रेवेन्यू के केसेस, भाई भाइयों के बीच में जो केसेस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस जैसे पेंशन के मैटर्स होते हैं, इन सब के केसेस की रिजोल्यूशन लोक अदालत के माध्यम से की जाती है।
1: राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट सचिव रश्मि नवली आकाशवाणी ने बतायो कि आ लोक अदालत में 7.5 लाख बत्ता मामला सुनवाई सारू रेफर करी गया।
3: माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में, तो तीन का गठन किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच में तीन बेंचेस का गठन किया गया और समस्त डीएलएसएज राजस्थान में 476 बेंचेस का गठन किया गया, मतलब कुल मिलाकर 482 बेंचेस

0: का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया इस संपूर्ण लोक अदालत के लिए पूरे राजस्थान में, और लगभग 7 लाख से अधिक प्रकरणों को रेफर किया गया है पूरे राजस्थान में इस लोक अदालत के लिए।
1: केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कह्यो है कि नई न्याय संहिता रो मकसद सजा देवण री बजाय न्याय दिरावणो है। वे आज जयपुर में राखी जी लोक अभियोजकां री राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहा है। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मेघवाल कह्यो कि कार्यशाला में लोक अभियोजकां सागे नुआ कानूना रे बारा में विगतवार चर्चा करी जी अरवान लागूकरण में आ रही परेशानियां रे बारा में विचार करी जियो।
2: न्यू क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जो चेंजेज आया, आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता आई, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई, इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ, ई प्लेटफॉर्म बने, साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें, उसमें पीपी और एपीपी की क्या भूमिका हो, इसलिए आपने देखा होगा निश्चित रूप से मैं मानता हूं इस वर्कशॉप से अमृत निकलेगा।
1: कार्यशाला में राज्य रा विधि मंत्री जोगाराम पटेली लोक अभियोजकां री समस्यावां सुनी अरमारा निपटारा रा बारा में विचार कीनो। कार्यशाला में साइबर अपराध, दिव्यांग जन नु जुड़िया मामला और नुआ आपराधिक कानूना ने असरदार तरीकाओं लागू करण रा बारा में खास तकनीकी सत्र राखी चिया। सुप्रीम कोर्ट रा जज न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह नवी तकनीक और प्रौद्योगिकी ने मानवीय मूल्या और न्याय रा अधीन काम लेवण मथ जोर दिनो है। वे आज जयपुर में विकसित भारत 2047 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सामाजिक न्याय मुद्दा मथ राखी चिया 2 दिन रा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में बोल रहा है। न्यायमूर्ति मसीह कह्यो कि बदलता जमाना सागे नवी तकनीक काम लेवणो जरूरी है, पर तकनीक काम लेवण रे दौरान मानव मूल्यां ने नजरअंदाज नी करया जा सके है और न्याय रा हितां री अनदेखी नी भेवणी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी और एक गैर सरकारी कॉलेज का नींव रख्या चिया इन सम्मेलन में देश भर रा शिक्षाविद, न्यायविद और शोध करण वाला भाग लिनो। सम्मेलन में श्रीलंका रा पहली वाला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहन पीरिस न्याय व्यवस्था में तकनीक रा काम ने घणो खास बतायो। भारतीय जनता पार्टी रा नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल रा मुख्यमंत्री बन गया है। कोलकाता रा ब्रिगेड परेड मैदान में राखी चिया कार्यक्रम में राज्यपाल आरएन रवि शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता री शपथ दिराई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ही शिरकत कीनी। वे सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए कह्यो कि पश्चिम बंगाल री जनता रो ओ ऐतिहासिक जनादेश विकास, सुशासन, देश रा भला और जनता रा विश्वास री मजबूत अभिव्यक्ति है। ध्यानयोग है कि पश्चिम बंगाल में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी रो राज आयो है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रदेश रा सगला सरकारी अस्पतालां में अब इलाज जुड़िया सगला नियमां री कड़ाई पालना तय करी जावेला। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ आज जयपुर में आला अहलकारां सागे मीटिंग कर इन बारा में हुक्म दीना। वे कह्यो कि इमरजेंसी, ऑपरेशन थिएटर और आईसीयू सरीखी ठोणा लापरवाही री सूरत में संस्थान रा प्रभारी और यूनिट हेड ने सीधा जिम्मेदार ठहराया जावेला। श्रीमती राठौड़ अस्पतालां में संक्रमण रोकण सारू कीटाणु खत्म करण बाबत नियमित तौर काम करण मथे जोर दीनो। कोटारा न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन रे जरिए जापो भेवण पाछे नवी मायडा री मौत भेवण और तबियत बिगड़वारा मामला में राज्य सरकार एक डॉक्टर समेत 2 नर्सिंग कर्मचारियों ने मुअत्तल कर दीना है। इसा गई यूटीबी माथे लाग्योड़ा एक डॉक्टर ने नौकरी निकाल दियो चियो है और 2 डॉक्टरों ने कारण बताओ नोटिस देर जवाब तलब करी चियो है। दूजिकानी चिकित्सा शिक्षा आयुक्त बाबूलाल गोयल काल कोटाचार वाकयारो विगतवार जायजो लीनो और जरूरी हुक्म दीना। चिकित्सा शिक्षा विभाग रे प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि मामला री शुरुआती जांच में चिकित्सा प्रोटोकॉल और प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही रीठा पण्या पाछे स्त्री और प्रसूति रोग विभाग रा यूनिट हेड डॉक्टर बी एल पाटीदार और यूनिट हेड डॉक्टर नेहा सिहरा ने कारण बताओ नोटिस

श्रोता आपने ट्यून किया है आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल FM 102 FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। जी हाँ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चौपाल।

आज शाम की चौपाल में संदाई कास्तकार भाई स्वागत है। संदाई कास्तकार भाई गणी राम राम आयो। देखो तावड़ो पड़ रहे पर साथ ही देखो आंधी ढूंढा भी आ रहा है, बरखाई पड़ रही है, तो ई टाइम पे अपना ध्यान रखना है। और साथ के साथ अपना जो अनबड़े जानवर है उनको भी ध्यान रखना है। गर्मी का दिन अपना ताई और अपना जो अनबड़े जानवर है वहां ताई पानी की बहुत आवश्यकता रहे, तो अपन वहां ताई टाइम टाइम में पानी पिलावा। और साथ में अपना जो बड़ा बुजुर्ग है वहां को भी अपन गर्मी में पूरा ध्यान रखा, आपनों भी ध्यान रखा। और किसान मायो आज एक योद्धा को बनचे, एक योद्धा की जन्मतिथि से मुगला के साथ में लड़ाई करी और वहां तो हार न मानी। भले ही आपनों घर छोड़नी पड़ियो, महल छोड़नी पड़ियो, आपनों परिवार छोड़नी पड़ियो, पर मुगला के साथ में लड़ाई करता करता हार न मानी, पराधीनता स्वीकार नहीं करी और जंगल जंगल में भटकिया। ऐसे महापुरुष अपना महाराणा प्रताप जी की जयंती है, तो आप सबको बताई महाराणा प्रताप जयंती की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। किसान मायो भारत का महान योद्धा और मेवाड़ का 13वां राजपूत शासक महाराणा प्रताप की जयंती है। महाराणा प्रताप को जन्म 9 मई 1540 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1597 के दिन कुंभलगढ़ राजस्थान में हुई छो। मुख्य रूप से राजस्थान में और पूरा भारत में यो दिवस वहाँ की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जाओ। हल्दी घाट का युद्ध में वहाँ का अदम्य साहस कथा याद किया जाओ। किसान साथ ही महाराणा प्रताप का जो वफादार जो घोड़ो छो चेतक उनकी वीरता कथाएं भी ये अवसर पर याद किया जाओ। किसान महाराणा प्रताप जयंती माँ कथाई अपनी मातृभूमि के प्रति समर्पण और स्वाभिमान सजीव की प्रेरणा दिवस है। किसान आज शनिवार और शनिवार का दिन अपन कौन कोई गांव में चला जा और वहाँ का किसान से जाना चाह वहाँ का हालचाल, वहाँ की संस्कृति, तो आज अपन चलेगा एक ऐसे गांव में और जाना वहाँ का हालचाल। किसान आज माँ आकाशवाणी गाँव के तहत आये जा गाँव खलुंदा तहसील तरड़ा जिला बुंदी का गाँव में। गाँव खलुंदा कोटा मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर पड़े। किसान तो चला अपन गाँव खलुंदा।

0: राम राम साहब।
1: राम राम सर।
0: आपको क्या नाम साहब?
1: घनश्याम मीणन।
0: आप के पद पर छो? आप
1: बार प्रधान अध्यापक की पोस्ट पर कार्यरत छू
0: जी,
1: कार्यभाग प्रधान अध्यापक।
0: अच्छा अच्छा, आप ये बताओ कि आपको जो गांव से खलुंदा, खलुंदा में जो स्कूल से आपको राज कुछ प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय कब से प्रारंभ हुयो और क्या स्थिति से बारे
1: यो कहीं जगह? पहले तो 1 जुलाई से चलो छू
0: जी,
1: फिर उसके बाद 1 मई से हो गयो, फिर उसके बाद बार से 1 अप्रैल छू 17 चल रहे छो, तो प्रवेश उत्सव चल गया और बच्चान का प्रवेश चाह रहे थे, प्रवेश के लिए प्रयास कर रहे थे सभी अध्यापक मिल रहे और गांव गांव डांडी डांडी में अपन यो चालू दादा कर, फिर बार पढ़ाया चल गई बच्चान की और अब 1315 तक जो मई की सी में टेस्ट चला गो।
0: अच्छा, पोलो टेस्ट हो,
1: पोलो टेस्ट हो जाओगे
0: जी जी जी। आप ये बताओ आपके स्कूल में बच्चा बच्ची एक साथ ही पढ़े अलग अलग पढ़े?
1: बच्चा बच्ची शामिल ही पढ़े,
0: शामिल ही पढ़े। और कितना को नामांकन हो आपके यहाँ?
1: प्राइवेट स्कूल बच्चा बच्ची धरे
0: जी,
1: और यहाँ की जनसंख्या का हिसाब से मतलब जो नामांकन थोड़ा कम हुए
0: जी,
1: पहले गए साल 61 बार प्रयास करेगा नामांकन बढ़ावा के लिए।
0: अच्छा, यहाँ नामांकन बच्चों को ज्यादा या बच्चों को ज्यादा है आपके यहाँ?
1: लगभग बराबरी से।
0: अच्छा, और कितना को स्टाफ है आपके यहाँ?
1: यहाँ 7 जना को स्टाफ से, जो 3 तो अध्यापक से
0: जी,
1: 4 अध्यापिका से
0: जी। यहाँ पर पोषाहार की क्या व्यवस्था है?
1: पोषाहार की बहुत बढ़िया व्यवस्था से, और माँ ममता जी मैडम से जो पोषाहार प्रभारी से
0: जी,
1: लेकिन कह गए साल सुहासा बैंक से ग्रामीण बैंक ये मर्जो या मसामा, तो यहाँ बैंकान की थोड़ी परेशानी आई राशि जमाओ बामा
0: जी,
1: तो पूरा साल भर को बजट बनो लास्ट अप्रैल में।
0: अच्छा, तो पोषाहार में कोई मेन्यू भी होगा आपको?
1: मेन्यू से बढ़िया मजा सु, सोमवार का दिन तुझे रोटी सब्जी दाल बन सो, और मंगलवार ने चावल दाल सब्जी बन सो, बुधवार ने रोटी दाल सब्जी, गुरुवार ने दाल चावल सब्जी, शुक्रवार

0: करना चाहिए वो दाल रोटी, शनिवार ने रोटी सब्जी दाल, ये बोल।
1: और आपका जो स्कूल थी, स्कूल में बच्चा के लिए कहें क्या व्यवस्था जो
0: यहाँ देखो खेल बग व्यवस्था से मैदान से बुढ़वारी थोड़ा पहले अतिक्रमण सो इमें जो अतिक्रमण था जब चार दीवार काम चार थोड़ा अटके हुए से वो भी वो जाओगे तो वो है बाद में फिर इको और बढ़िया विकास हो जाओगे तो बच्चा बच्चा ने खेल मैदान बढ़िया बढ़ जाओगे। इनके अलावा खेल का सामान सरकार द्वारा जो भेज जाओ से यहाँ पहले ग्रांट भेज जा अब डायरेक्ट सामान भेज दिया
1: बिल्कुल
0: गया साथ और सामान बड़े खेल के लिए छोटा बच्चा के लिए अलग से बड़ा बच्चा के लिए अलग सब खेलो
1: और जैसा शौचालय की व्यवस्था
0: शौचालय की व्यवस्था बच्चा बच्चा के लिए अलग अलग
1: दुनिया के लिए
0: लड़का के लिए अलग से लड़कियों के लिए अलग से
1: कितना कक्षा कक्ष होगा आपके
0: अपने यहाँ कक्षा कक्ष की कोई कमी कोई न
1: पर्याप्त
0: पर्याप्त कक्षा कक्ष मजा यहाँ 10 कमरा से 10 कमरा में 7 कमरा में बच्चा बच्चा को अध्ययन कराओ सा
1: बिल्कुल
0: बाकी ये जो स्टाफ में या जो सामान दरबो में सब काम
1: देखो मैं देख भी रहा देखो सामने आपको ऑफिस का बिल्कुल हरियाली हो रही है पेड़ पौधा लगा रहे बढ़िया गार्डन भी है अच्छा गार्डन हो रही है मतलब अच्छा मेंटेन कर रहे आपने
0: सारा अध्यापक ही बहुत काम कर रहे हैं जो मतलब ये हरियाली वगैरह वो कामन करी हुई है मेरे सामने सब यहाँ पहले बिल्कुल दूर को मैदान से देख
1: ली जी जी जी
0: ये सब मार देखता देखता हूँ आदमी यहाँ पे मतलब 20 साल हो गया ये विद्यालय में और मसूवरी जो सेवा दे रही यहाँ मतलब ज्यादा से ज्यादा दे भाई प्रयास करो
1: जी हाँ। तो आप प्रेस उत्सव के लिए क्या प्रयास करो जो किधर का प्रयास करो जो गांव में जा रहा हूँ
0: मैं गांव में शिक्षकान की टोलियां बना बना
1: जी
0: और गांव में भेजा था और सभी अभिभावकों से मतलब जो प्रार्थना करना था भाई मतलब अपना बच्चा बच्चा यहाँ स्कूल में रखो और बड़ा सारी सुविधा से यहाँ ज्यादा शिक्षित अध्यापक यहाँ से ग्रामीण से अपना बच्चा बच्चा वो कहाँ पढ़ा बसा हो वहाँ को ऊपर निर्भर कर
1: बिल्कुल
0: मैं प्रयास कर सका था
1: सारी विकास के लिए आप कहा प्रयास करो छो
0: बच्चा बच्चा का सर्वांगीण विकास हो बचाए
1: जी
0: और सर्वांगीण विकास के लिए राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खलुंदा या किसी भी सरकारी स्कूल में आप चले जाओ समस्त व्यवस्थाएं आपको मिलेंगी जिसमें आपको खेल भी मिलेंगे बच्चा कहते हैं कशा अनुशासन रखना तो बहुत सारी बातें में लगी अपनी परंपरा से जोड़ पक ले कहते हैं मतलब उसे जो व्यवहार में लगो यहाँ क्योंकि जैसे मतलब अपना वातावरण में लगो ना तो बच्चों बच्ची भी उसे वो जाओ
1: बिल्कुल
0: और आपने संस्कृति जोड़वा के लिए जो मतलब बच्चा बच्चा ने परंपरागत जो खेल से वो भी खिलाया जाओ से और जो नया खेल से वो आपसे भी जोड़
1: जी मैं देख रहा था कि आपको ऑफिस में चंद्रशेखर आजाद सुभाष चंद्र बोस नेहरू जी भाटी से अंबेडकर जी की सबकी मूर्तियां लग रही थी तो यहाँ का जो जन्मदिन या यहाँ का जो उत्सव जो भी मनाता होगा
0: यहाँ का जो जन्मदिन मनाया जाओ से वो जन्मदिन के दौरान ही बच्चा बच्चा यहाँ का आदर संपर्क चाल की बात करी जाओ से
1: बिल्कुल
0: है ना हर बार जैसे भी महापुरुष को जन्मदिन आओगे या पुण्यतिथि आओगी तो कहते हैं धन से जो मतलब सारा बच्चा ने इकट्ठा कर और वहाँ का जो आदर्श वहाँ का बारे में बताया जाओ से ताकि आप भी उसे चलो
1: जब आपको विद्यालय चलोगे तो कब तक चलोगे कितना कितनी तारीख तक लोगों के बाद छुट्टी कब तक लगेगी
0: यो प्रथम टेस्ट होगा 1315
1: जी
0: 16 तारीख स्कूल चलोगे 1700 अवकाश होगा 20 जून तक
1: जी
0: 20 जून के बाद स्कूल खुल जाओगे।
1: अब अंत में चलता चलता अपना जो ये किसान मन में बातचीत सुन रहे थे यहाँ कहता है संदेश का रूप में काय को पहुंचाऊंगा बच्चा का जो माता पिता है वहाँ के लिए काय संदेश पहुंचाऊंगा आप
0: हाथ जोड़ सभी जो किसान भाई से वहां से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार आपका बच्चा बच्चान के लिए कई प्रकार की सुविधा दे रही है जिनमें शिक्षा एक सबसे महत्वपूर्ण अंग छ आप अगर सरकारी स्कूल में बच्चा बच्चे पढ़ रहे हो तो आप कहता बच्चा बच्चा के तय कोई फीस न लाग रही किताबों का कोई पैसा न लाग रहा ड्रेस का कोई पैसा न लाग रहा सारी व्यवस्था यहाँ पर निःशुल्क मिल रही है और समस्त जितना भी मैं आकाशवाणी के द्वारा सुन रहा हूँ श्रोता वहां से करबद्ध निवेदन से कि वो मतलब अपना बच्चा बच्चा कहता है सरकारी स्कूल में प्रवेश दिलाओ
1: हमने वहां से बातचीत करी आकाशवाणी से बातचीत करी एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम साहब
0: राम राम
1: किसान मन आया हो जब देखो माँ स्कूल में आया तो यहाँ पर बच्चा खेल भी रहा चाहे और खेल वगैरह पहले तो प्रार्थना कर रहा है ये काय काय प्रार्थना कर रहे थे किसी प्रार्थना कर रहे थे किस प्रकार तो प्रार्थना कर रहे थे और प्रार्थना को काय महत्व छे तो करा तो राम राम राम राम
2: राम राम
1: काय नाम तारो
2: कुशाल
1: तारो
2: वंश
1: तारो
2: रोहित
1: अच्छा और तारो का नाम
2: पवन
1: तारो का नाम
2: अरुण
1: तारो
2: सूरज
1: तारो
2: भगवान
3: मारा परवीन।
1: तो आवार था स्कूल आया था तो क्या कर रहे थे?

0: वाह वाह वाह, देखो आपने बहुत अच्छी प्रार्थना सुनाई और माता सरस्वती आपने प्रार्थना करी कि माँ माँ का ताई अच्छी विद्या दे ताकि माँ आगे बढ़ सका, है ना। अब ये बताओ तरता क्या हो जाए भाई, कविता हो जाए कोई
1: कविता
0: देखो सुना।
1: नानी जी ने हमें बताया ईश्वर ने संसार बनाया बहुत जरूरी, इसने सबसे पहले प्यार बनाया।
0: वाह वाह वाह, देखते नमाज तो बात करी, धन्यवाद, राम राम। जब माँ गाँव में घूमता घूमता आया तो माँ कहता यहाँ पर एक महादेव जी को मंदिर नजर आयो और ये मंदिर पर नरसारी बारे बटी चे और ये सब आप एक भजन थोड़ा बचाओ चे, तो आप थोड़ा सा प्यार महादेव जी को भजन।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। किसान उन आयो जब माँ गांव में घूमता घूमता आया तो माँ कहता है देखो एक चौपाल पर निरा तरह किसान बैठे मिलिया कराते हैं तो बातचीत। राम राम साहब।
1: राम राम।
0: का शुभ नाम आपको?
1: राम शंकर।
0: आप खलुदा में कब से रह रहे हो?
1: पैदा हुआ जब से।
0: अच्छा शुरू से यहाँ रहे आपको?
1: हाँ।
0: अच्छा काय काम करो जो आप?
1: खेती कोई करा जो।
0: खेती बाड़ी करो जो?
1: हाँ।
0: खेती बाड़ी कितनी खेती बाड़ी जो आपको?
1: 20 बीघा करीब।
0: तो आप खेती बाड़ी करो जो तो सबसे पहले बताओ खेती बाड़ी में आपका गाँव में खलुदा में कसी कसी फसल हो आप?
1: यहाँ गेहूँ और गड्ढा होते हैं।
0: अच्छा
1: धान की फसल?
0: धान की फसल भी हो और गेहूँ भी हो। तो आभार कह लो आपने?
1: तो गेहूँ से।
0: गेहूँ ले आजा। तो गेहूँ कट गया?
1: हाँ कट गया।
0: कट गया ना?
1: हाँ।
0: आपने खाया तो कटाया हो मजदूरों से कटाया या फिर मशीन से कटाया?
1: कंबाइंड से।
0: अच्छा मशीन से कटाया। तो वो मशीन से कटाया तो फिर कहा जाओ तो ऊपर ऊपर काटे से तो नोड़ाया बच जाओ से तो नोड़ाया में नरा सारा किसम में आग लगा दे से तो आपने कहा करो नोड़ाया को फिर
1: भूसो बना लियो ना?
0: भूसो बना लियो
1: मशीन से भूसा बना लियो
0: ना? भूसो बना लियो। देखो बढ़िया काम करियो न तो लोग आग लगा दे से तो आग लगानी चाहिए
1: न लगा
0: लगानी चाहिए वो का नुकसान से?
1: उससे नुकसान से एक तो जमी का कीटाणु मर जाओ गंडोला आ रही है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: जो उपजाऊ करे जो मर जाओ।
0: हाँ हाँ।
1: और दूसरी बात आल का ना हो एक डेढ़ महीनो जानवर चल ले चे। तो ये भी खा मुंडो मारेगा कहाँ चेगा
0: बिल्कुल
1: ये दोनों फायदा
0: चाहिए
1: जला बोचाई
0: जलानी चाहिए। जब आप नोड़ाया में आग लगाते हैं तो आपने जो धरती से अंदर जो भी जीव छे
1: वो नष्ट हो जाओ
0: खत्म हो जाओ नष्ट हो जाओ आप देखते रहे दिन ब दिन ब दिन ब
1: और जमीन तपता है वो उपजाऊ खत्म हो जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो आपने भूसो बनायो अब बात यह हो चेगा अब देखो अपना जो खेत खाली हो गया इनमें कान करो चुका आप
1: कहीं ना कर
0: पड़त रहे
1: पड़ती रह
0: गर्मी गरी जुताई करो चो आप
1: गर्मी या कहीं ना हो जुताई तो करनी
0: पड़ती जुताई गरी जुताई कब करो चो
1: ये अभी चाल रही है अपन।
0: अच्छा
1: कोई यहाँ कर कोई काल न की
0: गरीब जुताई का फायदा सारा। हाँ। क्यों करनी चाहिए गरीब जुताई
1: भाई नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाओ युवा उपजाऊ हो जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही करा चो आप बहुत अच्छी बात है। और अब एक बात और बताओ अपार खेत खाली पड़ा जे तो आपने मिट्टी की जांच करानी चाहिए
1: अपना
0: विज्ञानिक भी खर्चे मिट्टी की जांच करानी चाहिए मिट्टी की जांच का क्या फायदा है साहब?
1: मिट्टी की जांच का तो यही जो जी की कमी वो जी को पोस्ट डाल दे और जी की कमी ना वो जो हुई बेकार से फिर डाल वो
0: बिल्कुल यानी कि देखो वो बेकार जा रहा
1: बेकार
0: आप जरूरत ही को ना डालेंगा
1: तो बेकार ही जाओ
0: बेकार जाओ आपने जो पैसा जो बेकार जाओगा है ना आपने आमद की अपेक्षा फिर ज्यादा नुकसान अपनो जाओ
1: इसलिए
0: अपना देखो मिट्टी जांच कराना चाहिए जो उमा मांग छे
1: हाँ वही दे पूछाई जी
0: वही दे पूछाई जी। तो आपने कराई जांच मिट्टी
1: पहले तो कराई जी अब बार तो न कराई
0: तो अब कराओगा
1: अब कराऊंगा देखो
0: है ना करानी चाहिए
1: करानी चाहिए जी। आज सबका ताई मिट्टी की जांच करा पूछाई जी उमा कार्ड आउ छे तो कार्ड में जी की भी कमी होगी ना जो पूरी हो
0: जाओ पड़ जाओ अब आप तो आपका गांव में सिंचाई कहीं व्यवस्था जी
1: सिंचाई तो नहर भी है और ट्यूबवेल भी है।
0: अच्छा तो नर से सिंचाई हो
1: जाए नर से भी हो जाओ जी का पानी न पुगा जो ट्यूबवेल से पुआ लीजिए।
0: अच्छा अच्छा अच्छा और कहीं कहीं व्यवस्था चाहे गाँव में कहीं कहीं सुविधा गाँव में आपको
1: गाँव में तो सभी सुविधा जैसे यहाँ हनुमान जी ने 3 सेट डल गए 2-2 तो शादी ब्याह भी यहाँ हो जाते है चारों मेर तो रोड हो रहा है और ग्रहण में शौचालय छे जो सभी सुविधा छे यहाँ
0: सारी सुविधा
1: सारी सुविधा
0: और लाइट की
1: जो जो लाइट आया हुआ छे
0: 24 घंटा
1: 24 घंटा भी आ जाओ और कभी कभी आंधी जी झड़ा चल जाओ तो
0: चल भी जाओ
1: चल भी जाओ
0: और व्यवस्था बढ़िया छे
1: व्यवस्था बढ़िया छे
0: सब व्यवस्था छे। स्कूल स्कूल का व्यवस्था छे यहाँ
1: स्कूल की तो 8वीं ताई छे।
0: अच्छा स्वास्थ्य केंद्र से गया
1: स्वास्थ्य केंद्र यहाँ कौन
0: श्वास है
1: यहाँ 2 किलोमीटर पड़ रही है
0: जैसे मान लो कोई यार बीमारी हो जाए तो कहाँ जाओ
1: श्वास से जाओ ना
0: श्वास से जाओ
1: 2 किलोमीटर।
0: जो किसान भाई आपकी बातचीत सुन रहे थे वहाँ तो काहे खबर जाओ संदेश करो मैं काहे कहेगा
1: भाई मैं तो यही खबर चाहू जी भाई सब मिट्टी की जांच करा बुचाई जे और नोलाई न बाल बुचाई जे आग दे बुचाई जे खेत में
0: बिल्कुल
1: किसान है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आपने मासू बातचीत करी आकाशवाणी से बात कर रही है धन्यवाद राम राम साहब।
1: राम राम साहब।
0: किसान मैडम आयो देखो माँ का साथ में एक और किसान साथी यहाँ तो करा राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
0: क्या नाम

0: आपको?
1: कन्यालाल जी सुमन।
0: कन्यालाल जी, कितनी उम्र होगी आपकी?
1: 50-55 के आसपास।
0: अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक गिरजा आपने?
1: पढ़ाई नौकरी पहले।
0: अच्छा, तो मतलब काय काम काज करो जो?
1: खेती बाड़ी कोई करा।
0: खेती बाड़ी शुरू से कर रहे जो आप? खेती बाड़ी करो जो आप? तो आप ये बताओ, जो खलुंदा गाँव है आपको, ये गाँव में कच्ची कच्ची फसल हो जो?
1: तो गड़ो धान और गेहूँ हो।
0: अच्छा, पशुपालन भी करो जो आप?
1: पशुपालन भी करे थे।
0: अच्छा, कितनी गाय पैसे आपको?
1: 4-5 तक तो गया थे, 5-6 बस।
0: अच्छा, अब आप देखो, आपका जो खेत खाली हो गया, काय करेगा आप? मतलब जैसे खेत खाली हो गया तो आप खेती बाड़ी की तैयारी कैसे करेगा आप? काय करेगा
1: खेत खाली हो गया तो रोटावेटर भी निकालनी पड़ेगा, हम धान बोबा खान गाएगा तो कल्टी भी निकालनी पड़ेगी, ये भी करनी पड़ेगा, सफाई भी करनी पड़ेगी खेतों की, फिर गड़ाई बुआई चालू।
0: अपनी गहरी जुताई भी करनी चाहिए जो आप करो?
1: गहरी जुताई भी कल्टी से जाओ, यूं कोई पंजो भी काट दे, कोई गशेटो भी फेर दे, देखो वो जाओ गहरी जुताई।
0: तो गहरी जुताई का क्या फायदा है?
1: एक तो जमीन पोली रह जाओ, जितनी पोली रहेगी उतनी जड़ मुंडी जाओगी तो पैदावार ज्यादा देगी।
0: अच्छा,
1: फायदा ही होता है गहरी जुताई से,
0: मतलब करनी चाहिए। ये तो कह जाए आपने जो धरती से पत्ता जाओ जो बढ़िया,
1: तब भी जाओ
0: ऊपर की नीचे
1: नीचे वो जाओ जो
0: जाओ तो कहे अपना जो अंदर की पोषक तत्व जो ऊपर बाहर नीचे हो जाओ।
1: और कहे?
0: अच्छा, अब ये बताओ, जिससे मान लो अवार आप गहरी जुताई करेगा, एक बात तैयारी कहीं करेगा, किसी फसल की तैयारी करेगा?
1: दान की करेगा।
0: कहीं करेगा?
1: दान ही लगाऊंगा।
0: अच्छा, कैसे लगाऊंगा?
1: और जमा दो।
0: अच्छा,
1: बीज मशीन से और क्यारा डोली बांध दिया जाए, बारिश पड़े जो गया हो।
0: हमारा आपने जो गेहूँ लिया जे, तो कई हिसाब तो गेहूँ खटिया आपका?
1: गेहूँ खटिया 5 भी खटिया जे, 6 भी खटिया जे, 5-6 ही खटिया जे है तो
0: बीघा बोरी का। अच्छा, आप जब धान और गेहूँ जो भी फसल करो जो, तो उमा आप जो खाद भी डालो चो, खाद किसो डालो चो, गोबरी खाद भी डालो चो या फिर यूरिया?
1: गोबरी खाद तो बहुत कम मल है, दूर खाद ही डालनी पड़े,
0: तो कहीं यूरिया डालो चो?
1: यूरिया डीएपी डालनी पड़े जा।
0: अच्छा, आप देख रहे थे कि आपने दिन ब दिन यूरिया को उपयोग ज्यादा करते जा रहा था, उस आपने धरती भी उसे जैविक खेती भी करनी चाहिए।
1: जैविक खेती तो जैसे 5-7 गड्ढा गए, 5-7 गाँव का भी 5-7 आग दियो जी, मैं जैविक खेती हो जाओगी।
0: अच्छा,
1: वहाँ कहता है गडमड कर दियो तो उनको भी खाद ला गई वो।
0: अच्छा,
1: जलाओ मतो वहाँ कहता
0: है खाद बन जाओ से।
1: खाद बना
0: हाँ, पर आपने जलाओ मतो।
1: हाँ,
0: तो ना किसान वो जलाओ से तो
1: जलाओ से तो वो बानी वो और उठ जाओ जो आतो,
0: तो इससे नुकसान से?
1: नुकसान तो छे ना,
0: हमने खेती
1: इसको पोली भी रहे जमीन, फांसा यहाँ कंगा ना तो जमीन पोली भी रहेगी।
0: अच्छा, और जलाऊंगा तो?
1: जलाऊंगा तो जमीन पोली ना रहेगी, उसको पासो ही ना दबोगो मतो खाद क्यों को बनागो, कचरो दबोगो जब भी तो खाद बनागो।
0: अपना जो जमीन में जो जितना जीवाणु छे वो भी नष्ट हो जाओ,
1: वो भी नष्ट हो
0: जाओ, खत्म हो जाओ। आप देखा जाए पहले तो गाय मनमान था गुंडरा दिखा
1: जाए,
0: आजकल दिखाई को
1: ना दिखा,
0: इको कारण गाय से?
1: इको कारण तो यही है जो ये दवाया भी छिड़क जाए, जैसे कीटनाशक दवाया जाए, कोई खरपतवार दवाई तो वो भी छिड़क जाए तो उस भी समाप्त हो जो अटी रुकाएगा जब अपन जलाऊंगा तो फिर वो में पौधा भी खास होगा, जब मुंह नीचे खाद को रेसो कीटाणु यो ना रहोगे तो कीटाणु कहां बनोगे?
0: इले जलाने चाहिए नोड़ा का, अपना जलाने चाहिए,
1: जलाने चाहिए नोड़ा ने, यहां को देव चाहिए
0: आप दो मला दो या
1: हां उमा मला दो
0: है ना, भूसो बनाओ चाहिए आजकल तो
1: भूसो बना रहा है दोनों डायरेक्ट, ये उमा मल जाओगी
0: बिल्कुल बिल्कुल। और आपने की आपके गाय पैसे भी है तो देखो, खेती और अपना जो पशुपालन है ये तो चोली दामन को साथ चे, तो हर किसान कहता है खेती के साथ में पशुपालन करनी चाहिए,
1: करबो चाहिए, एक आध बांस एक आध गाय तो राख बचाई जा,
0: मतलब करनी चाहिए।
1: पशुपालन से तो 3 फायदा जे,
0: काय काय?
1: एक तो काय जे गोबरी खाद मिल जाओ जे, एक दी दूध मिल जाओ जे, थोड़ी नहीं पदा भी हो जाओ छो उसमें
0: बिल्कुल, देखो घर को घी दूध मिल जाओ,
1: घर को घी दूध मिल जाओ छो उसमें संधि बात की सुविधा रहे, कोई दो पावना भी आ जाओ तो झट दूध काटियो और चाय पानी मिल जाओ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो अपने खेती के साथ साथ पशुपालन करनी चाहिए,
1: करनी चाहिए खेती के साथ में
0: पशुपालन। गाँव में दार्शनिक स्थल है, मंदिर भी होगा?
1: मंदिर
0: से क्या क्या मंदिर से?
1: यहाँ देखो ठाकुर जी को मंदिर भी है, अटी नरसंह जी को मंदिर भी है, हनुमान जी को मंदिर भी है, यहाँ तेजा जी को भी स्थान।
0: अच्छा, तो यहाँ पर कोई मेला खड़ा भी लागे?
1: मेलो लागे जा, आपना ताका जी को लागे नौमी को मेलो।
0: अच्छा, कत अंदर लागे जा?
1: ये एक दिन ही लागे जा।
0: तो आस पास का लोग गाँव का?
1: आस पास का भी आओ जा, गाँव का भी रह जा, सभी रह जा, यहाँ सभी आओ जा।
0: तो आपको गाँव की जनसंख्या कितनी?
1: गाँव की जनसंख्या तो अभी देख लो 1,000-1,200 मंदिर।
0: अच्छा, तो यहाँ पंचायत?
1: पंचायत।

0: 16 लाख है।
1: 16 लाख है, कितना वारदा बताऊं मैं?
0: यहां पहले तो 3 वारदा, अब 2 ही कर दिया बताया।
1: अच्छा, और ये बताओ, जैसे हर बार देखो आपने अपन फसल पहुंचा तो कई बार खराब हो जाओ, चाहे कई बार बारिश पड़ जाओ, चाहे कई बार आंधी डूंडा जाओ, जैसे अपनी फसल खराब हो जाओ, तो कई फसल बीमो कराओ चुका आप?
0: फसल भी कराओ चे, करा वाला भी कराओ चे, न कराला न भी कराओ,
1: पर कराने चाहिए,
0: उनको करानी तो चाहिए फसल भी।
1: अच्छा, एक बात और बताओ, आप जो गाँव से खरुदा शौचालय की व्यवस्था कहीं से?
0: शौचालय की व्यवस्था तो यहाँ गल आ रही है,
1: मतलब हर घर में,
0: हर घर में शौचालय है, कोई जबड़ा गई कोई ना ना, तो हर घर में सुविधा।
1: आपने सरकार ने शौचालय बनाना, आपने
0: शौचालय सरकार ने भी बनवा दिया, सबने कोई ना ग्रास भी बनवा लिया, संधि सुविधा से। तो
1: एक बात और बताओ, आपका गाँव में सारा नौकरी पेशी भी चे या फिर सारा खेती बाड़ी करे?
0: नौकरी पेशी वाला भी देखो, नौकरियां भी कोई कोई का, और खेती बाड़ी ज्यादा करे, जो नौकरी वाला कम छ।
1: अच्छा,
0: खेती बाड़ी में ज्यादा छ।
1: अंत में जो ये किसान मन भाई आपकी बातचीत सुन रहा छे, काई खबर चाहो का संदेश करो भैया, तो काई का
0: भाई? कोई कोई जे भी खेती भी करे, हटी रुका है कि यूरिया डीएपी भी कम डाले, थोड़ो बहुत दवाइयां भी कम चढ़ गया थोड़ी के।
1: अच्छा,
0: तो उसको सही रहेगा।
1: तो आपने मां से बातचीत करी, आकाशवाणी से बातचीत करी, इसके लिए धन्यवाद। राम राम साहब।
0: राम राम साहब।
2: किसानों मायो, आपकी सरकार ने आपने लिख अपना गांव का विकास के लिए, किसानों का विकास के लिए नरी सारी योजना चला रखी है। एक ऐसी योजना है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, यह भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है किसानों मायो, जिसका उद्देश्य सभी ग्रामीण आवास योजना के तहत बिजली पानी और शौचालय जैसी सुविधा के साथ में पक्को मकान प्रदान करवो। यह योजना को लाभ लेनी चाहिए।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए कार्यक्रम माटी के स्वर।

श्रोताओं, भी आपने सुना स्वाति शर्मा और गौरव जैन के सुरीले बोलों में ये लोक रचना। इसी के साथ अब पेश है अनुराधा पौडवाल की सुरीली आवाज में अगला लोकगीत।

0: अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। नमस्कार, कोटा कार्यक्रम में मंगलवार दिनांक 12 मई 2026 को प्रातः 7 बजे से 7:30 के मध्य आप सुनेंगे हमारी अतिथि विशेषज्ञ श्रीमती अभिलाषा जैनवियर के साथ भेंटवार्ता, जिसका विषय है नर्सिंग एक सेवा कार्य। इस बातचीत में अतिथि विशेषज्ञ के साथ भेंट की है राजेश महावर ने। अवश्य सुनिएगा चंबल चैनल का सूचनाओं पर आधारित सुबह सवेरे का यह कार्यक्रम नमस्कार कोटा, प्रातः 7 बजे। कार्यक्रम संबंधी सूचना यहीं समाप्त होती है।

श्रोताओं, भी आपने सुना लोक गायिका रेखा राव और साथियों की आवाजों में ये सुरीला लोकगीत। इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत के इस कार्यक्रम माटी के स्वर का यही समापन होता है। हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8 बजने को हैं, तो आइए अब सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

राजा फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के सुरों में ये गाना आपने सुना। गीत के बोल समीर के और धुन नदीम श्रवण की।

श्रोताओं, भी आपने सुना राजा हिंदुस्तानी फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक के सुरों में ये सुरीला नगमा। गीत के बोल समीर के और धुन बनाई नदीम श्रवण ने। इसी के साथ अगला नगमा पेश है शिकारी फिल्म से।

0: कुमार सानू की सुरीली आवाज में शिकारी फिल्म का ये गाना आपने सुना। संगीत आदेश श्रीवास्तव का और गीत रचना समीर की।
1: गले में सरस्वती माँ का वरदान कैसा होता है? ऐसा ही तो होता है ना।

0: जब भी सुनिए कुछ अच्छा सा सुनिए। ये है आकाशवाणी कोटा का चंबल चैनल।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब पेश है अगला गाना, कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में आ अब लौट चलें फिल्म से। गीत रचना समीर की और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक के सुरों में बड़े दिल वाला फिल्म से ये गाना। गीत रचना फैज अनवर की और संगीत आदेश श्रीवास्तव का।

कुमार सानू, सुनंदा और अलका याग्निक के सुरों में ये खूबसूरत गाना आपने सुना रंग फिल्म से। गीत रचना समीर की और धुन बनाई नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, अभी आपने सुना अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाज में बाजीगर फिल्म से ये गाना। गीत रचना गौहर कानपुरी की और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का एक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 KHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या का अगला अंक हमारे दिल्ली केंद्र से। प्रतीक्षा कीजिए।

साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण

0: समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में पीडब्ल्यूडी की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अच्छा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे।

0: इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल MIRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। MIRV ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ED ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम PMLA 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। CBI ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। APEDA के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है

0: है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताज़ा घटनाक्रम हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिणांतरिक कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे, कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9 बजे का वक्त है। आई श्रोताओं, अब सुनते हैं कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर प्रसारित होने वाला फोन इन प्रोग्राम जो रिकॉर्ड होता है गुरुवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक और जिसमें आप सभी श्रोता अपनी मनचाही बातें करते हैं और मनचाहा फिल्मी गीत सुनते हैं, वही कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी पेश किया जा रहा है। श्रोताओ, राजेश महावर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है और लेता है पहला फोन कॉल।
1: रेडियो के बारे में बताना चाहती हूँ।
0: जी पहले नाम तो बताइए।
1: हाँ, प्रतिमा राजा मेरा नाम है।
0: कहाँ से बोल रहे हैं प्रतिमा जी?
1: फर्स्ट बार मेरा कॉल लगा है
0: जी।
1: मैं कोटा से ही बोल रही हूँ सर
0: जी। बहुत स्वागत करते हैं आपका,
1: धन्यवाद सर जी।

0: जी, क्या करते हैं प्रतिमा जी आप?
1: फिलहाल तो हाउस वाइफ हूँ
0: जी।
1: इसके पहले स्कूल ज्वाइन कर रखा था। और बच्चे बड़े हो गए तो उसे विराम दे दिया है।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जी, अब तो रेडियो के साथ ही हैं, रेडियो सुनते हैं, काम कर लेते हैं। और रेडियो इतना अच्छा माध्यम है कि बता नहीं सकते, शब्दों में बयान करना तो मुश्किल है।
0: क्या बात है।
1: और आज पता लग रहा है कि हमारे जो पिताजी सुनते थे उस जमाने में, तो क्यों सुनते थे, अब हमें लग रहा है कि हमने कितना मिस किया। बचपन से तो सुनते थे
0: जी,
1: बीच में शादी के बाद छूट गया था, फिर से वापस इससे जुड़े हैं
0: जी।
1: और कोटा के जो स्वास्थ्य संबंधी प्रसारण आप देखते हो, उसका तो शब्दों में बयां करना मुश्किल है, स्पेशली सुबह के टाइम 8:15 जो प्रसारित करते हैं आप हेल्थ को लेके, इतना अच्छा कार्यक्रम कराता है कि क्या बताएं, मन करता है रोज डेली सुनते ही रहे
0: जी। क्या बात है प्रतिमा जी,
1: डॉक्टर तो हम बन गए सुन सुन के।
0: वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। तो प्रतिमा जी, आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की है?
1: सब पूरा कंप्लीट है सर, बीए कंप्लीट है
0: जी। और ये कौन से सन की बात है?
1: 2003 में कर लिया था
0: जी,
1: और उसके बाद जस्ट शादी हो गई।
0: अच्छा, आपने बताया शादी के बाद रेडियो सुनना बंद हो गया आपका, बंद होने की क्या गुंजाइश थी?
1: उस समय सर रेडियो था, और मतलब अब ऐप पे आता है, मतलब इसमें
0: मोबाइल ऐप पर।
1: हाँ, और फिर बिजी भी हो जाते हैं ना, जैसे एक घर को छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं
0: जी,
1: तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान देना पड़ता है,
0: नई व्यवस्थाएं संभालनी होती है।
1: हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, जी। उस वजह से शायद सुन नहीं पाए, फिर जुड़ गए।
0: आपने बताया, आपके पिता रेडियो सुना करते थे?
1: नहीं बिल्कुल सुनते हैं, वो मंदिर में बैठे बैठे रेडियो चलता रहता है, सुनते हैं। 90+ उनकी एज है, उस जमाने में रेडियो के बहुत शौकीन थे मेरे दाता हुकुम।
0: क्या बात है,
1: पिताजी हमारे यहाँ से बोला करते हैं।
0: जी जी, हम समझ गए। और आप विवाह के बाद कोटा हैं या विवाह से पहले भी कोटा ही थे?
1: नहीं, पहले भी कोटा ही थे
0: जी। तो चंबल चैनल का जुड़ाव आपका बहुत पुराना रहा है?
1: हाँ बिल्कुल
0: जी,
1: जब से चल रहा है तब से सुनते हैं।
0: आपने बताया बच्चे बड़े हो गए, क्या करते हैं बच्चे?
1: बच्चे गुड़िया है, जेई टॉपर बैच में इस साल, और एक छोटी गुड़िया है वो थर्ड स्टैंडर्ड में।
0: जी जी जी, बहुत खूब। प्रतिमा जी, आपने जहाँ फोन किया, हेलो आकाशवाणी नाम है प्रोग्राम का, आप जानते हैं यहाँ पर आपकी पसंद के गीत सुनवाए जाते हैं, बताइए आज कौन सा गीत आप सुनेंगे?
1: मेरा पसंदीदा गीत होगा
0: तो आपको फिल्म गीत सुना,
1: मदीना फिल्म का सुनवा दीजिए
0: जी,
1: वो आजकल और कुछ याद रहता नहीं।
0: तो ये गाना भी आप उन दिनों सुना करते थे?
1: सुनते हैं।
0: जी जी जी, बहुत शुक्रिया प्रतिमा जी। जी, वाकई एवरग्रीन गाने हैं, और इस कार्यक्रम में जितने भी गीत हैं सभी श्रोताओं के पसंद के होते हैं, और वो सदाबहार गीत होते हैं। जी बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
1: नमस्कार
0: जी, नमस्कार
1: नमस्कार।

0: नमस्कार।
1: कौन साहब?
0: हाँ जी, कैलाश बोल रहा हूँ साहब।
1: कैलाश जी कहाँ से बोल रहे हैं?
0: कोटा छावनी से।
1: क्या बात है कैलाश जी, पहली बार कौन किया आपने?
0: हाँ जी, पहली बार करा।
1: अच्छा, तो कहाँ सुना करते हैं आप रेडियो?
0: हाँ, मैं मोबाइल है, मोबाइल से सुनता हूँ।
1: अच्छा, तो कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप कैलाश जी?
0: ये सुनता साहब हम तो।
1: अच्छा,
0: केवल हेलो फरमाइए। हाँ, वो

0: डॉक्टर रहता ना ये।
1: बिल्कुल, क्या करते हैं कैलाश जी?
0: मैं फ्री हूँ साहब, मैं तो रिटायर हो गया हूँ।
1: तो रिटायरमेंट के बाद फ्री नहीं, और भी जिम्मेदारियां आ जाती है परिवार की।
0: वो तो है, बच्चे बच्चे को खिलाना पिलाना यही काम है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परिवार को पूरा देखना, पूरे परिवार को संस्कार देना, ये आप ही के काम होते हैं फिर।
0: जी।
1: है ना जी। तो क्या क्या किया करते थे आप, कहाँ से रिटायर हुए?
0: पहले तो मैं 20-22 साल चाय की होटल थी मेरी। क्या?
1: अच्छा।
0: हाँ, बस फिर वो कंपनी बंद हो गई, फिर होटल भी बंद कर दी।
1: अच्छा, फिर चाय पीना भी बंद हो गया लोगों का, तो आपने भी बंद कर दिया।
0: और क्या?
1: और उसके बाद?
0: बस फ्री है।
1: उसके बाद फ्री हैं आप? तो चाय की दुकान में कैसे लोग आया करते थे, कंपनी के लोग आते थे?
0: हाँ, कंपनी के आते थे साथ।
1: अच्छा, तो चाय की दुकान में आप क्या क्या रखा करते थे साथ में?
0: चाय रखता था साथ।
1: केवल चाय?
0: केवल चाय चलती थी उस टाइम।
1: अच्छा, तो कुछ लोग फीकी चाय मांगते होंगे, कुछ लोग ज्यादा मीठी मांगते होंगे,
0: मांगते थे।
1: है ना। तो कब आपने बंद की चाय की दुकान?
0: ये साहब 2002 में।
1: तो उस समय आप कितनी कीमत की चाय पिलाया करते थे?
0: अभी उस टाइम तो बहुत सस्ती थी, 2-2.5 रुपए किलो दूध आता था।
1: अच्छा, तो अकेले आप बैठा करते थे चाय की दुकान पे?
0: नहीं, आदमी काम करते थे मेरे पास।
1: अच्छा, तो घर के बारे में बताइए, घर परिवार में कितने लोग हैं?
0: मेरे 2 बच्चे हैं, 2 लड़के, दोनों लड़कियों की शादी कर दी
1: जी।
0: एक बड़े लड़के ही चलती है, अब एक बच्चा बाकी।
1: काम क्या करते हैं बच्चे?
0: बच्चे सर्विस करता है।
1: ठीक है। अब कैलाश जी, अपने काम के दौरान जब आप चाय बना करते थे दुकान पे, उस समय रेडियो लगा के रखा करते थे आप वहाँ?
0: नहीं नहीं, वो तो रेडियो नहीं था उस टाइम। क्या?
1: अच्छा,
0: तो अभी मोबाइल अभी लिया मैंने, मोबाइल पे सुनता
1: है। अच्छा अच्छा, तो उन दिनों आप रेडियो नहीं सुना करते थे? लेकिन रेडियो तो बहुत पुराना है। पहली बार कब सुना आपने रेडियो?
0: रेडियो से गांव पे सुनता था साहब, ये बिना का चलती थी ना। अमीन सयानी का सुनता था
1: जी। तो अमीन सयानी जी के सुनने के बाद में चाय की दुकान आपने जब खोली, तब आपने रेडियो क्यों नहीं रखा?
0: अच्छा, शौक था साहब मेरे को।
1: अच्छा अच्छा, रखने का नहीं था। बहुत बढ़िया कैलाश जी। तो क्या सुनेंगे आज आप?
0: आज सुनाओ डरते गए पुकार के
1: गा। कौन सा गाना?
0: हम तुम चोरी से।
1: आहा, क्या बात है।
0: ये हमारे तो मित्र है, मित्र का नाम लो क्या?
1: बिल्कुल, आप लीजिए।
0: हाँ, सुलेमान जी।
1: अच्छा, अब हम समझे। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, आप बीच बीच में बोलते हैं क्या, ये आप अक्सर बोला करते हैं?
0: नहीं नहीं,
1: कभी कभी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है कैलाश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का गाना। ठीक है, सुनिए सुनिए। और हम यही चाहेंगे आपसे कि आप अपने घर पर एक रेडियो सेट रखें, जिसमें पूरा परिवार इस गाने को सुने। ठीक है, नमस्कार।

0: हेलो, आकाशवाणी कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आपका।
1: हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार,
0: नमस्कार। नाम बताएंगे अपना?
1: मेरा अजय कुमार जैमिनी।
0: अजय कुमार जैमिनी। अजय जैमिनी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: अभी फिलहाल तो मैं बरेली से बोल रहा हूँ।
0: अच्छा
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
0: जी, क्या
1: वैसे फौज में काम करता हूँ।
0: फौजी हैं आप?
1: जी।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। फिर तो आप हमारे वंदनीय हैं।
1: हाँ नहीं, ये तो चलो, ये तो देश के लिए काम है ये, और परिवार को भी चलाने का एक आगे बढ़ाने का तरीका
0: जी, लेकिन अपने व्यवसाय के साथ में जब हम वेतन पाते हैं,
1: है। नहीं।
0: वो काम तो हमने मान लिया कि हम परिवार को चलाते हैं, लेकिन जिस तरह का काम हम करते हैं वो ये निर्णायक होता है कि हम किस तरह का काम करना चाहते हैं,
1: हाँ वो तो है, उसका एक करेज तो रहता ही है साथ में किसी भी काम का।
0: है जी?
1: जी,
0: जी,
1: बिल्कुल,
0: तो अजय
1: इसमें तो
0: जी,
1: कोई दो
0: आप ये बताएं,
1: राय नहीं।
0: फौज में आने की आपकी जो कवायद थी वो कैसी रही?
1: फौज में परिवार में तो वैसे कोई नहीं था फौज में, लेकिन अब शुरू से मैं एक्चुअली क्या है कि एनसीसी ने मुझे मोटिवेट किया। स्कूलिंग टाइम से एनसीसी में रहे और कॉलेज में भी एनसीसी से जुड़े रहे, तो एक अट्रैक्शन सब हुआ। और एनसीसी सर्टिफिकेट करने के बाद में अप्लाई किया और सिलेक्शन हो गया। फिर उसके बाद उसी में ढलते गए। अब धीरे धीरे अपना फिजिकल को मेंटेन करना,
0: जी,
1: और फिर जहां भी ड्यूटी मिले उस ड्यूटी को क्या कहते हैं अपना
0: पूरी
1: निर्वाह
0: मुस्तैदी
1: करते
0: से
1: रहना।
0: निभाना।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्या बात है, आपने एनसीसी के सी सर्टिफिकेट का जिक्र किया,
1: जी।
0: इसकी बहुत वैल्यू होती है। हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनको आप अपने एनसीसी का जो दौर था उसके बारे में बता पाएंगे?
1: हाँ वैसे आर्मी की तरफ से एनसीसी सी सर्टिफिकेट की काफी वैल्यू है। ये सर्टिफिकेट तो स्कूलिंग टाइम्स में होता है, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th तक।
0: जी
1: और बी और सी सर्टिफिकेट जो होता है सेना की तीनों विंग उसको देती हैं, जहां जहां जैसी फैसिलिटी है। और सी सर्टिफिकेट अगर कोई व्यक्ति बी ग्रेडिंग से कर लेता है तो उसको एसएसबी में डायरेक्ट इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता है, यानी कि रिटर्न से उसको रिटर्न एक्सक्यूज हो जाता है।
0: जी
1: और इसके अलावा जो नीचे की रैंक्स हैं उनके अंदर भी उसको एडवांटेज, हर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर को मिलिट्री, पैरा मिलिट्री, स्टेट पुलिस सभी जगह उसका एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा कॉरपोरेट या सिविल जॉब में भी जाएंगे तो एक इम्प्रेशन तो होता ही है कि ये बंदा डिसिप्लिन है।
0: जी अब जो सी सर्टिफिकेट आपने लिया उसके बाद में आपने बताया कि जो रिटर्न एग्जाम है वो स्किप कर सकते हैं, क्या आपको ये अवसर मिला?
1: नहीं, मैंने एसएसबी का तो मैंने इंटरव्यू दिया नहीं, लेकिन मैंने कांस्टेबल रैंक के लिए मैंने अप्लाई किया, तो उस रैंक में मुझे उसका एडवांटेज मिला मेरे को,
0: जी
1: और उसी की वजह से मेरा फिर सिलेक्शन भी हुआ
0: जी
1: लास्ट मेरिट मेरिट के स्तर पर।
0: बहुत खूब, बहुत खूब। तो अजय जी, आप इस समय किस रैंक पर हैं?
1: इस समय मैं एएसआई के रैंक पर हूँ।
0: एएसआई के रैंक पर हैं। बहुत
1: जी।
0: खूब, बहुत खूब। तो रेडियो सुनना आपका शौक रहा?
1: हाँ शुरू से रेडियो तो सुनते आए हैं।
0: रेडियो से अपने जुड़ाव के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए अजय जी।

0: हाँ, मैं अपने सवाई माधोपुर में था, तो मैं वहां पे FM रेडियो सवाई माधोपुर का एक रणथंबोर चैनल आता है, उसको सुनते हैं हम लोग।
1: बिल्कुल
0: आज भी चलता है वो, उसको बिल्कुल बहुत अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसको सुनते हैं, क्योंकि ज्यादा उसमें ना शोर नहीं होता है आज की मीडिया की तरह।
1: जी, ये आकाशवाणी की खूबी होती है
0: जी जी
1: जी। तो अजय जी, आज आपने जो फोन किया चंबल चैनल को, बताइए कौन सा गीत आप सुनेंगे?
0: गीत, एक गीत है किशोर कुमार का, गीत है
1: जी।
0: गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही खूब ये गाना है, किशोर कुमार जी ने गाया इसे, और इसका जो फिल्मांकन है वो बड़ा प्रेरक है।
0: हाँ, मतलब इसके गीत के बोल भी बहुत सुंदर है, मतलब इंस्पायर करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी जी
1: तो अजय जी, आपने रणथंभौर चैनल का जिक्र किया, आपने सवाई माधोपुर का जिक्र किया, वहां का जो रणथंभौर इलाका है उसके बारे में क्या कहना है आपका?
0: हाँ, रणथंभौर तो नेचुरली एक टूरिस्ट प्लेस है, और उसका एक धार्मिक महत्व भी है वहां पर, ऐतिहासिक महत्व भी है, और आज के टाइम पे तो रणथंभौर अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे जाना जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए,
1: बिल्कुल
0: और भारतवर्ष में लोग वहाँ त्रिनेत्र गणेश जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं,
1: बिल्कुल।
0: और तो इसी वजह से उसको जाना जाता है।
1: बिल्कुल, तो आपने कभी वहां पर भ्रमण किया?
0: हाँ बिल्कुल, मैंने घूमा है वहाँ पे, काफी घूमा है वहाँ पे, फोर्ट
1: जी, बहुत
0: वगैरह में सभी जगह।
1: जी, बहुत खूब। तो अजय जी, आज आपसे जो बातें हुई वो रिमार्केबल बातें हैं, क्योंकि आज हम हमारे देश के सैनिक से बात कर रहे हैं और हम भी गर्वित महसूस करने लगते हैं अपने आप को। अजय जी, आप जहां भी अभी पोस्टेड हैं, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना, गाड़ी बुला रही है
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी।

0: श्रोताओ, आकाशवाणी कोटा बूंदी के चंबल चैनल पर आप सुन रहे हैं फोन इन प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी। इस कार्यक्रम में भागीदारी के लिए दिन होता है गुरुवार 11 बजे से 12 बजे तक। जब आप फोन करते हैं तो टेलीफोन नंबर होता है 29411 42, एसटीडी कोड 0744। अपने मन की कुछ बातें और अपने पसंद के गीत सुनने के लिए यही है प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी। हमारे अगले रेडियो श्रोता का स्वागत है।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल।
0: प्रेम सिंह सिसोदिया जी, ऐसा लगता है पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: जी हाँ, एक बार पहले हुई थी मेरी बात, लेकिन समय तो मुझे याद नहीं रहा कब हुई था। लेकिन बात एक बार दूसरा कॉल है मेरा आकाशवाणी कोटा पर।
0: जी
1: जी,
0: तो फिर हम आपके कॉल को शामिल कर चुके हैं, है ना?
1: जी सर।
0: अपने बारे में आप हमें बताना चाहेंगे?
1: जी बताऊं सर, मैं खेती किसानी का काम करता हूं। जी गेहूं लहसुन की फसल लगाई थी हमने। जी उसको तो हम काट के ले आए घर पे, एक महीने से भी ज्यादा समय हो गया है।
0: जी
1: जी हाँ, अभी खेत को खाली कर दिया, कुछ जमीन को हमने प्लाउ भी किए।
0: अच्छा।
1: उससे मतलब जमीन की पलटी हो जाती है ना, तो वहाँ पे अगर लहसुन की फसल लगाई जाए गोबर की खाद डाल के तो अधिक पैदावार होती है।
0: अच्छा, तो आप जैविक खेती करते हैं?
1: जी हाँ, जहाँ पर लहसुन लगाते हैं ना सर हम, वहाँ पे गोबर की खाद डालते हैं। मतलब इतना खाद तो नहीं मिल पाता है गोबर का, लेकिन फिर भी मतलब आसपास के जो हमारे किसान लोग हैं ना,
0: जी जी
1: जी, वो अपने खेतों में गोबर की खाद ज्यादा इस्तेमाल करते हैं।
0: अच्छा, तो गोबर

0: का जो खाद है वो इतना आपको प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता।
1: जी हाँ, प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता क्योंकि उसके लिए पशु ज्यादा चाहिए होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और पशु का देखभाल भी करनी होती है, उसका रखरखाव के लिए भी मतलब जगह चाहिए। तो वैसे हमारे पास में 5-6 पशु तो है सही
0: जी।
1: उनकी व्यवस्था तो हम अच्छी तरह से कर देते हैं, उनके लिए हरा चारा भी बो रखा है हमने। जी एक बात और बताऊं सर आपको, जैसे हमने खेत पर हरा चारा बो रखा है पशुओं के लिए, वहाँ पे एक टिटहरी है उसने 4 बच्चे दिए हैं, और उनके पानी की व्यवस्था और दाने की व्यवस्था भी हमने कर रखी है।
0: आहा, तो आपको ऐसा लगता होगा कि आप उसकी परवरिश कर रहे हैं ना?
1: जी बिल्कुल, जब हम खेत पे जाते हैं ना
0: जी
1: और ट्यूबवेल चालू करते हैं तो जब पानी आता है ना वहाँ पे, तो वो टिटहरी अपने बच्चों को लेकर पानी पीने के लिए आती है और बच्चों को पानी में नहलाती भी है, बड़ा अच्छा लगता है।
0: क्या बात है, ये जीव प्रेम होता है। और
1: बिल्कुल,
0: और जब वो चहकती है वहाँ पर तो आपको बड़ा अच्छा लगता होगा। अच्छा, आपसे वो डरती तो नहीं?
1: नहीं डरती तो नहीं ऐसा, लेकिन जब मोटर चालू होती है ना पानी की, तो अगर दूर भी होते हैं ना फिर भी वहाँ पानी के पास में आ जाते हैं। पास में नहीं, हमें नहीं आने देते, जैसे हम पास में जाते हैं ना एकदम से चिल्लाती है वो और अपने बच्चों को छुपा के बैठ जाती है।
0: बिल्कुल, जिस तरह से टिटहरी बोला करती है तो उसको अंग्रेजी में उसी के बोलने की वजह से कहते हैं डिड यू डू इट।
1: जी जी सर बिल्कुल आपने।
0: हाँ जी, जी तो प्रेम सिंह जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने?
1: जी सर, मैंने 12th तक पढ़ाई की है, उसके बाद में मेरे पापा की डेथ हो गई थी।
0: ओह।
1: तो घर पे काम करने वाला कोई दूसरा सदस्य नहीं था, तो फिर मुझे पढ़ाई छोड़ के मतलब घर का काम संभालना पड़ा।
0: तो ऐसा आपने कोई जतन नहीं किया कि आप दूरस्थ जो शिक्षा होती है उससे पढ़ाई कर पाए?
1: जी बिल्कुल, ऐसा मैंने सोचा भी था, लेकिन क्या हुआ कि घर पे कोई काम करने वाला था नहीं और जमीन भी कुछ ज्यादा थी हमारे पास में।
0: जी जी जी।
1: तो उसका रखरखाव मजदूरों द्वारा करना पड़ा मुझे, और फिर मतलब बड़े भाई भी नहीं थे और मेरे 5 बहनों का साथ था, तो उनका भी देख लिया मतलब करना पड़ा मुझे कामकाज, तो फिर मेरे आगे पढ़ाई नहीं।
0: चलिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में जमीन है और आप उसमें खेती करते हैं। हम एक बात और चाहते थे कि अगर आपके पास जितनी जमीन है उसी के अनुपात में अगर आपके पास पशु भी होते तो आपको पर्याप्त गोबर का खाद मिल सकता था। अब क्योंकि ट्रैक्टर से जुताई होती है, ट्रैक्टर तो गोबर दे नहीं सकता।
1: जी सर।
0: है ना,
1: ट्रैक्टर द्वारा जो होता है ना मतलब खेती का काम जल्दी हो जाता है, ये बात है।
0: ये बात है ना। ठीक है जी, प्रेम सिंह जी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप ये बताइए कौन सा गाना हम आपको सुनवा दें?
1: जी सर, फिल्म का नाम है कोयला और गाने के बोले देखा तुझे तो हो गई दीवानी, पालू तुझे तो मरना जाऊं कहीं।
0: गाने का शौक रखते हैं?
1: जी बिल्कुल, गाने का शौक रखता हूं सर। और मैं बताऊं आपको, मैं ना एक भजन गायक भी हूं, हमारे 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है।
0: अच्छा
1: जी, उसमें हम 4 लोग गाने वाले हैं और 4 2 हारमोनियम बजाते हैं और 2 ढोलक बजाते हैं।
0: बहुत खूब बहुत खूब। तो ये गाना अगर हम आपको सुनवाएं तो इसके बदले में आप हमें कौन सा भजन सुनाएंगे?
1: जी एक भजन की लाइन सुना दो आपको।
0: सुनाइए।
1: दुनिया में देव हजारों है, बजरंग

0: जाके ना दुनिया में देव जाको बजरंग बली का क्या कहना।
1: क्या कहने क्या कहने, प्रेम सिंह जी आनंद आ गया। आप बड़ी प्रसन्नता से अपने जीवन को इस्तेमाल कीजिए, है ना। और अभी आप तक पहुंच रहा है आपकी पसंद का ये गीत।
0: जी थैंक यू सो मच सर, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
1: हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल है।

0: सतीश जी बताइए कौन सा गाना आपको सुनवाएं?
1: आज गाना प्ले कर दीजिए, मुंडा गोरा रंग के दीवाना हो गया।
0: शपथ नाम का फिल्म है ना?
1: और आपके इधर मौसम मौसम कैसा कोटा का?
0: हमारे यहाँ पर मौसम कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बादल आके निकल जाते हैं।
1: एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है तो जैसे मौसमी फल, जैसे मौसमी फल चल रहे हैं, खरबूजा है, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इनका सेवन करना चाहिए। और जैसे पानी यानी घड़े में छोटा थोड़ा सा पानी पीना चाहिए, खाना पीना का उनका ख्याल चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल सतीश जी, आपने कहा, हम ऐसा जरूर करेंगे। अच्छा, आप ये सब कुछ करते हैं?
1: हाँ, मैं तो करते हूँ सर जी। और जैसे बचपन में
0: सतीश जी, आप जब बात कर रहे हैं ना तो आपकी बातें तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपकी भावनाएं हम समझ रहे हैं।
1: पता ना क्या हो गया।
0: कोई नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। तो आपकी पसंद का गाना सुनवाएं हम आपको?
1: हाँ, गाना सुनवा दीजिए, क्योंकि गाना सुनने वाले
0: जी
1: सबको वहाँ डेडिकेट करना चाहता हूँ। मोबाइल में आएगा।
0: अच्छा सतीश जी, आपकी हंसी बड़ी प्रसिद्ध है, आप एक बार हंस दीजिए। ये रहा आपके पसंद का गाना, बहुत शुक्रिया
1: जी, धन्यवाद,
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, हेलो, आकाशवाणी कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, कौन साहब?
1: मैं सतीश बात कर रहा हूँ, फरुखाबाद उत्तर प्रदेश।
0: सतीश जी, आपका काम कैसा चल रहा है?
1: काम धंधा सही चल रहा है, बारिश हो रही थी, बारिश थी और गर्मी पड़ रही है, बारिश।
0: जी जी, अभी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: अभी दिल्ली से बात कर रहा हूँ।
0: अभी दिल्ली से बात कर रहे हैं,

0: कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी और आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर जी को नमस्कार।
0: नमस्कार
1: जी सर, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: राम बाबू शर्मा जी?
1: जी सर जी।
0: कैसे हैं राम बाबू जी?
1: जी सर बहुत बढ़िया हूँ, और बस मैंने फोन मिलाया, आपसे बात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा अच्छा, और आपको एक बात बताएं?
1: जी सर।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है।
1: जी सर बिल्कुल, जब बात अच्छी होती है तो अच्छा लगता है सर,
0: है ना जी?
1: जी सर जी सर।
0: हाँ अच्छा, तालियां कितने हाथ से बजती है?
1: जी सर तालियां तो दोनों ही हाथ से बजती
0: है ना।
1: जी सर जी
0: बिल्कुल,
1: सर
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो एक हाथ हमारा एक हाथ आपका, बज गई ताली।
1: जी सर, जी सर,
0: है जी?
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: क्या बात है। क्या करते हैं राम बाबू जी?
1: जी सर किसानी करता हूँ मैं।
0: हम्म,
1: अभी सोसाइटी पर आया हूँ, वेयर हाउस पे।
0: हाँ हाँ,
1: तो गेहूँ की तुलाई चल रही है।
0: अच्छा
1: अच्छा, यहाँ पर अभी थोड़ा काम लगा हुआ है, आम की छांव में बैठा हुआ था।
0: हम्म,
1: मुझे याद आया कि बात चल रही है सर से, तो चलो फोन लगाते हैं और आपसे बात हो रही है।
0: वाह जी वाह, क्या बात है। तो आपको समय याद रहता है ना समय पर?
1: जी सर बिल्कुल, जब सुनते हैं आकाशवाणी टूटा तो समय सब याद रहता है,
0: है ना जी? और कार्यक्रम सुनने का भी वक्त याद रहता है।
1: जी सर जी सर।
0: तो बताइए कि रिकॉर्डिंग कब होती है और फिर इसका प्रसारण कब होता है?
1: जी सर, गुरुवार को 11 बजे से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग चलती है।
0: ठीक है।
1: और शनिवार को 9 बजे से 10 बजे तक फिर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत होती है।
0: क्या बात है क्या बात है। और आप सभी श्रोता जब सुनते हैं तो कैसा लगता है?
1: जी सर, सब श्रोता सुनते हैं, बात करते हैं, गाने बजते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है
0: ना। तो आज आप बताइए कौन सा गाना सुनकर आपको अच्छा लगेगा?
1: जी सर, दूध का कर्ज में है, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा।
0: अच्छा
1: जी सर,
0: तो आपकी खेत में कहीं ऐसा तो कुछ इंतजाम नहीं है?
1: नहीं नहीं सर, वो तो होते ही है। वो तो सर होते ही है, लेकिन वो हमारी रक्षा भी करते हैं सर, और जरूरी भी है हर चीज का होना, क्योंकि भय बिन हो ना प्रीत, ऐसा है कहीं रामायण में लिखा है। जी सर, जब तक भय नहीं होगा तो प्रेम भी नहीं होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। राम बाबू जी, कब से आप खेती किसानी कर रहे हैं?
1: जी सर, मैं खेती किसानी लगभग 20 वर्ष हो गए हैं मुझे।
0: और इस काम से प्रसन्न है ना आप?
1: जी सर बिल्कुल, प्रसन्नता होती है, क्योंकि बस ईश्वर की कृपा अच्छी बनी रहे तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा,
1: क्या वो कभी कभी प्राकृतिक आपदा आ जाती है तो दुखी भी होता है किसान, लेकिन खुश भी रहता है।
0: लेकिन ईश्वर हमेशा साथ में रहते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल,
0: है ना जी। राम बाबू जी, तो आपके पसंद पर ये गाना हम आपको पहुंचा रहे हैं, सुनिए अपने रेडियो सेट पर।
1: जी सर जी।
0: ठीक है, और अपने परिवार के साथ में बिल्कुल आनंद पूर्वक रहिए।
1: जी सर जी,
0: बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए।
2: मैं तो

आज के इस हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम का ये था अंतिम गीत। श्रोताओ, आज के इस कार्यक्रम में जैसा कहते हैं ना, जय जवान जय किसान, तो आज जवान का भी फोन आया और किसानों का भी फोन आया। इसी प्रोग्राम में हमारी बहनों ने भी फोन किया, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चंबल चैनल के कार्यक्रम आप सब में बहुत बहुत लोकप्रिय हैं, और इसे लोकप्रिय बनाने का पूरा श्रेय जाता है आप सभी श्रोताओं को। तो श्रोताओ, इस कार्यक्रम के लिए भी आपकी भागीदारी के लिए हम आपको बता दें, हर गुरुवार दिन में 11 बजे से 12 बजे तक आप फोन कर सकते हैं इस टेलीफोन नंबर पर 29411 42, एसटीडी कोड 0744। बस एक गुजारिश है कि एक बार अगर आपका फोन लग जाए तो अपनी पसंद के साथ, अपनी मनचाही बातें करने के साथ, अपनी पसंद का गीत सुनने के बाद फिर अंतराल रखिएगा 2 महीने का। आपके फोन कॉल्स का पूरा पूरा स्वागत करेंगे। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग एन के मीणा और आरसी वर्मा का था, संयोजन तेजराम मीणा का, निर्देशन हिमांशु नामा का, और अब राजेश महावर को दीजिए अनुमति इस कार्यक्रम से, जिसका नाम हेलो आकाशवाणी।

कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का प्रसारण अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल है, FM 102, FM 103.6 मेगाहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 212.31 मीटर अर्थात 1413 किलोहर्ट्ज़ पर। अब सुनिए विविध भारती मुंबई के कार्यक्रमों का प्रसारण कुछ ही पलों में।

0: आइए सुने छाया गी। सुनने वालों को शिफाली कपूर का नमस्कार। सदियों से होते आए हैं हुस्न इश्क के चर्चे, हुस्न की वादियों में पलता है इश्क। कोई समझे तो एक बात कहूं, इश्क तौफीक है गुनाह नहीं।
1: इश्क की गर्मी जज्बात किसे

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं छाया गीत। जिंदगी इश्क मोहब्बत से जमा होती है। कल तलक सीने से लगाए फिरते थे दिल अपना, तुमने मुस्कुरा के जो देख लिया दिल मेरा न रहा। ये जलवे ये अदाएं तेरी जुबां है जवां मोहब्बत की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी।

फिर कहां का हिसाब रह जाता है इश्क जब बेहिसाब हो जाए। मोहब्बत की कोई हद कोई सरहद नहीं, गुर्बतें लाख खूबसूरत हों, दूरियों में भी दिलकशी है अभी।

वो दरियाए इश्क तुम जिसमें डूब रहे हैं हम सफीने की तरह, उफ ये लहराते गेसू ये उड़ता आंचल, जी चाहे कि उम्र गुजर जाए इनके साए तले। पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, पूछा जो उनसे चांद निकलता है किस तरह, जुल्फों को रुख पे डाल के झटका दिया

0: महकते गीतों के साथ आज के छाया गीत का सफर बस यहीं तक। दीजिए इजाजत शेफाली कपूर को, नमस्कार।
1: ये है विविध भारती,
2: विविध भारती देश का रेडियो।
3: ओ मेरे पिया रंगून किया है महासटैली।
4: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी,
5: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर,
2: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
6: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
4: विविध भारती पर हर पल है खास।
2: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
0: आज के फनकार।
4: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
0: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
2: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

0: कहिए सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें।

अपने पसंदीदा गानों की सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

FM 102, FM 103.6 MHz और मीडियम वेव 212.31 मीटर यानी 1413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। लीजिए श्रोताओं, अब सुनिए हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
1: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। 2 विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को 1 सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान

0: कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, five other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Nabin and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vitri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI, CPIM, VCK and IUML with two MLAs each, stands at 13. The top brass of the Congress party today held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chinnitala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister, and the name will be announced very soon.